0: फॉरन एकदम ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे गिरी जा रहा
1: तो तुम लोग कह गया
0: कुछ नहीं, फिर लंच ब्रेक हो गया।
1: अच्छा खाओ खाओ
0: ना, कल क्या खाएंगे?
1: भगवान खिलाएंगे वही खाएंगे। और फिर जशोदा माँ ने उसके मुंह ऐसे खोला और देखा उसके मुंह के अंदर एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा।

0: मैं हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण।
1: तेरी याद सताए तो हम खाटू जाएं, तेरे सिवा शाह बता हम कहां जाएं।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: प्रगति पथ पर बढ़ता देश,
6: जन जन तक पहुंचा संदेश।
7: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

Hello.

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
2: अपोजिट
0: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
2: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
3: हरियाली से सजे हर
4: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैन्सी कुकरेती के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकांगपिओ जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
3: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज के इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
2: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
5: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
6: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसुलर मामले, सांस्कृतिक और देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियोनो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
7: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
8: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
7: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
9: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
7: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
10: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला न करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने दो मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
11: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
2: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
2: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
3: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
7: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
8: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

हेलो जी, एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग है। नमस्कारम, सुप्रभात। आपने ट्यून इन कर लिया है एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आप सुन रहे हैं श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल करते हैं आज की इस खूबसूरत सी मॉर्निंग में खुली बाहों के साथ। वेलकम बैक है, मंडे की एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग है। आज 8 जून हो गई है श्रोताओं, 8 जून की ब्यूटीफुल सुबह। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आपने भाई साहब वो वाला स्टेशन ट्यून इन कर लिया जहां बातें होंगी पॉजिटिविटी की, जहां बातें होंगी हैप्पीनेस की, जहां बातें होंगी आपके दिल की, जहां बातें होंगी आपके एंटरटेनमेंट की, जहां बातें होंगी अपने कम्युनिटी के लोगों की। श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत है। और हर दिन की सुबह कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आती है, हर दिन की सुबह कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतरीन लेकर आती है और हमें बहुत कुछ सिखाती है। वैसे ही आज की सुबह ढेर सारी खुशियां आपकी झोली में लेकर आई है। एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग आपको और मुझे मिली है, तो इस मॉर्निंग का बिल्कुल भरपूर लाभ उठाएंगे। एक अच्छी सोच के साथ अपने कदम को बाहर बढ़ाएंगे और अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत करेंगे। श्रोताओं आपको बता दें, स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 8:20। आनंद ने तो यहाँ पर दस्तक दे दी है। आपके छोटे से रेडियो पर डेली आता हूँ, मंडे टू सैटरडे, इवन कभी कभी तो संडे भी आ जाते हैं। कल ही तो आपसे मुलाकात की थी, लग ही नहीं रहा है कि यार कल भी मैं आपसे मिल के गया हूँ। मतलब आई कांट बिलीव दिस यार, ये जो मोहब्बत होती ना आपके साथ वो दिल से दिल तक वाली होती है। चलिए श्रोताओं, फिलहाल मौसम क्या कहता है, आज का दिन क्यों खास है, आज की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है, सब कुछ आपको पता लगेगा। लेकिन आपको सच बताऊं, आज की सुबह जब मैं उठा तो बहुत तेज सूरज की लालिमा पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे यकीन मानो आज बहुत तगड़ी गर्मी रहने वाली है। आज सूरज चाचा बिल्कुल गर्मी से नहाए हुए हैं। फिलहाल आप नहाना शुरू कर दीजिए, बहुत से अगर नहाने जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहाते रहिए, और मगर पानी बिल्कुल खराब मत कीजिए। फिलहाल बात करेंगे आज की मोटिवेशन और ताजा विचार की। श्रोताओं कहते हैं कि प्रेशर लेना बंद करो, जीवन जीना शुरू करो। गौर गोपाल दास कहते हैं कि ये जो प्रेशर है ना, ये हर चीज में अच्छा दिखने का वो जरूरी नहीं है। अगर कोई चीज बुरी है तो बुरी है। अपनी मेंटल हेल्थ अगर आपको ठीक रखनी है तो प्रेशर लेना बंद करना होगा और पॉजिटिव रहने का प्रेशर लेना जो है ना, पॉजिटिविटी का जो एक डोज है वो लेना शुरू कर देना होगा। मतलब प्रेशर तो आपको बाय-बाय टाटा कर देना है, लेकिन अपनी जिंदगी को अगर आपने जीना है, सेलिब्रेट करना है, तो छोटी छोटी खुशियों में जो है हमें मशरूफ होना है, छोटी छोटी खुशियों में हमें शामिल होना है और अपने दिन को और अपनी लाइफ को दोनों को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। चलिए श्रोताओं, ऐसी बेहतरीन बातें ऑफ कोर्स आपके लिए आती रहेंगी और आगे कुछ खास प्रोग्राम्स भी आपके लिए आएंगे स्टेशन ऑफ द नेशन पे। लेकिन उससे पहले बेहतरीन गीत मैंने निकाल दिए हैं आपके रेडियो स्टेशन पर, जिनको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज की सुबह ये बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत ही अल्टीमेट ट्रैक जो आज की मॉर्निंग अपनापन का एहसास कराएगा आपको। मंडे की सुबह है तो ऑफकोर्स ऐसे गाने होने चाहिए ना जिससे थोड़ा सा जुड़ाव हो, अपनापन हो। और आप भी तो मेरे अपने हैं, जहाँ आप होते हैं वहाँ आनंद होता है, जहाँ आनंद होता है वहाँ आप अपने आप आ जाते हैं, है ना। तो आज की सुबह ऐसा ही बेहतरीन ट्रैक आपके रेडियो सेट पे मैंने निकाल दिया है। इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, बहुत ही खूबसूरत गाना। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास। बहुत ही खूबसूरत बात कही इस गाने में कि अपने तो अपने होते हैं। आज की सुबह किसी अपने की याद आ रही है तो प्लीज कॉल कर लो यार, इसको मैसेजिंग कर दो भाई, बहुत जरूरी है अपनापन अपनों के बीच में होना।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
4: कहा मेरी कसम,
3: मिस कर दिया तो रीलोड।
5: चाय चाय चाय,
6: बिंदास मॉर्निंग
3: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग। ट्यून इन किया है आपने मंडे मॉर्निंग में आरजे आनंद को, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, और देखिए मंडे की ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, और जब मंडे आता है तो ऑफकोर्स ढेर सारी खुशियां और ढेर सारी एक्सपेक्टेशन भी लेकर आता है। आज की मंडे की मॉर्निंग क्या स्पेशल वाइब हमें दे रही है, डेफिनेटली आपको बताएंगे। आज की तारीख क्यों खास है ये भी मैं आपको बताऊंगा। भाई आप मेरे साथ जुड़े तो रहो, अच्छे गाने आ रहे हैं, इनको एंजॉय करो।

क्या बात है। देखिए आपका दिल मैं बिल्कुल ही लेके जाने वाला हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 विद आरजे आनंद। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, आपने ट्यून इन किया है FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं। 8:35 हो गए और देखिए भाई साहब, हमारे जो भारतवर्ष में अलग अलग व्यंजन है ना, बड़े फेमस हैं, बड़े ही पॉपुलर हैं और हर एक शहर की अपनी खूबसूरती है और अपनी खासियत है ना। हर राज्य में कुछ ना कुछ आप जाओगे तो हर राज्य का, हर शहर का कुछ ना कुछ बहुत फेमस होता है ऐसा फूड जो हमारी यादों में और हमारे ना मतलब जहन में बस जाता है। हम जब भी उस शहर का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले वहाँ का फूड दिमाग में और जहन में याद आता है। जैसे अगर हम मुरादाबाद आएंगे तो मुरादाबाद की दाल और मुरादाबाद की बिरयानी ना ऑटोमेटिकली हमारे सामने, हमें एकदम से इमेजिनेशन होने लगती है उस चीज़ की, पिक्चराइजेशन वो सीन आ जाता है, हम यू नो उस चीज़ खो जाते हैं। अगर आप आगरा जाओगे तो वहाँ का पीठा आपको तुरंत याद आएगा, अगर आप वाराणसी जा रहे हैं तो वहाँ की चीज़ें तो ऑफ कोर्स आपको याद आएंगी है ना। तो अगर आप मेरठ जा रहे हैं तो वहाँ की नान खटाई, लखनऊ जा रहे हैं तो वहाँ के कबाब, मतलब हर जगह की बहुत ही कुछ ना कुछ खास है, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी हर जगह पर है ना। उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में, अगर अपने उत्तर प्रदेश राज्य की बात करूँ तो यहाँ पर हर शहर के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल छुपा हुआ है यार। और अभी मैं आपको कौन से शहर लेके जाने वाला हूँ ये आपको पता लगेगा इसी प्रोग्राम के ज़रिए। मैं आपको कहाँ लेकर जा रहा हूँ जी, ज़रा आप ये सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा और यहाँ की कौन सी चीज़ बड़ी मशहूर है, बहुत फेमस है, ये आपको सुनने के बाद पता लगेगा। फिलहाल मैं आपको लेकर चल रहा हूँ गोरखपुर की तरफ, जहाँ पर एक चीज़ बड़ी फेमस है, आप कभी जाएँ तो ज़रूर इसका लुत्फ़ उठाएँ, आनंद उठाएँ। ये सुन के वापस लौट कर आता हूँ इमीडिएटली, कहीं मैं जाओ। सुनते रहो FM मुरादाबाद 89.6 विद आरजे आनंद।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गया हूं। मैं आपका दोस्त आनंद और मेरे साथ हैं
1: आरजे रीना।
0: यस दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विकास की, विरासत की और उन स्वादों की जो हमारी मिट्टी की खुशबू अपने अंदर समेटे हुए हैं।
1: और आज हम पहुँचे हैं पूर्वांचल के धड़कन यानी गोरखपुर में, जहाँ की बोली में अपनापन है और खाने में देसी स्वाद का जादू।
0: बिल्कुल, और आज का हमारा विषय है एक ऐसा व्यंजन जो गरीब से लेकर अमीर तक, छात्र से लेकर अधिकारी तक और हर किसी की पहली पसंद बन चुका है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर देसी व्यंजन लिट्टी चोखा की।
0: वाह, नाम सुनते ही जैसे देसी घी की खुशबू हवा में घुल गई हो।
1: और अब इस स्वाद को नई पहचान देने जा रही है योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुंजीन यानी ODOC योजना।
0: जिस तरह ODOP योजना ने प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाया है, उसी तरह अब ODOC योजना जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को ग्लोबली पहचान दिलाने जा रही है
1: और गोरखपुर जिले की पहचान के रूप में चुना गया है। स्वाद और सेहत का अनोखा संगम लिट्टी चोखा।
0: दोस्तों लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं है बल्कि पूर्व यूपी की संस्कृति, गाँव की मिट्टी और देसी जीवन शैली का हिस्सा है।
1: सही कहा, पहले गाँव में जब खेतों में काम खत्म होता था तो शाम को चूल्हे पर कड़े की धीमी आंच में लिट्टी सेकी जाती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसे चोखा और घी के साथ खाता था।
0: यानी लिट्टी चोखा सिर्फ खाना नहीं बल्कि परिवार, अपनापन और परंपरा का स्वाद है।
1: और सबसे खास बात, यही स्वाद जितना लाजवाब है उतना ही सेहतमंद भी।
0: तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आखिर लिट्टी बनती कैसे है।
1: सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छे से गूंधा जाता है, फिर उसके अंदर भरा जाता है चने का सत्तू।
0: लेकिन ये कोई साधारण भरावन नहीं होता, इसमें मिलाया जाता है अजवाइन, मुगरेला, लहसुन, हरी मिर्च, अचार का मसाला, नींबू और सबसे जरूरी देसी सरसों का तेल।
1: उफ, सोच कर ही भूख बढ़ जाए।
0: फिर इसी भरी हुई लिट्टी को कंडे यानी उपले की धीमी आंच पर धीरे धीरे सेका जाता है। लिट्टी को बार बार पलटा जाता है ताकि हर तरफ से वो सुनहरी और कुरकुरी हो जाए।
1: और जब गर्म गर्म लिट्टी तैयार होती है तो उसे देसी घी में डुबो दिया जाता है। घी की खुशबू और सत्तू का स्वाद, यही तो इसकी असली पहचान है।
0: अब बात करते हैं इसके साथ ही यानी चोखे की।
1: चोखा बनाने के लिए भुने हुए बैंगन, उबले आलू और टमाटर को अच्छे से मैश किया जाता है।
0: फिर उसमें डाला जाता है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, नमक और कच्चे सरसों के तेल की धार।
1: यही सरसों का तेल चोखा को वो देसी फ्लेवर देता है जो हर निवाले को खास बना देता है।
0: और दोस्तों, जब गरम लिट्टी को तोड़कर उसमें चोखा भरकर खाया जाता है तो स्वाद सीधे दिल तक पहुंच जाता है।
1: यही वजह है कि गोरखपुर में लिट्टी चोखा हर वर्ग के लोगों की पसंद बन चुकी है।
0: छात्र संघ चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेडिकल कॉलेज रोड, तारामंडल क्षेत्र, हर जगह आपको लिट्टी चोखे की दुकानें नजर आ जाएंगी।
1: छात्र हो, कामकाजी लोग, रिक्शा चालक, व्यापारी या पर्यटक, हर कोई बड़े चाव से लिट्टी चोखा खाता है
0: क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है, पेट भरने वाला भी है और जेब पर भी भारी नहीं पड़ता।
1: और दोस्तों, एक समय था जब लिट्टी चोखा सिर्फ ठेले और रेड़ी पर मिल जाता था,
0: लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज गोरखपुर में आधुनिक आउटलेट्स खुल चुके हैं,
1: यानी देसी स्वाद अब मॉडल स्टाइल में भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
0: कुछ आउटलेट्स में तो मिट्टी के कुल्हड़ में चोखा परोसा जाता है ताकि ये ग्राहकों को पूरा देसी अनुभव मिल सके।
1: और सोशल मीडिया के दौर में भी तो लोग पहले फोटो खींचते हैं फिर लिट्टी खाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आरजे रीना।
1: इतना ही नहीं, अब दूसरे शहरों में फ्रेंचाइजी की मांग भी आने लगी है।
0: यानी लिट्टी चोखा अब सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश और दुनिया में भी अपनी पहचान बनाएगा।
1: सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
2: सबसे पहले हमें अपना नाम बता दें।
3: मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है। मैम
2: विकास जी, आपका ये प्रतिष्ठान कब से गोरखपुर में स्थापित है?
3: ये हमारा जो है 15 जनवरी से हम लोगों ने इसको ओपन किया है।
2: जी जी, तो बाटी चोखा ही क्यों?
3: बाटी चोखा क्या है कि हम लोगों ने पूर्वांचल की चीजों को देखा है और जो सबसे ज्यादा चलने वाली चीजें हैं, जैसे कि पूर्वांचल में बाटी चोखा एक रिलेटेड है, अपने मट्टी की खुशबू को लेते हुए हम लोगों ने इस चीज को किया है, बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट किया है। हर जगह जो है आजकल देखा जाए तो व्यंजन तो बहुत है, चाइनीज है, इंडियन है, कई चीजें मिल जाती हैं, जो अपनी मिट्टी की चीजें नहीं मिल पाती। इसलिए हम लोगों ने पाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कुछ अपना किया जाए उसको।
2: जी जी। अच्छा, जहाँ इतने सारे चाइनीज विदेशी व्यंजन अब उपलब्ध हैं, तो आपको ये थोड़ा रिस्क नहीं लगा कि बाटी चोखा पे हम एक इतना बड़ा शोरूम बना रहे हैं कि हमारे पास कस्टमर्स आएंगे?
3: नहीं, दरअसल था ऐसा, लेकिन फिर मैंने ये अपना सोचा गया कि देखिए हमारा जो भी है, जो भी यहाँ रहते हैं, जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की मिट्टी से ही जुड़े हैं। आज भले वो कहीं भी रहें, किसी दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन वो उठे ही हैं देहात से। तो इसीलिए हमने बस इसको जो है इस पे जोड़ दिया गया।
2: शहर में कई सारे बाटी चोखा के प्रतिष्ठान है, तो आपका स्पेशल क्या है?
3: हमारा देखिए स्पेशल क्या है कि हमारा जो बाटी चोखा है वो सॉफ्ट है
2: जी।
3: आप कई जगह खाई होंगी बाटी चोखा, तो जो उसकी परत होती है बहुत टाइट होती है, बच्चे नहीं खा सकते हैं। आप हमारे यहाँ खाएंगी तो बच्चे भी बहुत आराम से उस चीज को खा लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी बाटी चोखा है बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम, वो हर तबके के, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, सबको पसंद आएगा हमारा।
2: जी
4: जी। ये बताइए कि आपके यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहती है? युवा की रहती है या फिर फैमिली ज्यादा आती है?
3: देखिए हमारे यहाँ जो भी है फैमिलियाँ ज्यादा आती
4: हैं।
3: जी मैम,
2: हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया एक जनपद एक व्यंजन।
3: हाँ, एक जनपद एक व्यंजन,
2: जिसके तहत हम आके आपसे बात कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे महाराज जी के लिए?
3: महाराज जी के लिए तो क्या कहा जाए, महाराज जी तो खैर अपने आप में खुद ही बहुत अच्छे सीएम है वो, और अगर उन्होंने कोई चीज पहल की है तो बहुत अच्छी पहल की है।
1: और दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जुड़े कारीगरों, रसोइयों, छोटे दुकानदारों और उद्यमों को भी सीधे लाभ मिलने वाला है।
5: बिल्कुल, सरकार इस योजना के तहत लिट्टी चोखा बनाने और बेचने वाले लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।
1: स्वयं सहायता समूह महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, ताकि स्थायी स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिल सके।
5: साथ ही बेहतर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा के माध्यम से छोटे विक्रेताओं और पारंपरिक व्यंजन तैयार करने वाले लोगों को बड़े बाजारों तक पहुँचने का अवसर मिल सके।
1: इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और स्थानीय खाद्य व्यवसायों को नई पहचान मिलेगी।
5: यानी ODOC योजना सिर्फ स्वाद को दुनिया तक पहुंचाने की पहल नहीं है, बल्कि स्थानीय कारीगरों, दुकानदारों और उद्यमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: पर्यटन विभाग भी अब प्रमुख आयोजनों और पर्यटन स्थलों पर लिट्टी चोखा के विशेष स्टॉल लगने जा रहे हैं।
5: यूपी दिवस के समारोह में भी लिट्टी चोखे का स्टॉल लोगों को आकर्षण का केंद्र बना देता है।
1: और सच कहें तो लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक स्वादिष्ट मिसाल है,
5: क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज देसी और प्राकृतिक होती है।
1: गेहूं, सत्तू, सरसों का तेल, बैंगन, टमाटर, सब कुछ स्थायी किसानों और बाजारों में आता है।
5: यानी इस एक व्यंजन से किसान, हलवाई, दुकानदार और छोटे कारोबारी सभी को रोजगार मिलता है।
1: यही तो है ODOC योजना की सबसे बड़ी ताकत, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
5: दोस्तों, आज फास्ट फूड के दौर में लोग फिर से देसी और हेल्दी खाने की तरफ लौट रहे हैं,
1: और लिट्टी चोखा इस बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन चुका है।
5: देसी स्वाद, देसी खुशबू और देसी मिट्टी का एहसास, सब कुछ एक ही प्लेट में।
1: तो अगर आप कभी गोरखपुर आए तो यहाँ का लिट्टी चोखा जरूर खाइए,
5: क्योंकि एक बार जो इसका स्वाद चख ले वो इसे कभी नहीं भूल पाता।
1: और योगी सरकार की ODOC पहल अब इस स्वाद को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने की तैयारी में है।
5: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे लिट्टी चोखा सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता की पहचान है,
1: और कैसे ODOC योजना स्थानीय व्यंजनों को नया बाजार, नई पहचान और नए अवसर दे रही है।
5: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के एक नए सफर में। नमस्कार। तो दोस्तों, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
5: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
6: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, मंडे की सुबह है, आप सुन रहे हैं RJ आनंद को, जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। और अभी लौट कर आते हैं तो बताते हैं आज 8 जून को क्या खास है। आज कौन से एग्जाम है जिसके लिए स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड हैं और निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनी की ओर। वेरी गुड मॉर्निंग, इस गाने को उस पार मिल रहा हूं।

मेरा दिल तो आप जब आते हैं ना तभी चला जाता है, मतलब आपके ऊपर ही मेरा दिल चला जाता है, बिकॉज आपसे बातचीत करना कौन नहीं चाहेगा यार, इतनी प्यारी जनता है हमारी मुरादाबाद की और हर कोई दिल से बात करता है, हर कोई दिल से जुड़ता है। वेरी गुड मॉर्निंग है, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। 8:54 का समय हो गया है लेडीज एंड जेंटलमैन स्टूडियो की क्लॉक में, और यहाँ पर वक्त मैंने आपको बता दिया है। अब जरा बताते हैं आज के मौसम का हालचाल, क्या कहता है आज का वेदर। श्रोताओं आपको बता दें 31 डिग्री सेल्सियस अभी करंट टेम्परेचर दिखा रहा है। वहीं अगर हवा की बात करें तो आज हवाएं 2 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली, यानी कि बड़ी कम हवाएं चलेंगी, गर्मी आपको ज्यादा लगेगी। एयर क्वालिटी भी कुछ खास ठीक ठाक नहीं है। ह्यूमिडिटी की बात करूं तो 44% दिखा रहे हैं, यानी कि गर्मी आपको चिपचिपी रहने वाली लगने वाली है, पसीने पसीने होने वाले हैं पाजी, तो इसलिए पानी छानी लेके निकलो यार आज की सुबह। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ आपसे, बाकी ये जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे दोपहर होते होते धीरे धीरे 40 डिग्री पहुँचेगा, मतलब आपको गर्मी और तगड़ी होगी, ये गर्मी और सताएगी, लेकिन हम इस गर्मी से बचने के लिए ठंडे गानों को अपनाएंगे। चलिए दोस्तों बताते हैं आज का दिन क्यों खास है। हर दिन की तारीख अपने आप में बड़ी स्पेशल होती है, हर दिन का इतिहास बहुत ही अल्टीमेट होता है। आज इतिहास में क्या कुछ खास रखा है हमारे पन्नों में छिपाकर हमने, चलिए आपको बताते हैं। तो श्रोताओं आपको बता दें 8 जून को विश्व स्तर पर विश्व महासागर दिवस आज मनाया जाता है। इसके अलावा आज विश्व मस्तिष्क ट्यूमर यानी कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे आज मनाया जाता है, और 8 जून को ही ये कुछ खास दिवस मनाए जाते हैं जैसे कि हमने जिक्र किया है। साथियों आज विश्व महासागर दिवस, महासागरों के महत्व, पृथ्वी की जलवायु तंत्र में उनकी भूमिका और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 8 जून को यह दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं ये जो दिन है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमारी भी कोशिश होती है, हमारा भी प्रयास होता है कि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाए जिससे आपका दिन और भी बेहतर से बेहतरीन हो सके साथियों। और बस ये छोटे छोटे प्रयास होते हैं जो आपके दिन को और आपकी सुबह को दोनों को बहुत ही खास और विशेष बना देते हैं। चलिए श्रोताओं आगे बढ़ेंगे, और क्या कुछ खास रहा है ये भी मैं आपको फटाक से बताऊंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन।

चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और भी कुछ खास हैं जो आज के दिन को और बेहतर से बेहतरीन बना रही हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपके साथ फटाफट साझा करूंगा। श्रोताओं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर आपको बता दें आज के दिन 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया था। श्रोताओं आज के दिन 1948 में आज के दिन भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवाएं जो है जो सेवा थी वो शुरू की थी। श्रोताओं आज के दिन और आपको बता दें पेरिस में आज के दिन फ्रेंच अपना टेनिस प्रतियोगिता में भारत के महेश भूपति ने मिश्रित युगल खिताब जीतकर इतिहास बनाया था आज के दिन 1997 में। श्रोताओं तो ये आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमने आपके साथ साझा करी। हमें उम्मीद है कि ये जो जानकारियां हैं ये आपको ज़रूर कहीं ना कहीं आपके डेली रूटीन में काम आएंगी और आपकी दिन को और सुबह को दोनों को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगी। श्रोताओं बात करें आज के दिन जिनमें खास कलाकारों की तो उनमें से एक नाम आता है MP जाबिर जी का जो भारतीय एथलीट हैं। आज के दिन इनका जन्म हुआ 1996 में। श्रोताओं बाकी हमने सारी डिटेल्स आपको दे दी हैं आज के दिन के बारे में, आज का कोटा क्यों खास है क्यों महत्वपूर्ण है। लौट कर आएंगे तो कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देंगे लोकल फॉर वोकल में क्या है और आपके आसपास में क्या गतिविधियां चल रही हैं, आपके आसपास क्या कुछ अच्छा चल रहा है ये अपडेट आप मुझे पहुंचा सकते हैं 9837896896 पर। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप के जरिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह। श्रोताओं चलिए आगे बढ़ेंगे और आपकी जो संदेश मुझे मिल रहे हैं उसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच इतने ब्यूटीफुल और प्यारे मैसेजेस के लिए, थैंक यू सो मच। एक बेहतरीन गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जल्दी से लौट कर आएंगे तो उसके बाद हम क्या कुछ खास बताने वाले, एक सवाल भी होगा जो आपके दिमाग की बत्ती गुल मीटर चालू करेगा जरा सी देर में इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए आरजी आनंद को ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। यह है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन 20 जून को क्या स्पेशल होने वाला है, क्या लेकर आ रहे हैं FM मुरादाबाद, डेफिनेटली बताऊंगा थोड़ी सी देर में। सुनते रहिए आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो। गुड मॉर्निंग।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाहे चाहे चाहे
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10। आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
7: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
8: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
7: पर पापा।
8: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
9: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
10: अरे यार मम्मी कुछ नहीं होगा, आप जल्दी से ना 2 पराठे मेरे को अखबार में पैक करके दे दो। अरे कैस्ट्रोल में अखबार डालू, रोटी पैक कर लू बेटा। अगर ये चीज आप करते हैं अब तो बॉस ये बहुत गलत होने वाली है। एग्जैक्टली मैंने ऐसा क्यों कहा है बताऊंगा अभी आपको। इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे हो गई है हमारी इस ब्यूटीफुल आर की शुरुआत। लेडीज एंड जेंटलमैन वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज मंडे की मॉर्निंग यार। मंडे ब्लूज तो आपको कतई नहीं होने देगा भाई लड़का। आपके सफर का साथी जो है आरजे आनंद, गुड मॉर्निंग है जी, वेलकम बैक। 1 सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग है जी। 9:05 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में और इस वक्त आपको बता दें आप जुड़ चुके हैं आपके शहर की धड़कन के साथ। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। ढेर सारे श्रोता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सो थैंक यू करना चाहते हैं आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए रिहाना जी मेरे साथ जुड़ गई और लिखती हैं, गुड मॉर्निंग आनंद सर, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। एक मैसेज मेरे पास आ गया, हेलो जी गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रिया है। हाय रिया जी गुड मॉर्निंग, लिखती हैं आनंद जी सुबह सुबह आपकी बातचीत सुन के हमारा तो दिन बेहतरीन हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन बातें आप करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हेलो जी सुप्रभात, नमस्कार, बस इतना ही कहना चाहते हैं जितने बच्चों का एग्जाम है वो प्लीज अच्छे से एग्जाम देने जाएं। ओह हां मुझे याद आया, आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है दोस्तों, तो जितने भी बच्चे एग्जाम देने इधर आए हैं या जो यहां से कहीं और जा रहे हैं उनको ढेर सारी बधाइयां शुभकामनाएं हमारी ओर से। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है आज 8 जून को, उसके लिए आप सभी को ढेरों एडवांस में बधाइयां। भैया एक मैसेज पहुंच गया हमारे पास सहारनपुर से, हमारे रेगुलर श्रोता हैं जोन रोजी पलविलीस, ये लिखते हैं कि सुनने की आदत डालो क्योंकि ताना मारने वालों की कमी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, मुस्कुराने की आदत डालो क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है और आगे बढ़ने की आदत डालो क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। वाह जी वाह, वाह वाह, वाह जी वाह, तुसी बड़ी कमाल हो यार, थैंक यू सो मच भाई साहब, इतनी ब्यूटीफुल लाइनें पढ़ने के लिए मजा आ गया इनको पढ़कर। जॉन साहब थैंक यू सो मच, सहारनपुर से आप जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस्तकबाल है आपका भी। एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है एक इमोजी के जरिए और ये इमोजी बड़ी अच्छी भेजी है और साथ में कि उन्होंने पोस्टर शेयर किया जिसमें लिखा है कि जिंदगी के मसले जिंदगी भर खत्म नहीं होते, जिंदगी के मसले जिंदगी भर खत्म नहीं होते, कल कुछ और थे आज कुछ और हैं और कल कुछ और रहेंगे। वाह वाह कमाल करते हो यार। हाय गुड मॉर्निंग आनंद भाई, कैसे हाल चाल है? मेरा नाम प्रीति है। हाय प्रीति गुड मॉर्निंग, प्रीति जी लिखती हैं आनंद जी मैं स्टेशन रोड पे हूँ, थोड़ा सा जाम है, जा रही हूँ मैं हनुमान मूर्ति की तरफ, मुझे जाना है किसी काम से, आपको एंजॉय कर रही हूँ, थैंक यू सो मच हमारी मॉर्निंग को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। अरे मैम थैंक यू सो मच, ये बात बोल के आपने मेरा दिन बना दिया। चलो यार अभी लौट कर आते हैं कुछ और झकास बातों के साथ। आपकी ही मजा आई सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना रेडियो स्टेशन, जहां पर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने फिर से आपको बताना है अपना नंबर 9837896896, ये वो नंबर है जिस पर आप मेरे साथ अपने दिल की बात सीधा पहुंचा सकते हैं। श्रोताओं अब जो है कोई बहाना मत बनाओ, अपने दिल की बात अगर कहनी है तो सीधा पहुंचाओ आरजे आनंद तक। और ये आनंद जो लड़का है ना, ये आपके दिल की बात को पहुंचाएगा सीधा लाखों लोगों तक। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई, जल्दी से मैसेज करो, इंतजार है हमें आपके प्यारे प्यारे संदेशों का। ठीक है, बाकी जो लोग मैसेज कर रहे हैं उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया बढ़िया मैसेज आपके आ रहे हैं, कुछ खास और कड़क जानकारियां हैं जो आपकी सुबह को और ब्यूटीफुल बनाएंगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना ब्यूटीफुल रेडियो। और ये एक और मैसेज बड़ा अच्छा पहुंच गया है, ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आनंद भाई, सुबह सुबह आपने जो है तमाम जानकारियां दी उसके लिए शुक्रिया, आज मेरा एग्जाम है मैं जा रहा हूँ, क्या बात है, ऑल द बेस्ट। मेरे भाई नाम लिख के भेज देते तो मजा आ जाता। बाकी जो भी लोग आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बहुत

होए क्या सॉन्ग है यार, मतलब मजा आ गया इस गाने को सुन के। मैं तो फुल्ली रिचार्ज हो गया हूँ। मीका सिंह, सुनिधि चौहान की आवाज, हाउसफुल का गाना जिसने भाई साहब हमारा हाउसफुल कर दिया है डांस वाला। वेल वेलकम बैक जी, कैसे हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग, आप हैं आनंद के साथ, सुन रहे हैं आप एफएम मुरादाबाद 89.6 विद आरजे आनंद। ये आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छा, आप निकल गए अपनी मॉर्निंग शिफ्ट के लिए, तो ऑल द बेस्ट यार। अब जरा कुछ काम की बातें सुनो। पहली काम की बात ये कि आप इंस्टाग्राम फैंस हैं, आप इंस्टाग्राम लवर हैं, आई नो दैट आपको रील्स देखना बहुत पसंद है, आप स्क्रॉल करने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, दैट्स योर चॉइस ब्रो, नॉट अ प्रॉब्लम, ये आपकी अपनी कॉल है यार। आगे बढ़ते हैं, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम चलाने के शौकीन है तो क्या मतलब, आपको बता दूं आपके लिए एक नई खबर आई है भैया। मार्केट के अंदर इंस्टाग्राम प्लस करके एक नया अपडेट आ गया, एक नया वर्जन आ गया इंस्टाग्राम के, जिसका नाम है इंस्टाग्राम प्लस, जिसके अंदर आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ेगा। 299 रुपीस का आपको चार्ज देकर एक सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदना होगा। उसके बाद आपको इस इंस्टाग्राम प्लस के अंदर मिलेंगे कुछ बेहतरीन शानदार एक्सक्लूसिव टूल्स एंड साथ में कुछ एडवांस फीचर्स। जी हाँ, बहुत सारे टूल्स एंड फीचर्स आपको मिलने वाले हैं एक्सक्लूसिवली, जो बहुत एडवांस होंगे एंड जिसके जरिए क्या कुछ खास होगा ये तो आपको एक्सप्लोर करने पे ही पता लगेगा। अगर आप सोशली इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे आप इंस्टाग्राम जो है इसलिए यूज़ करते हैं कि अपने बिजनेस पर्पज से आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, आपका मन है सोशल मीडिया पे कुछ इंटरेस्टिंग करने का, तो मुझे लगता है ये बार प्लीज़ यू हैव टू गो एंड फिगर आउट, एक बार आप जरूर जाके इसको चेक कीजिए, आपको कुछ ना कुछ स्पेशल दिखेगा। इंस्टाग्राम प्लस अगर आया तो कुछ ना स्पेशल होगा यार, है ना। बाकी दिस इज योर चॉइस ब्रो, मेरा काम था आपको बताना। मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम मार्केट में अब एक नया इंस्टाग्राम फीचर लॉन्च हो गया, जिसका नाम इंस्टाग्राम प्लस। 299 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन आप पे करेंगे तो आपको एडवांस में फीचर्स एंड टूल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं भाई साहब एक और खास कड़क बात, वो ये है, क्या है भैया, देखो वक्त हो गया है 9:20, ये भी कड़क बात है यार। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, अखबार में अगर आपने खाना परोसा तो दिक्कत हो जाएगी बॉस। आपको बता दें अखबार में लिप्टा समोसा बड़ा पाव या मतलब चाट टाइप की चीज़ें अगर आपको कोई देता है खाने के लिए, मतलब न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करता है, पहले तो बहुत कम होता है ऐसा, घर में अक्सर हमारी मम्मियाँ कर लेती हैं, दीदियाँ कर लेती हैं, बट अब नहीं करना है आपने, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है हमारी सेहत के लिए। बट अगर आपको कोई शॉपकीपर कुछ इस तरह की चीज़ें समोसा बड़ा पाव या चाट आपकी आपको उसमें न्यूज़ जो अखबार होता है वेस्ट उसमें अगर वो सर्व करके दे रहे हैं तो ये उनके लिए भी खतरा है और आपके लिए भी खतरनाक है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा इसलिए भी बन सकता है क्योंकि FSSAI ने फूड वेंडर्स और रेस्टोरेंट्स को अखबार में खाना परोसने या पैक करने की जो है रोक लगाते हुए एक चेतावनी जारी की है, अगर ऐसा किया तो भैया उनके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। आपको बता दें भैया डेली NCR में जो एक घरेलू जो LPG सिलेंडर उसको लेके थोड़ा सा झटका लग गया है, एब्सोल्युटली आप सही सुन रहे हैं। आपको बता दें LPG सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपीज़ की बढ़ोतरी कर दी गई है। पिछले 3 महीनों के भीतर रसोई गैस सिलेंडर के दाम जो है भैया दूसरी बार इसमें बढ़ोतरी हुई है। पहले बीते 7 मार्च को सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये का एक तगड़ा इजाफा किया गया था, श्रोताओं इजाफा जो है इसमें किया गया था। वहीं आपको बता दें अब एक बार फिर से अपने देश की राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो वाला जो LPG सिलेंडर है उसकी कीमत फिर से बढ़ गई है, यानी कि पहले 913 रुपये का था, अब ये 942 का हो गया, यानी कि 942 का हो गया, 29 रुपीज़ और बढ़ गए डेली में LPG सिलेंडर पर। और अभी बात करते हैं भैया, मैंने आपको बता दिया है इंस्टाग्राम पे एक नया फीचर इनरोल हुआ है जिसका नाम है इंस्टाग्राम प्लस। मीटा ने लॉन्च किया है एक नया फीचर। आपको बता दें राजस्थान से भी खबर आई कि भैया जयपुर में आज रात 8 जून को जो है 12 बजे तक इंटरनेट नहीं चलेगा। तो भैया अगर हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो उधर भी सुनते हैं तो आपको बता दें भैया जयपुर के अंदर तो इंटरनेट हो गया है बंद, आज 8 जून को रात 12 बजे तक इंटरनेट सर्विस अवेलेबल नहीं होगी वहां पर। अच्छा यार, इसी बात से मुझे याद आया, अगर एक दिन के लिए इंटरनेट अपने मुरादाबाद में बंद हो जाए, मतलब मान लो एक दिन के लिए आपका इंटरनेट बंद हो जाए, तो आप उस दिन अपने दिन को कैसे सेलिब्रेट करोगे? क्योंकि अभी तक तो मोस्टली हमारा जो डे होता है वो अपने मोबाइल फोन के साथ ही हम ज्यादातर स्पेंड करते हैं, रील्स देखना, फेसबुक, ये वो इन ऑल दैट। बट अगर एक दिन के लिए इंटरनेट नहीं होगा मेरी और आपकी जिंदगी में, तो हम फिर तो फोन हमारे लिए बाड़ी है यार, फिर फोन तो मतलब काम का ही नहीं ना। बट अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, मान के चलो आपका और मेरा इंटरनेट गायब हो जाए, तो उस दिन अपने दिन को हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्या कुछ खास करना चाहेंगे, क्या लगता है आपको, जरा बताइए अपने ओपिनियंस। 9837896896 व्हाट्सएप नंबर है, बहुत ही सिंपल, इस पर आप मैसेज करिएगा जरूर। 9 जून से 11 जून तक लू अलर्ट आया है, क्या कहता है मौसम विभाग, इस पे हम चर्चा करेंगे जरा सी देर में। 9:22 हो रहे हैं, बहुत तगड़ी अपडेट हमने आपको दे दी है, ढेर सारी बातें हो गई हैं। अब एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे तो आपको कुछ और बेहतरीन बातों से रूबरू कराएंगे, कुछ और खास इन्फॉर्मेशन आपको आप तक पहुंचाएंगे इस स्टेशन पर। तो देखो यार, जानकारियों के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है एंटरटेनमेंट का ये चस्का, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और अभी एक गाना जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आज की सुबह, इसको सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
एंड आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं 9837896896। स्टूडियो का नंबर बहुत सिंपल है, इस नंबर पे आप हमें मैसेज करिए। इंतजार है भैया आपकी मैसेजेस का, और मैं कह रहा भाई व्हाट्सएप करने का, आप नहीं कर रहे, अपने पड़ोसी को बोलो वो मुझे मैसेज कर दें। इंतजार कर रहा हूँ 9837896896। कुछ और खास खबरें, सब कुछ तो आपको पता लगता है इस स्टेशन ऑफ द नेशन। आप कहाँ जा रहे हैं, आप दिल्ली रोड जा रहे हैं, आप कांच रोड जा रहे हैं, स्टेशन रोड जा रहे हैं, या फिर आप जा रहे हैं रामपुर दोराई की तरफ, भैया जहाँ भी आप जा रहे हैं कहीं भसड़ मची है तो आप मुझे अपडेट कर सकते हैं। गागन पे स्पेशली मॉर्निंग में बड़ा रश होता है क्योंकि वहाँ पर सारे वर्कर्स और सारे लोग उधर निकलते हैं जीरो पॉइंट की तरफ, तो अगर उधर कहीं पे भी हल्का फुल्का जाम है तो यू कैन अपडेट मी 9837896896। आपकी जिम्मेदारी है बॉस।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो सुन रहे हैं आप लेडीज एंड जेंटलमैन। बंदे के नाम आनंद है। 8 जून की सुबह मंडे मॉर्निंग है जहां बातें हो रही हैं ढेर सारी आपके साथ, आपके काम से जुड़ी। 8 जून को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, सर दर्द होना आम बात है, लेकिन अगर सर दर्द लगातार बढ़ रहा हो, बार बार उल्टी आती हो, नज़र जो है धुंधली होने लगी हो, शरीर के किसी हिस्से में कमज़ोरी महसूस होती है, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के मौके पर एक ऐसा दिन जो हमें दिमाग की सेहत के प्रति जागरूकता रहने का एक मैसेज देता है, एक

तीश देता है श्रोताओं। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि हर दिन जो है आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल तो लेकर आते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे दिवस होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि भैया आप जो है जागरूक बने। देखिए ये जो दिन है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम अपने मोबाइल की बैटरी, गाड़ी की सर्विस और घर की देखभाल तो करते ही हैं, लेकिन अपने दिमाग की सेहत पर कितना ध्यान देते हैं ये बहुत ज़रूरी है। आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के मौके पर जागरूकता फैलाएं, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और अपने छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें जिसमें आपको खुशी मिलती है आप वो ज़रूर कीजिए। पर अगर आपको लग रहा है कि भैया आपको इनमें से कोई से भी सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ आप इसको अवॉइड मत कीजिए, डॉक्टर से डेफिनेटली कंसल्ट कीजिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी स्पेशल दिवस अगर आता है इस टाइप का तो वो कुछ ना कुछ हमें मैसेज और एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, एक अवेयरनेस, एक सोशली मैसेज के लिए होता है। तो श्रोताओं ये जो दिवस बनाए गए हैं वो जागरूकता बढ़ाने के लिए और कहीं ना कहीं इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए इन दिवस को मनाया जाता है साथियों। तो ऐसे में आपने जो है छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है और प्लीज़ डोंट डू दिस। हाँ ये नहीं है कि अगर आपको छोटा सा भी दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये तो नॉर्मल है, बहुत ही ऐसी ही कुछ दिक्कत नहीं, भाई ऐसे अवॉइड नहीं करना है आपको। दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, यानी कि आज का जो दिन था वो अवेयरनेस के प्रति जो है लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, जिसपे मैं आपके साथ अभी बात कर रहा था श्रोताओं। और आपको बता दें आज एक और बहुत ही स्पेशल दिवस है, महासागर को प्रदूषित होने से बचाएं, जल जीवों की रक्षा में अहम भूमिका निभाएं, आज विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को इसकी भी बहुत बहुत बधाइयां जी। तो श्रोताओं ये देखिए बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जो समय कम पड़ जाता है, लेकिन हम आपकी जो है भाई साहब छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, बहुत ज़रूरी है। अभी ख्याल रखेंगे आपकी हेल्थ का, कुछ स्पेशल चीज़ आपको बताने वाला हूँ आज की सुबह। अभी थोड़ी देर पहले हम विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि ये जो दिवस है वो हर साल 8 जून को मनाया जाता है और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है श्रोताओं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। एंड अभी आगे बढ़ेंगे और आपकी जो मैसेज आए हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, आप सभी को दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम है, जो बच्चे आज एग्जाम्स के लिए निकल रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट आरजे आनंद की पूरी इंटायर फैमिली की ओर से और हमारे तमाम श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयां। बिल्कुल भी आपने जो है पैनिक नहीं होना है, बस फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, एनर्जी के साथ आपने आगे बढ़ना है। जिस तरीके से अभी आप बढ़ रहे हैं उस तरीके से ही बढ़ते जाना है और अच्छे से अपने एग्जाम को फिनिश करके आना है। एक गाना लगा रहा हूँ आपकी सुबह को और भी अल्टीमेट बनाएगा इस सॉन्ग। एंड अभी लौट कर आता हूँ कुछ एड ब्रेक, उसके बाद मेरी एंट्री होगी, कुछ और खास इन्फॉर्मेशन आपकी हेल्थ से जुड़ी, एक खास अपडेट लेकर आया हूँ स्टेशन ऑफ द नेशन पे। ये है मंडे मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, बातें वही जो आपका दिल चाहता है। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, बस आप ऐसे ही सुनते जाइए और दिल से कहिए जियो बिंदास। 3 2 1 गो, एंजॉय।

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
6: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
7: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
6: पर पापा।
7: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
8: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
9: माँ मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ।
8: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
9: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
8: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
10: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
11: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: गुड मॉर्निंग है, क्या बात है जी। अच्छे गानों के साथ फुल ऑन वाइब आपको मिल रही है इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। जचदाई लगा के निकलो बस, बहुत जरूरी है, धूप बहुत तेज है आज। हाय हाय हाय हाय हाय यार, एक तो टाइम बड़ी जल्दी भाग जाता है, हमें ऐसा लगता है यार इस टाइम को ना थोड़ा सा हमें रोकना पड़ेगा। टाइम भैया रुक जाओ ना यार थोड़ी देर। काश ऐसा हो पाता और मैं इस टाइम को रोक पाता। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग है जी, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पूरी बाहों के साथ। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल। एक मजे की बात आपको बताता हूँ, मजे की बात ये कि जो 8 जून है ना, बहुत खास है यार। आज बहुत सारे लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी है, बहुत सारे लोगों का बर्थडे है एंड बहुत सारे और भी स्पेशल ओकेजन है यार, जो भी फिलहाल आप सेलिब्रेट कर रहे हैं करते रहिए। लेकिन अभी जरा हम बताते हैं आपको आपके हेल्थ के बारे में एक खास बात। तो भैया देखिए, हेल्थ पर आज चर्चा कर रहा हूँ और आज अगर इस चीज को आप शामिल करते हैं अपने डाइट में तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। और आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक हेल्दी सा उपमा। यस, ये आपकी सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद है, खासकर जब इसमें ढेर सारी सब्जियों को जो है इस्तेमाल किया गया हो। तो ये फाइबर से भरपूर और कम कैलोरी वाला व्यंजन होता है जो आसानी से पच जाता है और लंबे समय तक आपको ऊर्जावान बनाए रखता है, जिससे वजन भी नियंत्रण में जो है रहता है और आप काफी हेल्दी फील करते हैं। श्रोताओं, तुरंत ऊर्जा का सूत्र माना जाता है सूजी, रवा में मौजूद जटिल कार्बोहाइड्रेट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके शरीर के लिए। इंस्टेंट आपको एनर्जी प्रदान करते हैं, यानी कि आपको इंस्टेंट एनर्जी का बूस्टर मिलता है। आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है यदि उपमा में गाजर, मटर, बीन्स और टमाटर जैसी सब्जियां शामिल की जाएं। तो ये फाइबर का बेहतरीन सूत्र माना जाता है और आपके पाचन को तंदुरुस्त रखने में काफी हेल्पफुल होता है। पोषक तत्वों से भरपूर होता है, सूजी में आयरन, विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक जैसे खनिज पाए जाते हैं जो हड्डियों और नसों की स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब देखिए, अगर आप उपमा का इस्तेमाल करते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, उपमा को आप शामिल करते हैं, उपमा को जो है आप तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंट देते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है आपकी हेल्थ के लिए। और आज की हेल्थ टिप्स में उपमा की बात कर रहा था आनंद। यस, उपमा ये आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, शरीर को इंस्टेंट ऊर्जा प्रदान करता है, हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, आपकी त्वचा और बालों को पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन भी आपको मिलते हैं। यार देखिए ना, हड्डियों को मजबूत बनाता है, तो कितना बढ़िया है। मतलब एक छोटा सा उपमा, इसके बहुत ही अल्टीमेट फायदे हैं, बहुत ही यूनिक फायदे हैं। तो आप उपमा को जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए, अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उपमा बनाने की रेसिपी आपको मिल जाएगी, इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर आप घर में बहुत अच्छा बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया, जब भी मौका मिले मुझे जरूर बुलाएं, मैं भी उपमा टेस्ट करना चाहूंगा। एंड लेट मी टेल यू कि उपमा अगर आप खाते हैं तो अगर आप इसको मॉर्निंग में लेते हैं तो ये आपकी फिटनेस के लिए बहुत ही डबल सुपर डुपर अमेजिंग वाला काम करेगा बॉस। तो ये तो हो गई आपकी हेल्थ की बात। अभी वक्त बता देते हैं, 9:50 होने वाला है स्टेशन क्लॉक में, यानी कि 9:50 होने को है। आनंद के साथ हैं आप और आज की सुबह एक बहुत ही कड़क सवाल जिसका जवाब आपने मेरे को देना है। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, जो बच्चे देने जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। बाकी आपको कहना चाहते हैं, अगर आपका एग्जाम आज है या फिर कल है या फिर परसों होने वाला है, जब भी होने वाला है आपको ढेर सारी बधाइयां जी। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपने, बस अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और अपने प्रिपरेशन पे आपने बिलीव करना है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड अच्छे से निकलिए, देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आइडेंटिफाई कीजिए आज का मेरा करेक्ट क्वेश्चन, आपने मेरे को मैसेज करके बताना है आज जो मैं ये गाना प्ले कर रहा हूं ये कौन सा ट्रैक है। आज इन अभिनेत्री का होता है हैप्पी वाला बर्थडे, बहुत ही कमाल की सुपरस्टार हैं, बहुत ही अल्टीमेट मूवी दी है, शी इज आइकॉनिक सेलिब्रिटी जिनकी आज जो है हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कौन है ये, हु आर यू मैन, आपको नहीं पूछ रहा हूं मैं, एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। शी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग सेलिब्रिटी यार, जिनका आज बर्थडे है। बर्थडे की बात पे आते हैं, आपको ये गाना आइडेंटिफाई करना है कौन सा ट्रैक है ये। शुरू करें, आप मेरे को व्हाट्सएप करके बताएंगे 9837896896। आप कहाँ रहते हैं या आप मुझे मैसेज करेंगे 9837896896 पे। यस, 9837896896 दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, इसको सेव कर लो यार। और आपको क्या करना है, अपने मैसेज बॉक्स में जाना है, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर। अभी जो आप म्यूजिक सुन रहे हैं वो कौन से गाने का है यही आपने आइडेंटिफाई करके मेरे को मैसेज करना है, ठीक है जी। हम इंतजार कर रहे हैं आपके मैसेजेस का। कौन सा ट्रैक है ये, कौन सा गाना है ये, यही आपको बताना है। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, बहुत ही कमाल की आइकॉनिक फिल्म है एंड बहुत ही अच्छे स्टार कास्ट है इस गाने के अंदर, बहुत ही बढ़िया जोड़ी दिखाई गई है। आप जल्दी से मुझे मैसेज करेंगे आप, आज इनका बर्थडे होता है।
1: अच्छा लगा हा?
0: बहुत ही आइकॉनिक ट्रैक है। व्हाट्सएप कर दो अपने नाम के साथ अपना सही जवाब, ठीक है? हम इंतजार कर रहे हैं 9837896896, ये स्टूडियो का नंबर है। अब जो है पाजी, ज्यादा देर मत लगाओ, मुझे मैसेज करके बताओ अभी जो आपने म्यूजिक सुना वो कौन से गाने का है, कौन है कमाल की आइकॉनिक सेलिब्रिटी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। जल्दी से लौट कर आता हूँ, उसके बाद बताऊंगा आपको इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। सुंदरी आरजी आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
4: वेलकम बैक ही वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, मंडे की सुबह आनंद के साथ मेरे जाने का टाइम हो रहा है, लेकिन जाने से पहले आपको एक छोटा सा काम दिया है, आपको मैसेज करके बताना है भाई साहब की जो अपन अभी गाना प्ले कर रहे हैं, कौन से अभी नेत्र पर फिल्म आया और भैया कौन सा गाना है ये? बहुत ही अच्छी फिल्म है यार, बहुत ही बेहतरीन गाना है। अच्छा चलो मैं एक मतलब जो है आपकी पिक्चर क्लियर कर देता हूँ, आज इनका बर्थडे है ना, उनके टॉप 10 ट्रैक यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ और इनके बारे में थोड़ी बात करता हूँ। अब कौन सी हीरोइन है ये? 8 जून अपने आप में बहुत ही स्पेशल तारीख है इनके लिए, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ, जिन्होंने बहुत खूबसूरत फिल्में दी इंडस्ट्री में। भैया देखिए आज जो है ना प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प बन रहा है, आज बर्थडे होता है शिल्पा शेट्टी का। आई एम टॉकिंग अबाउट शिल्पा शेट्टी, 8 जून को अपना जन्मदिन मनाती हैं, बॉलीवुड की वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने अभिनय, फिटनेस और टीवी की दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई है। आपको बता दें 1993 में वाजिगर फिल्म में जो है इन्होंने डेब्यू किया था, इस मूवी से इन्होंने जो है बॉलीवुड में एंट्री ली थी। श्रोताओं बहुत ही कमाल की फिल्म थी शिल्पा शेट्टी ने 1993 में वाजिगर से जो है बॉलीवुड में कदम रखा और उसके बाद जो है इन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। वो फिटनेस और योग को बढ़ावा देने के लिए भी जानी जाती हैं, कई लोकप्रिय रियलिटी शोज में जज की भूमिका निभा चुकी हैं, उनके फिटनेस आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है श्रोताओं। और आज शिल्पा शेट्टी का बर्थडे होता है, शिल्पा शेट्टी की अपनी जो है एक अलग ही पहचान है यार, शीज अल्टीमेट लेडी यार, शीज अल्टीमेट सेलिब्रिटी। आपको शिल्पा शेट्टी जी कैसी लगती हैं ये मैं नहीं पूछूंगा, बट मैंने आज उनका एक बहुत ही आइकॉनिक गाना प्ले किया है जो आपने आइडेंटिफाई करके मुझे व्हाट्सएप करके बताना है। आज की सुबह अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये ट्रैक तो आप बन जाएंगे मेरे शो के आज के सुपरस्टार। लेडीज एंड जेंटलमैन जरा सुनो, बहुत ही कमाल की एक्टिंग की थी यार इसमें। व्हाट्सएप कर दो मुझे 9837896896 पर, और बहुत ही कमाल की अल्टीमेट सेलिब्रिटी हैं, आज इनका बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इन्हीं की बातें कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि ये बड़ी आइकॉनिक स्टार हैं यार, अपने आप में एक लीजेंड सेलिब्रिटी हैं और अपनी फिटनेस को लेकर तो डेफिनेटली जानी जाती ही हैं शिल्पा शेट्टी जी, स्पेशली योगा को लेकर तो यार बिल्कुल मानना पड़ेगा शिल्पा को। अच्छा आगे बढ़ते हैं और अब जब शिल्पा जी की बात हो रही तो इन्हीं की फिल्म का एक गाना निकाल दिया मैंने, इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन गाना है। सुनिधि चौहान की आवाज आनंद के साथ हैं आप लेडीज एंड जेंटलमैन, और वंस अगेन वेरी हैप्पी बर्थडे शिल्पा शेट्टी एफएम मुरादाबाद की पूरी इंटायर फैमिली की ओर से, आरजे आनंद की ओर से, हमारे तमाम सुनने वाले लिसनर्स की ओर से शिल्पा शेट्टी को देते हैं उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। वो ऐसे ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा काम करती रहे और अपने फिटनेस को लेकर जो वो हम सभी को इंस्पायर करती है वो ऐसे ही करती रहे। ऑल द बेस्ट एंड वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
3: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
8: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: शिल्पा शेट्टी का बर्थडे है यार, और अगर ये गाने नहीं चलेंगे तो फिर कौन सी गाने चलेंगे। वेरी हैप्पी बर्थडे शिल्पा जी, आज उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन अगर आज आपका भी बर्थडे है तो आपको भी शुभकामनाएं। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद, मेरा नाम आनंद है। और देखिए भैया, 10:06 हो गए, यानी कि मेरे जाने का टाइम हो गया है, बट पता नहीं चला यार कैसे एक घंटा निकल गया है जी। तुम्हारी और मेरे दिल की जो बात है वो यही तो खास है यार। चलो जी आगे बढ़ते हैं। भैया आप चाहे ऑटो रिक्शा चला रहे हैं भैया, या आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, या आप भैया ड्राइव कर रहे हैं, आप जहां भी जा रहे हैं आपको शुभकामनाएं। हमने आज आपसे बड़ा सिंपल सवाल पूछा था, शिल्पा जी का बर्थडे, उन्हीं का एक बहुत ही आइकॉनिक और सुपर डुपर हिट वाला गाना है जो मैंने आपसे पूछा था। मैंने कहा था भाई मेरे को बताओ जरा ये जो मैडम जी गा रही है वो कौन सा गाना गा रही है। अच्छा लगा, यही गाना आपने पहचानना था भाई साहब। दीदी जी आपने भी कमाल कर दिया, यही तो पूछ रहा था मैं कब से, मगर कौन सा गाना है। अच्छा ही लगा होगा आपको, मुझे पता है भाई। और ये बताने के लिए आप कौन है हमारे साथ फोन लाइन पे, जरा आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी नमस्ते, कैसे हाल चाल है, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: जी जी जी सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपना नाम बताएं जरा।
1: संदीप गुप्ता, मुरादाबाद टेक्सी स्टैंड।
0: अच्छा जी, बताएं अपने बारे में, क्या हाल चाल है सर आपके और क्या करते हैं आप।
1: बढ़िया है सर, मैं टैक्सी चलाता हूँ, ड्राइव करता हूँ।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया, कहाँ पर, मतलब मुरादाबाद में चलाते हैं टैक्सी आप।
1: नैनीताल।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया, कैसा मौसम हो रहा है ये बताइए जरा वहाँ का।
1: बढ़िया, बारिश पड़ रही है।
0: क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो सर रेडियो कब से सुन रहे हैं आप संदीप जी। अरे वाह वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया आपसे बात करके। ये बताओ आज जो हमने गाना बजाया था वो कौन सा गाना था, कौन सी अभिनेत्री की, तो खैर हमने बात कर ही ली है, गाना बता दो यार कौन सी फिल्म से कौन सा था।
1: ये धड़कन पिक्चर का।
0: अरे वाह, गाने के बोल याद हैं सर। हेलो हेलो हेलो संदीप जी, आपकी आवाज मुझे थोड़ी सी कम आ रही है। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो ड्राइव कर रहे हैं, ऐसे में अक्सर कई बार नेटवर्क चले जाते हैं, लेकिन बिल्कुल उन्होंने सही कहा, धड़कन फिल्म का गाना था और टाइटल ट्रैक था ये। थैंक यू सो मच संदीप जी, बहुत बहुत बधाइयाँ, आज आपने मतलब जो है जवाब देकर अपने नाम खिताब कर लिया है, आज की सुबह आप हमारे विनर हैं, आपके लिए जोरदार तालियां, बाकी लोगों के लिए भी तालियां भाई। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं, आपके मैसेज की तरफ रुख करेंगे, ढेर सारे संदेश हमारे पास पहुंचे हैं। आज बर्थडे शिल्पा शेट्टी जी का, संभल से कविता जी ने सही जवाब दिया है, और मेरे पास मैसेज पहुंच गया है ब्रजेश जी का संभल से, गुड मॉर्निंग, इन्होंने एकदम राइट आंसर पहुंचा दिया है मेरे पास, थैंक यू सो मच। एंड मेरे पास प्रियंका जी का मैसेज आया है, साथ में मंडी चौक से हमारे साथ जुड़ी है एकता जी, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है एंड राइट आंसर भी पहुंचाती है, और साथ में कुछ वॉइस नोट प्यारे प्यारे मेरे पास पहुंच गए हैं, जरा ये भी फटाफट से सुनेंगे क्या पहुंचा रही हैं आज की सुबह मैम हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो
2: राधे राधे आनंद जी, इस म्यूजिक का राइट आंसर है तुम दिल की धड़कन में रहते हो, धड़कन मूवी से है, शिल्पा शेट्टी पे फिल्म आया गया।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपने सही जवाब दिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको भी राधे राधे, थैंक यू, वेलकम मैम। आगे बढ़ते हैं और एक संदेश और मेरे पास पहुंच गया है, गुड मॉर्निंग जी कैसे हाल चाल है, डीके अरोड़ा चंदन नगर से मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, एकदम सही जवाब दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: चलिए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और ये अपनी बुआ जी के घर आ चुके हैं छुट्टियां मनाने। डीके साहब बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत बधाइयां। आगे बढ़ते हैं, रिजवान खान साहब जुड़े हैं हमारे साथ आज की सुबह। थैंक यू रिजवान भाई। आगे बढ़ते हैं, रिहाना हमारे साथ जुड़ी हैं और बबलू सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, लिखते हैं, सफल इंसान वही होते हैं जो टूट के बनाना और टूटे को मनाना और रूठे को बनाना जानते हो, वही सफल इंसान होते हैं। क्या बात है, बड़ी प्यारी लाइन इन्होंने लिखी है। लिखते हैं आनंद जी गुड मॉर्निंग, ये जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं आज की सुबह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और एक मैसेज और मेरे पास पहुंच गया है। आनंद जी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? नमस्कार सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वंतिका अर्चित देवभूमि उत्तराखंड हमारे साथ जुड़ गए हैं रुद्रपुर से, थैंक यू। डॉक्टर सैयद शारिक अली इरशाद हुसैन अंसारी साहब जुड़े हैं आजाद नगर करूला मुरादाबाद से, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम की तारीफ लिखते हैं, हेलो जी गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं? मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है 10 को, मैं बहुत टेंशन में हूँ। शबीना खान जी ऑल द बेस्ट, टेंशन मत लीजिए, अच्छा होगा। हमारे साथ नासिर हुसैन साहब जुड़े हैं रहमतनगर से, लिखते हैं आनंद जी गुड मॉर्निंग, सुबह की हर किरण खुशियों का पैगाम लाए, आपकी आवाज हर दिल में एक नई उमंग जगाए, वाह वाह। यूं ही महकता रहे आप अपनी बातों से, आपकी बातों से हर सुबह का ये सवेरा। आरजी आनंद जी आपका दिन हर दिन सफलता और मुस्कान आपके चेहरे पर लेकर आए, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू सो मच। रेडियो वाला आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं विकी सागर जी, एंड साथ में हमारे साथ जुड़े हैं मेहराजुद्दीन कश्मीर से, थैंक यू वेरी मच। चमनलाल साहब भी जुड़ चुके हैं पुतली घर रोड से, सहारनपुर से जोन रोजी पल विलीज, बाकी लोगों ने टेक्स्ट मैसेज किए उनका भी धन्यवाद। 10:11 हो गए हैं साथियों, अब लूंगा आपसे जाने की अनुमति, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कंपनी यू कैन एंजॉय आरजी खुशी के साथ, ऑफ कोर्स आपको बहुत मजा आएगा, आप एंजॉय कीजिए। बाकी कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, वहाँ फॉलो कर सकते हैं, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ इंस्टाग्राम पे, प्लीज फॉलो कीजिए। और अगर आप हमारी ऑफिशियल आईडी फॉलो करना चाहते हैं तो बिल्कुल फॉलो कीजिए, एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से आपको ऑफिशियल आईडी मिलेगी, वहां पर भी हम आपको मिल जाएंगे। अब लेते हैं आपसे जाने की इजाजत, जल्दी मिलेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही रेडियो बजाते रहिए। और भाई साहब बस इतना कहना चाहते हैं, जो स्टेशन है ना ये देसी वाला स्टेशन है तो इसको ट्यून ही रखो यार। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू शिल्पा जी, बहुत बहुत बधाइयां आपको आपके जन्मदिन की। और आज अगर आप भी अपना बर्थडे मनाते हैं तो आज अपना बर्थडे आप मना रहे हैं शिल्पा जी के साथ। चलिए फिर अब निकलते हैं, मिलते हैं कल सुबह, बाय।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7060022430।
3: क्या सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए दोस्तों, मंडे की सुबह है, खुशी आपके साथ है। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और समय हुआ है 10:22। आठ जून की तारीख है और दिन बहुत ही खूबसूरत सा है, मंडे का, हफ्ते की पहली शुरुआत। जी हाँ, और दोस्तों हर नई सुबह एक नया मौका लेकर आती है। बीते हुए कल की गलतियों को पीछे छोड़िए और आज को मुस्कुराइए, अपनाइए एंड जीवन में आगे बढ़ते जाइए। दोस्तों, सफलता की शुरुआत बड़े कदमों से नहीं बल्कि हर दिन उठाए गए छोटे छोटे सकारात्मक कदमों से होती है। और इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं आज की सुबह। दोस्तों आप भी मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, नंबर 9837896896 इस पर अपने संदेश पहुँचाइएगा और अपने थॉट्स भी, अपने विचार भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फटाफट से हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने संदेशों का, आपके संदेशों का, कि आपकी प्यारी प्यारी बातें हम भी सुनने के लिए भी करार हैं। और दोस्तों मैं कहती हूँ, अगर आप इस समय काम में व्यस्त हैं तो थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा सा ठहर कर पानी भी पी लीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा क्योंकि वो सबसे अनमोल है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप हर चीज़ को जीवन में कर पाएंगे ना। चलिएगा, एक खूबसूरत सा गीत आज की सुबह सुनवाती हूँ, उसके बाद सिलसिला शुरू करते हैं आपका और हमारा।

0: की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
5: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास। यहाँ मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और साथियों, वक्त हुआ है 10:31। बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना। और देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि हर दिन अपने आप में स्पेशल होता है, और आज 8 जून की तारीख है, तो आज क्या स्पेशल है मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों। आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं विश्व महासागर दिवस। जी हाँ, महासागर केवल पानी का विशाल भंडार नहीं है, बल्कि ये हमारी धरती की धड़कन है। हमारी सांसों के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा समुद्र से ही मिलता है। लेकिन सोचिए ज़रा साथियों, जिस समुद्र ने हमें इतना कुछ दिया है, आज वही हमारी लापरवाही की वजह से संकट में है। एक रिसर्च के अनुसार, अगर हम अभी नहीं संभले तो साल 2050 तक समुद्र में मौजूद प्लास्टिक का वजन मछलियों के वजन से ज़्यादा हो सकता है। ज़रा कल्पना कीजिए, जहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ तैरनी चाहिए, वहाँ प्लास्टिक की बोतल और पॉलोथीन तैरती नज़र आ रही हैं। दोस्तों, समुद्र में फेंकी गई प्लास्टिक न केवल पानी को प्रदूषण करती है, बल्कि कछुए, मछली और कई समुद्री जीवों की जान भी ले लेती है। कई जीव प्लास्टिक को खाना समझकर निगल लेते हैं, और धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, बदलाव की शुरुआत किसी बड़े कदम से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से होती है। जिसे दोस्तों, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, कपड़े या जूट के बैग का उपयोग करें, समुद्र, नदी, तालाब या सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा ना फैलाएं, दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करें। और दोस्तों, समुद्र हमारी धरोहर है, इन्हें कूड़ेदान नहीं बनने देना। प्लास्टिक को कहिए ना और स्वच्छता को कहिए हाँ। और दोस्तों, अगर हम महासागर की रक्षा करेंगे तो महासागर हमारे आने वाली पीढ़ियों की भी रक्षा करेगा, क्योंकि जो हम देंगे रिटर्न में वही हमको मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, अभी भी वक्त है।

0: प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें। और अपने महासागर को क्लीन रखें। और हमारे पास यहाँ पर बहुत खूबसूरत संदेश भी आए हैं, उनको भी मैं क्विकली शामिल करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया हुआ है, गांव कुमार हीड़ा सहारनपुर से सैयद मंसूर जी का, और ये कहते हैं, आपको हमारा आदाब, आपको भी आदाब सर, शुक्रिया आपने अपना संदेश पहुंचाया है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है सर, गांव छत्तीसगढ़ से दिपीश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति एंड शिवांश वर्मा जी का, और ये भी हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है नेपा नगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह जी का, और ये कहते हैं, मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, हम बहुत ही अच्छे हैं, आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड भी हैं रईसदुल्ला अंसारी जी, और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। दोस्तों आप भी अपने संदेश पहुंचाइएगा आज की सुबह, बताइएगा कैसे हालचाल हैं आपके और क्या स्पेशल कर रहे हैं आप आज के दिन। देखिए हर दिन स्पेशल होता है, आज क्या स्पेशल कर रहे हैं ये आप मुझे बताइएगा। नंबर है 9837896896। और आपको पता है ना, आज खूबसूरत सी अभिनेत्री, जी हाँ, मल्टी टैलेंटेड एंड फिटनेस की क्वीन भी है शिल्पा शेट्टी जी, आज उनका बर्थडे है, और उन्हीं की फिल्म से मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर सॉन्ग सेलेक्ट किया है। दोस्तों आप मुझे बताइए कि शिल्पा शेट्टी जी की आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, आप अपनी फेवरेट फिल्म बताइएगा शिल्पा शेट्टी जी की, कौन सी आपको पसंद है। जी हाँ, फटाफट से जल्दी जल्दी से अपने संदेश पहुंचाओ, पीछे मत रह जाना आप, मैं आप ही से कह रही हूँ। जी जी जी, जो किचन में इस वक्त हमें सुन रही हैं, तो नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। को बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आप सभी के लिए, इंजॉय कीजिएगा।
1: ये रुमाल तेरी पहली निशानी, अच्छा है।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
5: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, यहाँ पर वक्त हुआ है 10:48। बहुत खूबसूरत गानों के साथ साथ आप बातें भी यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी कर रहे हैं। हमारे श्रोताओं की जो मैसेज आ रहे हैं उनको देख कर ना दिल बहुत हैप्पी है। और आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ मैं। दोस्तों, आज 8 जून की तारीख है और आज और क्या स्पेशल है, कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं वो सब मैं आपको बताऊँ। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूक करना और उन लोगों का हौसला बढ़ाना जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन हमारे शरीर को कंट्रोल सेंटर है। जब ब्रेन में असामान्य कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं तो उसे ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। अक्सर लोग इसके शुरुआत संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे लगातार सर दर्द रहना, बार बार चक्कर आना, देखने या सुनने में परेशानी होना या याददाश्त कमजोर होना, अचानक व्यवहार या बोलने में बदलाव आना। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि ये लक्षण हमेशा ब्रेन ट्यूमर के ही हों, लेकिन यदि ऐसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, हम तो यही कहेंगे आपसे। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, बीमारी से लड़ना नहीं बल्कि समय रहते ही उसकी पहचान करना सबसे बड़ी समझदारी है। तो अगर आपको इस तरह से कोई अगर इश्यू है, आपको लग रहा है, तो आप सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे बातचीत करें, जांच करवाएं। और दोस्तों, आज के आधुनिक चिकित्सा युग में कई प्रकार के ब्रेन ट्यूमर का इलाज संभव है, इसीलिए जागरूकता, सही जानकारी और समय पर जांच बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करेंगे, किसी भी गंभीर लक्षण को हल्के में नहीं लेंगे आप, और अपने परिवार दोस्तों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा जो स्वास्थ्य है वो सबसे अनमोल है। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हर एक चीज़ का हम लोग तो उठा पाएंगे। जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो तभी अचीव कर पाएंगे ना जब आपका स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ होगा। तो उसके लिए अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखिए, थोड़ी सी भी लापरवाही ना करें। और दोस्तों, स्वस्थ दिमाग ही खुशहाली जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अपने शरीर की सुनिए, अपने स्वास्थ्य का सम्मान कीजिए और समय पर जांच जरूर करवाइए। और हमारे पास और प्यारे प्यारे से संदेश आए हैं, उनको भी जल्दी से हम शामिल कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी सब्र से इंतजार कर रहे हैं, हम जानते हैं। श्रोताओं, हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। और ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान जी। और मैंने दोस्तों आपसे पूछा था, आप मुझे बताइए कि आज शिल्पा शेट्टी जी का बर्थडे है, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टर्स हैं एंड योगा की, जी हाँ, फिटनेस की क्वीन भी हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि उनकी कौन सी फिल्म आपकी सबसे फेवरेट है, जो आपने बार बार देखी हो लेकिन दिल है कि मानता नहीं फिर भी देखने पर मजबूर हो जाता है। बताइएगा कौन सी फिल्म है शिल्पा शेट्टी जी की जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। अपना मैसेज हमें पहुँचाइए, हमें इंतजार है आपके खूबसूरत संदेशों का। नंबर 9837896896। और एक मैसेज हमें यहाँ पर मिला है, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, रामपुर से शमा जी का, कैसी हैं आप? शमा, हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा कैसे हाल चाल हैं आपके? उम्मीद तो यही है कि आप सभी अच्छे ही होंगे इस समय, और गर्मी में बस यही कह रहे होंगे हाय गर्मी, है ना? गर्मी बहुत ज़्यादा है, ख्याल रखो अपना अच्छे से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए हैं रानी नांगल से रिहाना जी का, और रिहाना जी हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग रिहाना आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए हैं, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये अपना मैसेज हमें पहुँचाते हैं काशी नगरी बनारस से
मौसी अंसारी जी, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं सरताज अंसारी, शाहिद अंसारी जी और सद्दाम अंसारी जी। इन्होंने बड़े खूबसूरत से थॉट्स भी शेयर किया है कि एक जंगल में एक पेड़ था, आधा सूखा और टेढ़ा मेढ़ा, बाकी पेड़ उसे देखकर हंसते थे। तुम बेकार हो, ना सीधे हो ना हरे भरे हो। पेड़ चुपचाप था लेकिन अंदर से दुखी भी था, क्योंकि जब लोग डीमोटिवेट करते हैं ना, जब नेगेटिव बोलते हैं तो मन थोड़ा दुखी भी होता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ साथियों, तेज आंधी आई, सभी बड़े पेड़ और सीधे पेड़ अपने घमंड और अकड़ में थे और हवा के दबाव से एक एक पेड़ गिर गए। लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा पेड़ हवा के साथ झुकता रहा और बच गया। आधी आंधी के बाद जंगल में वही पेड़ खड़ा रहा। तब उसे समझ आया, कमजोरी नहीं लचीलापन मेरी ताकत थी। हर कमी वास्तव में कमजोरी नहीं होती, जो परिस्थिति के अनुसार खुद को बदल लेता है वही टिकता है। जिंदगी में ठोकरें नहीं लचीलापन जरूरी है। दोस्तों देखिए, जिंदगी में ना अगर कोई आपको डिमोटिवेट करता है तो उनकी बातों को इग्नोर कीजिए। आपको पता है ना कि आपके अंदर क्या क्षमता है, तो आप अपने ऊपर काम कीजिए और सामने वाले की बातों को इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपसे बड़ा साथी आपका कोई और नहीं है, आप खुद अपने साथी हैं। तो अपने मन की आवाज़ सुनिए, जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं आप। चलिए अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ खूबसूरत गीतों को यहाँ पर सुनते हैं। बाकी आप भी अपने मैसेज पहुँचाइएगा आपने, हाँ जी, आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। अब मुस्कुरा भी दो, इतनी प्यार सी खुशी आपसे कह रही है। और ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, इंजॉय कीजिएगा।

0: सिर दर्द, लकवा, रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
7: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
8: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
9: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
8: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों मेरे साथ भी यही होता है, मैं देर करती रही हूँ लेकिन देर हो जाती है। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो मॉर्निंग मसाला, खुशी आपके साथ ही दोस्तों। और ये बेहतरीन ट्रैक आपने सुना फ्रॉम द मूवी हिना से, बहुत ही खूबसूरत सा गीत एंड बहुत प्यारी सी आवाज़ श्रेष्ठ पाटीकर साथ में लता मंगेशकर जी की। एंड कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे आपके संदेश आए हैं और मैंने आपसे कहा था कि देखिए आज शिल्पा जी का बर्थडे है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल एक्टर्स हैं। एंड मैंने आपसे मालूम किया कि दोस्तों आप मुझे उनकी फिल्म बताएगा, कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है शिल्पा जी की, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार पाँच बार देखी है लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं, फिर भी कहता है कि चलिए वही फिल्म देख लेते हैं। हाँ जरा बताइएगा कौन सी फिल्म है आपके दिल के करीब शिल्पा जी की, जो आपको बेहद पसंद है। और इस बेहद खूबसूरत गीत की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी हरिओम महेश्वरी जी ने मुरादाबाद से। कहते हैं खुशी जी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये बहुत बहुत धन्यवाद हमें पहुँचाते हैं, मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद की कोई बात नहीं, खुशी का काम है खुशियाँ बांटना। और अभी आप स्माइल कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे पास यहाँ पर पूजा जी का मैसेज आया है विकास नगर से। कहती हैं गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। कहती हैं कि मैम मुझे ना शिल्पा जी की धड़कन मूवी बहुत पसंद है और मैंने इसको पूरी 10 बार देखा है लेकिन फिर भी दिल पर मेरे कोई कंट्रोल नहीं है, लाइक फिर भी दिल कहता है कि उसी फिल्म को देखते हैं और जब धड़कन फिल्म मैं देखती हूँ तो मेरा दिल भी धड़कता है। ओ हो, ये बात है क्या पूजा, थैंक यू सो मच। और इन्होंने एक प्यारे सी गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, नाना करते प्यार, धड़कन मूवी से बिल्कुल सुनवाएंगे। एंड नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर हमारे पास आया है शमा जी का रामपुर से, और ये शबनम जी का रामपुर से, और ये साथ में इनकी राहत अली जी हैं, नेहा हैं, लाइबा काजमी हैं। और ये कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और उम्मीद करते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आप भी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराती रहें। और इन्होंने बहुत ही प्यारी सी लाइनें भेजी हैं, दिल में भेजी लिखकर, मतलब एक खूबसूरत सा दिल भेजा है उसके अंदर, वो प्यारी सी लाइनें हैं। क्या हैं दोस्तों, क्या भेजा है जरा सुनिएगा कि मेरी धड़कन ही मेरी जिंदगी का साज है, मेरी धड़कन ही मेरी जिंदगी का साज है, तू मेरी मोहब्बत नहीं मेरी जिंदगी का आगाज है, तेरा नाम लूँ तो सुकून मिलता है, कि तेरा नाम लूँ तो सुकून मिलता है, तू ना मिले तो बेचैनी बढ़ जाती है, अगर हो इंतज़ार तो एक बात कहूँ, अगर हो इजाज़त तो एक बात कहूँ, तुझसे शुरू और तुझ पर ही ख़त्म हो मेरा हर एहसास है। अरे वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी लाइनें भेजी हैं शबनम जी आपने, थैंक यू सो मच। सीधा दिल को टच कर गई हैं आपकी बातें, बहुत प्यारी हैं। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, खुशी जी जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं दुर्गेश सैनी जी कल्याणपुर मुरादाबाद से, और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे। ओ हो, सुबह सुबह दीवानगी। चलिए दोस्तों सुनते हैं खूबसूरत गीत और उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर से आपसे करेंगे गुफ्तगु। बाकी आप मुझे अपने संदेश पहुंचाइएगा, नंबर 9837896896, रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गीत, खूबसूरत बातें, इन्फॉर्मेशन, जानकारी पाते रहिए। विद आरजे खुशी।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ,
4: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
5: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।
9: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
10: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
9: अरे तो भाई, चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
10: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
9: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
11: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, अभी समय की बात करें, समय आपको बताएं तो वक्त हुआ है 11:27 और बाहर बहुत गर्मी है। प्लीज़ इस मौसम में अपना अच्छे से ख्याल रखें। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि गर्मी का मौसम आते ही ना कई स्वादिष्ट फलों की खुशबू चारों ओर फैल जाती है, और इन्हीं फलों में से एक नाम है रसीली और मीठी सी लीची। जी हाँ दोस्तों, इस समय आसाम के सोनितपुरी जिले में लीची की कटाई पूरे शबाब पर है, एंड बागों में पेड़ों से लटकी लाल लाल लीचियाँ किसी खूबसूरत तस्वीर से कम नहीं लग रही हैं। किसान और बाग में जो मालिक हैं, इस बार अच्छी पैदावार से काफ़ी उत्साहित हैं। सच कहें तो ये नज़ारा मेहनत और प्रकृति की सुंदर मेल की कहानी बयां करता है। वैसे श्रोताओं, क्या आपको भी लीची खाना पसंद है? अगर हाँ है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि गर्मी में लीची खाने सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। लीची खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। लीची को रखें हाइड्रेट। लीची में पानी की मात्रा काफ़ी होती है जिससे गर्मी में शरीर को ठंडक और ताज़गी मिलती है, इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार होता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। ऊर्जा का अच्छा स्रोत, थकान महसूस हो रही हो तो कुछ लीची तुरंत ऊर्जा देने का काम करती हैं, एंड त्वचा के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। आपकी स्किन के लिए भी लीची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को चमकदार और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।

आई एम गुड, मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये कहती हैं, दी गर्मी बहुत हो रही है और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि सभी बहन भाई अपना अच्छे से ख्याल रखें। एग्जैक्टली राइट डियर, हम भी यही सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब अपना ख्याल अच्छे से रखें। और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, चांद सिफारिश, चांद तारे फूल शबनम, तुमसे अच्छा कौन है। ओ हो, क्या बात है भाई। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ब्रजेश जी का मैसेज हमारे पास आया है और ये नमस्कार पहुंचाते हैं। आपको भी नमस्कार, ग्राम चमोरा जिला संभल से ये मैसेज पहुंचाते हैं। चमरोवा से ये अपना मैसेज पहुंचाते हैं और हमें कहते हैं, मैम आप हमें गीत सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल सर, सुनवाएंगे आपको, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है उमा शंकर जी का और ये कहते हैं, मैडम जी नमस्कार, हम सभी लोग आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। ये मैसेज पहुंचाते हैं हमें उमा शंकर सिंह जी, साथ में अविंतिका है, अर्जित सिंह है और ये मैसेज पहुंचाते हैं रुद्रपुर देव भूमि उत्तराखंड से। एंड साथ में इन्होंने बहुत सारे फ्लावर्स हमें भेजे हैं, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, कहते हैं गुड मॉर्निंग, आपको कैसी हैं आप। मैं बहुत अच्छी हूँ सर, और अच्छे भी नहीं होते ना तो जब आप सब हमारे हालचाल पूछते हैं ना तो हम और अच्छे हो जाते हैं। दोस्तों यही तो प्यार है आपका और हमारा, देखिएगा यहाँ पर हम भी सब्री से आपका इंतज़ार करते हैं, आपके संदेशों का इंतज़ार करते हैं और जब वो आते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है गुड मॉर्निंग जिला रामपुर की टांडा से मोहम्मद कामिल जी का, साथ में इन्होंने बड़ी प्यारी सी लाइनें भी लिखी हैं, कहते हैं कि हाथों की लकीरों में किस्मत होती है, मिलना और भूल जाना लोगों की फितरत होती है, बिखरता तो हर कोई है दर्द में, मगर गम भुलाना इंसान की जरूरत होती है। अरे वाह क्या बात है। और भी यहाँ पर बैक टू बैक संदेश आ रहे हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है, कहते हैं माय फेवरेट आरजे खुशी जी, राधे राधे, आपको भी राधे राधे। अजीत कसाना जी का मैसेज हमारे पास आया है और साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं, आदित्य कसाना हैं, लदावली जिला मुरादाबाद से अपना संदेश पहुंचाते हैं। तो दोस्तों कुछ और यहाँ पर खूबसूरत गीत सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे, करेंगे आपसे और भी गुफ्तगू। एंड और क्या कुछ है आज बताएंगे आपको, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए क्योंकि कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है।

हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना, चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। और सच में दोस्तों, आपसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता है। आप सब इतने प्यारे हैं ना कि जितनी आपकी तारीफ करें कम है। और दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो मॉर्निंग मसाला। मैं आपकी दोस्त आरजे खुशी आपके साथ हूँ। और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है बेस्ट फ्रेंड डे। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में ना बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ को परमानेंट पार्ट बन जाते हैं हमारी लाइफ का। जी हाँ, जानते हैं उन्हें हम कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड वो होते हैं जो आपकी हर स्टोरी बिना बोले सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, जो आपकी जोक्स पर हंसते भी हैं और जरूरत पड़ने पर आपके साथ भी होते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो आपकी खामोशी को भी समझ लेते हैं। और दोस्ती एक ऐसी रिलेशनशिप है दोस्तों, जहाँ सॉरी की ज़रूरत कम और समझने की ज़रूरत ज़्यादा होती है, राइट ना। और दोस्तों, हर किसी के पास ना ऐसा दोस्त ज़रूर होना चाहिए जिसे कॉल करके सिर्फ इतना आप कह सकते हैं, लाइक बहुत सारी बातें आपसे करनी है और वो चुपचाप आपकी बातें सुनते रहें। और कहते भी हैं, बड़ी खूबसूरत सी लाइनें भी हैं कि दोस्तों, ये दोस्ती का रिश्ता भी ना बड़ा अजीब होता है, ये दोस्ती का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। मिल जाएं तो बातें लंबी, बिछड़ जाएं तो यादें लंबी। और जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो बिना बोले हर बात समझ जाते हैं। अगर आप मुस्कुराकर भी उनसे बात करते हैं ना, और आपके पीछे की जो तकलीफ होती है, जो दर्द होता है, वो समझ लेते हैं। अरे मुस्कुराना बंद कर और बता क्या प्रॉब्लम है, है ना, होता है ना। और वो दोस्त ना बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं ऐसे दोस्त। अगर आपके पास ऐसे फ्रेंड्स हैं तो उनको संभाल कर रखिए उस रिश्ते को। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर खूबसूरत जो मैसेज आए हैं उनको भी मैं क्विकली शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हरिओम महेश्वरी जी का मुरादाबाद से। और ये कहते हैं, खुशी जी आपने मालूम किया था शिल्पा शेट्टी जी की आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है। इन्होंने कहा है कि शिल्पा शेट्टी जी की फर्स्ट मूवी माय फेवरेट मूवी एंड बाजीगर, उनकी फर्स्ट मूवी मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह क्या बात है, बाजीगर फिल्म भी बहुत अच्छी है और सारे ट्रैक भी बहुत ही प्यारे हैं बाजीगर मूवी के। मैंने भी देखी है सब, आई रिमेम्बर, मुझे याद आया अभी। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहर हुसैन सिद्दीकी जी का। साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी। इनकी पूरी फैमिली सुन रही है इस वक्त कार्यक्रम को, सभी को हम दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए विकी सागर जी का और कहते हैं, आरजे खुशी जी गुड मॉर्निंग, बाहर बहुत गर्मी है, इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, हम सभी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का। साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं सैयद शारिक अली जी, बाबू अंसारी जी, महराज अंसारी जी। और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, आई एम फाइन। एंड कहते हैं, मंडे में आपका शो मॉर्निंग मसाला सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक से बढ़कर एक गीत प्ले हो रहे हैं। और कहते हैं कि कल बिंदास बोल शो में रीना जी को सुना, उसके बाद आनंद जी को सुना, बहुत ही अच्छा लगा। और ये एक ट्रैक सुनना चाहते हैं कुमार सानू जी की आवाज में, अभी तो मोहब्बत का आगाज है। बिल्कुल सर, ट्राई करते हैं हम इस ट्रैक को सुनवाने की। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए हैं, हेलो मैम कैसे हैं आप, आई एम गुड।
ये मैसेज हमारे पास राधिका एंड गीता कश्यप जी का मैसेज आया है नवापुर मुरादाबाद से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हमें आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाइन पार से पायल, आकांक्षा, गुड़िया एंड इनका मैसेज हमारे पास आया है। कैसा मौसम आया है बाहर बताओ, कैसा वेदर है? आकांक्षा बताएगा, अभी आपने मौसम की बात की है तो हमें बताओ बाहर का वेदर कैसा है। और एक प्यारे सी गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है यहाँ पर ललिता कश्यप जी ने, तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद लौट कर आते हैं और भी करेंगे आपसे बातचीत दोस्तों।

0: बहन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
6: अपोजिट
5: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
7: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
8: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
9: कॉल 8826213131।
10: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
11: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
10: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
11: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
12: कॉल 7500153841।
13: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
14: माँ, मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ?
13: अरे तो भाई, चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
14: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
13: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
15: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और इस खूबसूरत गीत को भी आपने एंजॉय किया। इस पहले से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी इरशाद हुसैन अंसारी जी ने। और दोस्तों, दोस्ती ना किताब की तरह होती है। हर दोस्त एक नया अध्याय सिखाते हैं और कुछ दोस्त पूरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन जाते हैं। तो दोस्तों, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। एंड हैप्पी बेस्ट फ्रेंड डे एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे एंड कीप स्माइलिंग। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर, ओके। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और हमारे पास एक टेक्स्ट मैसेज भी यहाँ पर आया है। हाय राम राम जी, खुशी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कार्तिक जी का मैसेज हमारे पास आया है, कार्तिक गुप्ता का, लाइन पार से। और इन्होंने एक प्यारे सी गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, तो बिल्कुल ये ट्रैक हम सुनवाएंगे आपको। एंड दोस्तों, बस जाते जाते यही कहूँगी कि मिलूंगी मैं आपसे सी यू सून 3 से 5। तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब हमारे साथ कनेक्ट हुए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई होप आप सबने भी आज का कार्यक्रम इंजॉय किया होगा। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, कीप स्माइलिंग। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, तो मुस्कुराते भी रहिए।

0: सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूँ। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। इस जांच से म्यांमार से मादक पदार्थ की तस्करी और आपूर्ति करने वाले संगठित गिरोह का पता चला है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
7: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
8: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
7: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
8: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B, बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: स्वागत है साथियों, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, और ये कार्यक्रम है आपका अपना पसंदीदा शो, अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपका दोस्त RJ आनंद। आज की बात बहुत जरूरी है क्योंकि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। श्रोताओं, ये एक ऐसा दिन है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि तंबाकू सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान धीरे धीरे अपनी जिंदगी और अपने परिवार की खुशियों को खोता है। और इस साल का संदेश भी बहुत साफ है, अनमास्किंग द अपील, यानी कि इस दिखावे को हटाना है। तंबाकू और निकोटीन कोई स्टाइल या आधुनिकता की चीज है, असल में ये एक लत है, एक बीमारी है जो खासकर हमारे नौजवानों को अपनी तरफ खींच रही है। और इसी कड़ी में बात करने के लिए एक बार फिर से हमारा साथ दे रही हैं टीकन देवी, यानी कि हमारी प्यारी टीकन भाभी। तो टीकन भाभी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: और मेरे प्यारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, आज तंबाकू का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। पहले लोग सिर्फ सिगरेट तक सीमित थे, लेकिन आज नए नए रूप आ गए हैं। ई सिगरेट, फ्लेवर्ड, निकोटीन पाउच, ये सब ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे ये सुरक्षित हो, आधुनिक हो, लेकिन सच्चाई ये है सब एक ही चीज है, लत लगने के तरीके। और सबसे दुखद बात तो ये है कि ये खासकर बच्चों और किशोरों को निशाना बना रहे हैं,
0: जिसमें धीरे धीरे इंसान खुद ही फंस जाता है बिना ये समझे कि वो किसकी तरफ जा रहा है।
1: बिल्कुल, यही सच्चाई है। कंपनियां बहुत सोच समझकर ऐसे रंग, फ्लेवर और पैकेजिंग तैयार करती है जो खासकर बच्चों और युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक बार ट्राई कर लो, दोस्तों के साथ मजा आएगा, स्टाइलिश लगेगा। लेकिन असल में वही से लत लगनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे शरीर निकोटीन की आदत हो जाती है, और ये सिर्फ चॉइस नहीं रह जाती है, ये एक जरूरत बन जाती है। इंसान चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाता, और कोशिश और शरीर और दिमाग दोनों इसकी मांग करने लगते हैं।
0: ठीक है भाभी, अगर हम अपने देश की बात करें, भारत में ये समस्या कितनी बड़ी है, क्या ये सच में इतनी फैल चुकी है जितना हम सुनते हैं?
1: हाँ भैया, भारत में स्थिति काफी चिंताजनक है। करीब हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ खैनी, गुटखा, बीड़ी जैसे स्मोकर्स और सस्ते तंबाकू उत्पाद ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और सबसे दुखद बात तो ये है कि हर साल लगभग 10 से 12 लाख लोगों की मौत सिर्फ तंबाकू के कारण होती है। जरा सोचिए ये संख्या कितनी बड़ी है। और इसमें सिर्फ वही लोग शामिल नहीं हैं जो तंबाकू लेते हैं, बल्कि वो भी शामिल हैं जो दूसरों के धुएं के संपर्क में आ जाते हैं।
0: मतलब जो खुद तंबाकू नहीं लेते वो भी इस खतरे से बच नहीं पाते।
1: इसे हम सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं। अगर घर में या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो तंबाकू लेता है, तो उसका असर काफी बाकी सभी लोगों पर भी पड़ता है। खासकर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बच्चों में सांस की बीमारी बढ़ जाती है, बार बार खांसी जुखाम होता है। महिलाओं में कमजोरी और गर्भावस्था के दौरान गंभीर समस्याएं हो सकती, यानी व्यक्ति की आदत पूरे परिवार की सेहत पर भी भारी पड़ सकती है।
0: भाभी, लेकिन लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम तो बस थोड़ा बहुत लेते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या इसमें कोई सच्चाई है या ये भी एक गलतफहमी है?
1: नहीं, ये पूरी तरह से एक भ्रम है और बहुत खतरनाक भ्रम है। तंबाकू का कोई भी रूप सुरक्षित नहीं होता, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो या कोई नया निकोटीन प्रोडक्ट। हर रूप शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, खासकर मुंह, गले और फेफड़ों का कैंसर। इसके अलावा दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, फेफड़ों की खराबी, ये सब सीधे सीधे तंबाकू से जुड़े हुए होते हैं। और इतना ही नहीं, तंबाकू शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को भी कमजोर कर देता है।
0: मतलब ये सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक ऐसी जड़ है जिसमें कई खतरनाक बीमारियां निकलती हैं और धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म करती हैं।
1: बिल्कुल भैया, और यही वजह है कि इसे जितनी जल्दी समझा जाए उतना बेहतर है। तंबाकू छोड़ना सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता, ये पूरे परिवार की खुशियों और सेहत को बचाने का फैसला होता है। इसीलिए आज नहीं तो कल, लेकिन ये कदम उठाना ही होगा।
0: चिकन भाभी, कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक किसी की मतलब असली कहानी से ना जुड़े। ऐसा होता है ना कि जब तक कोई कहानी उनके सामने ना आ जाए तब तक उन्हें वो चीज समझ नहीं आती। क्या आपके आसपास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें और हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर दे?
1: हाँ, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ हमारे ही इलाके के एक आदमी की। उनका नाम था रमेश। रमेश एक मेहनती मजदूर थे। सुबह से शाम तक काम करते थे, परिवार चलाते थे, लेकिन उनकी एक आदत थी बीड़ी पीना। पहले उन्होंने दोस्तों के साथ मजाक मजाक में शुरू किया था, थोड़ा रिलैक्स मिल जाता था। ऐसे धीरे धीरे एक दिन में 2 बीड़ी पीने से लेकर 10-12 बीड़ी पीने तक पहुँच गयी। उसकी पत्नी अक्सर उन्हें समझाती, ये मत पियो, बच्चों का ख्याल करो, लेकिन रमेश हंसकर टाल दिया करते थे, कुछ नहीं होता, मेरे बाप दादा भी पीते थे। समय बीतता गया और एक दिन रमेश को खांसी शुरू हो गई। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे खांसी बढ़ती गई, सांस फूलने लगी और काम करने में मुश्किल होने लगी। जब हालात बहुत ज्यादा खराब हुए तो परिवार उसे अस्पताल लेकर गया। जांच में पता चला कि उसके फेफड़े पूरी तरह खराब हो चुके थे और शुरुआती टीवी भी थी। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर अभी भी नहीं रुके तो हालात और बढ़ जाएंगे। उस दिन पहली बार रमेश डर गया था। उसने अपने बच्चों को देखा, अपनी पत्नी की चिंता देखी और फैसला किया, अब बस। शुरुआत आसान नहीं थी। शरीर बार बार निकोटीन मांगता था, चिड़चिड़ापन होता था, बेचैनी होती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर की मदद ली, काउंसलिंग ली और धीरे धीरे खुद को उस आदत से दूर किया। कुछ दिनों बाद उसकी हालत सुधरने लगी, खांसी कम हुई, सांस ठीक होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। आज रमेश खुद गांव में लोगों को समझाता है, मैंने गलती की लेकिन तुम मत करना। वो स्कूल में जाते हैं, युवाओं से बात करते हैं और कहते हैं, जो शुरुआत में मजाक लगता है वही आगे चलकर सबसे बड़ी सजा बन जाता है।
0: सच में भाभी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि एक छोटी सी आदत कैसे जिंदगी बदल सकती है और सही समय पर लिया गया फैसला कैसे उसे वापस भी ला सकता है।
1: बिल्कुल, और यही संदेश हमें सब तक पहुँचाना है।
0: तो भाभी, अगर कोई व्यक्ति सच में ये ठान ले कि उसे आपको छोड़ना है लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करे, तो वो क्या करे? क्योंकि कई लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन बार बार वापस उसी आदत में लौट जाते हैं।
1: देखिए, सबसे पहला कदम होता है एक पक्का फैसला लेना, अपने मन में ये ठान लेना कि आज के बाद नहीं। जब तक ये अंदर से नहीं आएगा तब तक बाहर की कोई भी सलाह काम नहीं करेगी। उसके बाद अपने घर और आसपास से तंबाकू की हर चीज हटा दें, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जो भी हो, क्योंकि जितनी आसानी से वो चीज सामने दिखती है उतना ही मन डगमगाएगा। इसके साथ ही अपने परिवार और दोस्तों को भी बताइए कि आप ये आदत छोड़ना चाहते हैं, ताकि वो आपका साथ सकें, आपको रोक सकें जब आपका मन डगमगाए। आगे आगे अगर जरूरत महसूस हो, डॉक्टर या काउंसलिंग की मदद लेना बिल्कुल सही कदम है। आजकल सरकार की हेल्पलाइन भी उपलब्ध है, जहां मुफ्त में सलाह मिलती है, मार्गदर्शन भी मिलता है। और सबसे जरूरी बात, धैर्य। समझना बहुत जरूरी है कि तंबाकू की लत एक दिन में नहीं लगी तो एक दिन में छूटेगी भी नहीं। बीच बीच में मन करेगा, मन बेचैन होगा, लेकिन अगर हर दिन खुद को संभालते रहेंगे तो धीरे धीरे ये आदत कमजोर पड़ जाएगी और एक दिन पूरी तरह छूट जाएगी।
0: भाभी, इस पूरे सफर में परिवार क्या कर सकता है? क्योंकि कई बार परिवार या तो बहुत डांटता है या फिर ध्यान ही नहीं देता है।
1: परिवार की भूमिका सबसे अहम होती है आरजे आनंद। अगर कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है समझ और सहारे की। डांटने या ताना देने से इंसान और कमजोर पड़ जाता है। इसके बजाय उसे समझाइए, उसका हौसला बढ़ाइए, छोटी छोटी सफलताओं पर उसकी तारीफ करें, घर में एक ऐसा माहौल बनाएं जहां वो खुद को सुरक्षित और समर्थ महसूस करे। अगर परिवार साथ दे तो ये मुश्किल सफर भी आसान हो सकता है।
0: सच में बिल्कुल सही कहा टीकन भाभी। साथियों, आज की इस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, तंबाकू कोई फैशन नहीं है। ये एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस जाल से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। बस एक मजबूत इरादा और सही सहारे की जरूरत है, और ये कदम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने बच्चे और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए उठाना बहुत जरूरी है।
1: याद रखिए, लत से आज़ादी ही असली आज़ादी है। जब आप तंबाकू छोड़ते हैं तो सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ते, आप अपनी जिंदगी को एक नया मौका देते हैं। इसलिए आज ही सोचिए और पहला कदम उठाइए, तंबाकू छोड़िए और जीवन जोड़िए। अगर आप अनुमति दें तो मैं एक कहानी साझा करना चाहूँगी जो थोड़ी कठिन है सुनने में, लेकिन शायद हमारे श्रोताओं को सच्चाई का एहसास करा सके। देखिए, ये कहानी है हमारे ही पास के एक गांव के रहने वाले शंभू की। शंभू एक साधारण सा आदमी था, छोटा सा खेत, पत्नी और दो बच्चे। मेहनती था, जिम्मेदार था। एक आदत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, गुटखा और बीड़ी की लत। शुरुआत बहुत छोटी थी, खेत में काम करते हुए थकान मिटाने के लिए दोस्तों के साथ थोड़ा गुटखा खा लिया करता था। फिर धीरे धीरे ये आदत रोज की जरूरत बन गई। सुबह उठते ही पहला काम गुटखा और रात को सोने से पहले बीड़ी। उसकी पत्नी कई बार मना करती थी, बच्चे भी कहते थे बाबा मत खाओ, लेकिन शंभू हर बार यही था, कुछ नहीं होता, सब खाते हैं। समय के साथ उसके मुंह में जलन शुरू हुई, फिर एक छोटा सा घाव बना जो भरता ही नहीं था। पहले उसने नजरअंदाज किया, फिर देसी इलाज किया, लेकिन हालात धीरे धीरे बिगड़ गए। खाने में दर्द, बोलने में तकलीफ, और आखिरकार जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया मुंह का कैंसर। ये सुनकर जैसे उसकी दुनिया ही रुक गई। इलाज शुरू हुआ, ऑपरेशन हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा काटना पड़ा, आवाज बदल गई और वो ठीक से बोल भी नहीं पाता था। सबसे ज्यादा असर उसके परिवार पर पड़ा। उसकी पत्नी दिन रात उसकी सेवा करती, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। अपने बच्चे, अपने पिता को उस हालत में देखकर डर जाते थे। जो आदमी कभी उनके लिए ताकत का सहारा था, वही अब खुद सहारे पर था। धीरे धीरे शंभू का काम छूट गया, घर की आमदनी खत्म हो गई और इलाज का खर्च बढ़ता गया। एक छोटी सी आदत जिसने सिर्फ उसकी सेहत नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। और आरजे आनंद, सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि आखिरी दिनों में शंभू खुद कहता था, काश मैंने उस दिन सुन लिया होता, काश मैंने ये आदत छोड़ दी होती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी का मकसद डराना नहीं बल्कि सच दिखाना है। तंबाकू का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन जब सामने आता है तब बहुत कुछ छीन लेता है, सेहत, पैसा, परिवार की खुशियाँ, सब कुछ। इसलिए जो आज फैसला ले सकते हैं वो कल का इंतजार ना करें, क्योंकि कुछ फैसले अगर देर से लिए जाएं तो उनका असर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार को झेलना पड़ता है।
0: सच कहूँ टीकन भाभी, ऐसी कहानियाँ सुनकर समझ आता है कि तंबाकू का नुकसान सिर्फ किताबों या पोस्टर तक सीमित नहीं है, इसके पीछे असली जिंदगियाँ हैं, असली परिवार है, और एक ऐसा दर्द जिनकी भरपाई कभी नहीं हो पाती। कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन बीमारी किसी को पहले से बताकर नहीं आती।
1: बिल्कुल, इसीलिए जरूरी है कि हम डरकर नहीं समझदारी से फैसला लें। अगर आप तंबाकू लेते हैं, छोड़ने की शुरुआत आज से ही कीजिए, और अगर नहीं लेते तो कभी शुरुआत मत कीजिए। साथ ही अपने बच्चों और युवाओं को भी समझाइए कि असली ताकत किसी गलत आदत को अपनाने में नहीं बल्कि उसे दूर रहने में है।
0: और साथियों, याद रखिए, हर नई शुरुआत का सबसे अच्छा समय आज का होता है। हो सकता है शुरुआत मुश्किल लगे, लेकिन आपका एक छोटा सा फैसला आने वाले वर्षों की खुशियां और सेहत बचा सकता है। तो खुद से एक वादा कीजिए, स्वस्थ जीवन चुनेंगे और गलत आदतों को ना कहेंगे। और आज का हमारा संदेश, ना स्टाइल में ना ट्रेंड में, जिंदगी है अपने कंट्रोल में। तंबाकू से दूरी अपनाओ, स्वस्थ जीवन का रास्ता पाओ। इसी के साथ हम आज का अपना प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले एक बार फिर हम मिलकर यही शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें,
0: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कहीं। तो दोस्तों, मैं था आपका दोस्त आरजे आनंद, अभी लेता हूँ आपसे इजाजत इस प्रोग्राम से। बस जाते जाते इतना कहना चाहूँगा, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और तंबाकू से दूर रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो में, यानी कि सेहत सही लाभ कहीं में, एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

0: स्वागत है दोस्तों साथियों आपका। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एफएम मुरादाबाद 89.6, आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं, आज तो मैं कसम से बता रहा हूँ बहुत थक गया हूँ, और ये मैं सच में आपको बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिलहाल स्वागत करते हैं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम पसंदीदा सेहत सही लाभ कहीं, और मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद। सच कहूँ तो आज आवाज में जोश कम और गर्मी ज्यादा है। अभी स्टूडियो में बैठा हूँ एसी चलाकर, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठा हूँ। सुबह जब से घर से निकला हूँ तब से ऐसा लग रहा है जैसे आज दिन थोड़ा ठीक नहीं गया मेरा, लेकिन जैसे तैसे सूरज ऊपर चढ़ा तो लगा कि भैया आज हालत तो खराब होने वाली है। अभी घड़ी में सिर्फ सुबह के 10 बज रहे हैं और लग रहा है जैसे दोपहर की एकदम घड़ी सर पर खड़ी है। तो दोस्तों, पहले सिर्फ मौसम गर्मी हुआ करती थी, लेकिन अब ये जैसे एक मुसीबत बन गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ गर्मी है या कुछ और भी गड़बड़ चल रहा है हमारे आस पास।
1: अरे आरजे आनंद,

0: सच बताऊं तो अभी गर्मी डराने लगी है, पहले जैसी नहीं हो रही है।
1: अरे आरजे आनंद, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। असल में इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिमी भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, तो वह हवा को ऊपर उठने नहीं देता बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब तो ये है कि जो गर्म हवा है जो जमीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल ही नहीं पाती, और जब ऊपर से बादल नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं, जमीन सूख जाती है और उनमें नमी नहीं रहती, और फिर वो गर्मी को और तेज से पकड़ती है, जैसे तवा गर्म होता जाता है।
0: इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है, बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बना रहा है।
1: बिल्कुल सही समझे आप, ये एक पूरा सिस्टम है। हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ जाता है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कई ज्यादा तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लगते हैं।
0: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है, और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं।
1: हाँ अजय आनंद, यही सच्चाई है, और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित है, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक होती है।
0: तो भाभी, अब ये बताइए कि लू क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं लू लग गई, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या होता है?
1: देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर आप हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो पसीना आना भी बंद हो सकता है, और उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है, और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है।
0: मतलब ये तो बहुत ही गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है टीकन भाभी?
1: हाँ बिल्कुल, अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही हीट लू स्ट्रोक में बदल सकती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और उसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है, या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं है बल्कि शरीर के लिए एक गंभीर खतरा है।
0: तो फिर भाभी, इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हम सब के लिए, घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
1: देखिए आरजे आनंद, घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पियेंगे, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ देर में पानी पीते रहे। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडक रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आने देते।
0: चिकन भाभी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की बात तो बताई, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि ORS भी बहुत जरूरी होता है। अब ये ORS क्या होता है और ये कब लेना चाहिए टीकन भाभी?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे आनंद। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी

0: की कमी के साथ साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ORS बहुत मदद करता है।
1: मतलब ये सिर्फ बीमारी में नहीं बल्कि गर्मी में भी काम आता है?
0: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी हो रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो ORS बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए। और अगर घर में ORS का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, घर पर भी घोल बनाया जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है।
1: वाह, मतलब ये तो बहुत ही आसान है और हर घर में इसे कोई भी बना सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारियाँ कितनी बड़ी मदद कर सकती हैं।
0: बिल्कुल RJ आनंद, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों हैं जरूरी डोज। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
1: हाँ, ये तो सही बात बोली टीकन भाभी आपने। अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
0: बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाए, और जब भी निकले तो शरीर को ढककर निकले, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
1: क्या बात है टीकन भाभी, और खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए? क्या गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसीलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाए, साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा ले जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा। ये ना सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की कमी भी नहीं होने देते।
1: भाभी, ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं जैसे मजदूर, किसान, रिक्शा चलाने वाले, उनके लिए भी तो और भी मुश्किल होगा उनका ये।
0: आपने बहुत जरूरी बात उठाई है, ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वे अपने काम का समय थोड़ा बदले, कोशिश करे कि सुबह जल्दी काम शुरू करे और दोपहर की तेज धूप में आराम करे, बीच बीच में पानी पीते रहे और जहाँ भी हवा मिले वहाँ थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा करे। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
1: मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
0: बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विषय ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
1: बिल्कुल टीकन भाभी, अगर सच में किसी को लू लग जाए टीकन भाभी, तो उसे उस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि ऐसे में वो क्या करें।
0: ऐसी स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डाले या गीला कपड़ा रखे ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है।
1: भाभी, एक बात और बताइए, ये गर्मी तो हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन क्या जानवर भी इससे उतने ही प्रभावित होते हैं?
0: अरे RJ आनंद, जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं, बल्कि कई बार उनमें उनसे भी ज्यादा, क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह छांव या साफ पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसीलिए गर्मियों में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
1: तो भाभी, इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल तो नहीं सकते लेकिन इस गर्मी को उतना ही झेलते हैं जितना हम।
0: बिल्कुल आर्जे आनंद, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दे तो वे किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवनदान बन सकता है। ये छोटा सा काम है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है और यही असली इंसानियत है।
1: साथियों, आज की इस बातचीत ने हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाई है। गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रहा, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। हम बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना और अपने शरीर को आराम देना, और सबसे जरूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, या कोई मजदूर हो, या फिर कोई बेजुबान जानवर, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही हमारी असली ताकत है श्रोताओं। तो याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहे हम सब तैयार, और एक बात, धूप से बचाव है जरूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। क्या बात है श्रोताओं, भाभी आपकी बातें सुनकर एक बात समझ आ रही है कि अगर हम लापरवाही करेंगे तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है हम सभी के लिए। क्या आपने भाभी कभी कोई ऐसा मामला देखा है जहाँ लापरवाही भारी पड़ गई हो?
0: हाँ आरजे आनंद, और ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के एक गांव के पिछले साल एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम करते थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी लेकिन बच्चे को भी साथ ले गए। तेज धूप थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पिला देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया, और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था।
1: ये तो बेहद ही दुखद है भाभी।
0: हाँ अजय आनंद, और सबसे दुख की बात ये है कि ये रोका जा सकता था अगर समय पर पानी पिला दिया जाता, अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं।
1: सही कहा टीकन भाभी। साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है, इसीलिए आज से ही तय कर लीजिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
0: और अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाए तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
1: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं श्रोताओं, लेकिन जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं एक प्यारी सी शपथ।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।
1: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद, अब लेता हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा इसी शो में यानी सेहत सही लाभ कई के एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए और हाँ दोस्तों, पानी पीते रहिए और से रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और हाँ, याद रखिए, पानी पीते रहना ही आपकी एक सही जिम्मेदारी है। छांव में रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। अच्छा, चलिए श्रोताओं, अब मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
6: हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचता मेरा दिल है, नई राह है, नई मंजिल है।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 और हम बात करने वाले हैं सेहत से लाभ कई। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक के ऊपर जो थोड़ा अलग है। सच कहूँ तो मुझे खुद थोड़ा झिझक भी हो रही है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं की देखभाल के एक ऐसे तरीके पर जो सुनने बहुत ही सरल लगता है, लेकिन असल में जीवन बचाने की ताकत रखता है। और इस विषय को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे अपने सेहतिया भैया, जो हमेशा हमें स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी बताते हैं, आसान भाषा में समझाते हैं। सेहतिया भैया, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आज के शो में।
1: आरजीना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। आपने सारे प्यार और भरोसे के लिए आज तो आपने शुरुआत ही इतनी भावुक कर दी है कि लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है। आरजीना,
0: बात तो सच में बहुत ही बड़ी लग रही है सेहतिया भैया, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ। ये कंगारू मदर केयर आखिर है क्या? नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो बस वही जानवर वाला कंगारू आ जाता है जो अपने बच्चे को पेट के थैले में रखता है। तो क्या इसका मतलब कुछ वैसा ही है, या मैं पूरी तरह गलत सोच रही हूँ?
1: अरे आरजीना, नहीं नहीं, आप पूरी तरह भी गलत नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। नाम जरूर कंगारू से लिया गया है, लेकिन ये तरीका इंसानों के नवजात बच्चे के लिए है और बहुत ही खास और जीवन बचाने वाला तरीका है। इसमें भी एक तरह से माँ अपने बच्चे को अपने शरीर से ऐसे लगाकर रखती है जैसे कंगारू अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है, इसीलिए इसे कंगारू मदर केयर कहा जाता है।
0: अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है बात, लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में घूम रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर अस्पताल में इलाज और मशीनें हैं, तो फिर इस तरह के तरीके की जरूरत क्यों आई?
1: देखिए, यही वो जगह है जहां हम सच्चाई को समझते हैं, और हमें सच्चाई को समझना होगा। हर साल दुनिया भर में लगभग 13 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से करीब 40 लाख बच्चे अपने जीवन के पहले 4 हफ्तों में ही दुनिया छोड़ जाते हैं। सोचिए, अभी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई होती है और खत्म हो जाती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि नवजात बच्चों की देखभाल कितनी जरूरी है। आरजीना,
0: ये तो सच में बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है भैया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इतनी जल्दी अपनी जान गंवा देते हैं।
1: जी हाँ, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है, बहुत से बच्चे या तो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, यानी 9 महीने पूरे होने से पहले, या फिर उनका जन्म के समय वजन बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें ज्यादा देखभाल, गर्मी, पोषण और सुरक्षा की जरूरत होती है आरजीना, जो हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होती है।
0: तो क्या ऐसे बच्चों के लिए अस्पताल में कोई खास इलाज होता है? जैसे मैंने फिल्मों में देखा है, वो कांच का डिब्बा जिसमें बच्चे को रखा जाता है, वो क्या होता है?
1: हाँ, उसे इनक्यूबेटर कहा जाता है। ये मशीन होती है जो बच्चे को जरूरी गर्म और सुरक्षित माहौल देती है, लेकिन समस्या ये है कि हर जगह ये उपलब्ध नहीं होती, खासकर हमारे गांव और दूर दराज इलाकों में। और हाँ, जहाँ उपलब्ध होती है वहाँ हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुँचाना मुश्किल हो जाता है।
0: तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होता है भैया, अगर मशीन भी नहीं है और बच्चों को खास देखभाल चाहिए तो परिवार क्या करे?
1: यहीं पर कंगारू मदर केयर की उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही किसी और चीज की। इसमें सिर्फ माँ का स्पर्श और उसका प्यार, उसका समय लगता है। माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर रखती है, जिससे बच्चे को गर्मी मिलती है, उसकी सांसें स्थिर रहती है और अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है जो उस माँ के गर्भ से मिलती थी। और यही साधारण सा तरीका कई बार बच्चे की जान बचा देता है।
0: सिर्फ माँ के स्पर्श से? ये बात सुनने में तो बहुत ही अद्भुत लग रही है। सेहतिया भैया, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में अभी भी ये सवाल उठ रही है कि ये आखिर संभव कैसे है। क्या सच में सिर्फ पास रखने से ही बच्चे की हालत बेहतर हो सकती है?
1: देखिए आरजी रीना, यह कंगारू मदर केयर की खासियत है। इसका मतलब है कि बच्चे को माँ सीने से लगाकर सीधा रखती है, जिसे हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कहते हैं, जिसे कंगारू अपने छोटे बच्चों को अपने थैले में सुरक्षित रखता है। वैसे ही माँ अपने नवजात को अपने शरीर से लगाकर रखती है और इस दौरान बच्चे को ना केवल गर्मी मिलती है बल्कि उसे पूरी तरह सुरक्षा और सुकून भी महसूस होता है, जो उसके विकास के लिए बेहद ही जरूरी है।
0: ओहो, तो क्या इसका मतलब ये है कि बच्चे को गोद में ले लिया जाए वही काफी है?
1: नहीं आरजे रीना, सिर्फ गोद में लेना ही काफी नहीं है। इसमें खास बात यह है कि बच्चे को सीधा शरीर से लगाकर रखा जाता है ताकि उसका पूरा शरीर माँ की त्वचा के संपर्क में रहे। इससे बच्चे को लगातार गर्मी मिलती है, उसकी से संतुष्ट रहती है और वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है। और ये एक तरीका बच्चे को वही माहौल देता है जैसे उसे गर्भ में मिलता था।
0: सुनने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, जैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या ये तरीका सच में इतना असरदार है?
1: बिल्कुल आरजे रीना, बिल्कुल असरदार है। कई शोधों में ये साबित हुआ है कि जिन बच्चों को कंगारू मदर केयर दी गई है उनकी मृत्यु दरें कम हो रही हैं और उनका वजन तेजी से बढ़ रहा है, वो ज्यादा स्वस्थ पाए गए हैं। यहाँ तक कि लंबे समय से भी ऐसे बच्चों के शरीर और मानसिक का विकास बेहतर देखा गया है।
0: मतलब एक माँ का साधारण सा स्पर्श एक बच्चे के जिंदगी बचा सकता है, ये सोच कर ही मन भर आता है।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, बिल्कुल। और इस साल का यह संदेश भी है, साइलेंस इज स्ट्रेंथ, यानी जब माँ शांत होकर बच्चे को अपने पास रखती है, उसे समय देती है, तो वही सादगी और स्थिरता बच्चे की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है आर्जेरीना।
0: वाह, ये बात दिल को छू गई। सच में कभी कभी सबसे सरल चीजें ही सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। अच्छा सेहतिया जी, अब एक जरूरी सवाल, क्या ये तरीका घर पर भी अपनाया जा सकता है या सिर्फ अस्पताल में ही किया जाता है?
1: जी हाँ आर्जेरीना, इसे घर पर भी किया जा सकता है। शुरुआत अस्पताल में डॉक्टर या नर्स की सलाह से होती है, लेकिन जब माँ और बच्चा घर लौटते हैं तो वही इसे भी जारी रखा जा सकता है, बशर्ते सही तरीके से किया जाए और स्वास्थ्यकर्ताओं की सलाह जरूर ली जाए।
0: तो फिर इसे सही तरीके से करने का तरीका क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि सभी श्रोताएं समझ सके।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, इसमें बच्चे को माँ के सीने पर सीधा रखा जाता है, उसका सिर हल्का सा एक तरफ मुड़ा होता है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चे को इस तरह रखा जाता है कि उसका शरीर स्वस्थ रहे और उसे कपड़े या दुपट्टे की मदद से अच्छे से बांध दिया जाता है ताकि वह हिले डुले नहीं और आराम से टिका रहे।
0: और इस दौरान बच्चे को खाना कैसे दिया जाता है?
1: आर्जेरीना, इस दौरान सबसे जरूरी है कि बच्चे को केवल माँ का दूध ही दिया जाए। माँ का दूध ही उसके लिए सबसे अच्छा पोषण है, जो ताकत उसे माँ का दूध दे सकता है वो कोई और नहीं। और सबसे अच्छा पोषण होता है माँ का दूध, जो ताकत भी देता है, बीमारियों से भी बचाता है और उसके विकास में भी मदद करता है।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीका सिर्फ बच्चे को गर्म रखने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसे जरूरी पोषण भी देता है, यानी एक ही तरीके से बच्चे की कई जरूरतें पूरी हो जाती है, जो सच में काफी खास बात है।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, आपने बिल्कुल सही समझा, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि बिना किसी महंगे उपकरण के सिर्फ माँ को स्पर्श करके और माँ के दूध से बच्चे की सुरक्षा और पोषण और सुकून तीनों ही मिल जाते हैं।
0: अरे भैया, अब तो मेरा मन और जानने का हो रहा है, पर जरा विस्तार से बताइए कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं ताकि हमारे श्रोता भी इसे अच्छे से समझ सके।
1: देखिए आर्जेरीना, जब कंगारू मदर केयर सही तरीके से दी जाती है तो बच्चे का शरीर का तापमान संतुलित रहता है, जिससे उसे ठंड लगने का खतरा कम हो जाता है। उसकी सांसें भी ज्यादा स्थिर और बेहतर हो जाती हैं। ऐसे में बच्चा आम तौर पर ज्यादा समय तक आराम से सोता है, कम रोते हैं और उनका वजन भी सामान्य तेजी से बढ़ता है। कुल मिलाकर उनका शरीर और मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है।
0: ये तो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसका असर माँ पर भी पड़ता है।
1: जी हाँ अर्जेरीना, बिल्कुल पड़ता है। जब माँ अपने बच्चे को इस तरह से अपने पास रखती है तो उसका दूध बेहतर तरीके से बनने लगता है। साथ ही माँ और बच्चे के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता भी बनता है, जो आगे चलकर बच्चे के विकास में बहुत मदद करता है। माँ का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि माँ वो अपने बच्चे को अच्छे से उसकी देखभाल कर पा रही है।
0: वाह, ये तो सच में माँ का जादू ही हुआ। इतनी साधारण से चीज लेकिन असर इतना गहरा। अच्छा सेहतिया भैया, एक बात मेरे मन में आ रही है। हम बार बार माँ की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन क्या इसमें पिता की भी भूमिका होती है, या ये पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की ही होती है?
1: आरजी रीना, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। अक्सर हम यही सोचते हैं कि नवजात की देखभाल सिर्फ माँ का काम है, लेकिन सच तो यह है कि पिता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। कंगारू केयर सिर्फ मदर केयर तक सीमित नहीं है, कई बार इसे कंगारू पेरेंट केयर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर माँ किसी कारण से उपलब्ध ना हो या थकी हुई हो तो पिता भी अपने सीने से लगाकर यही केयर दे सकते हैं।
0: अच्छा, मतलब पिता भी अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर वही फायदे दे सकते हैं जो माँ देती है?
1: जी हाँ अर्चेरीना, पिता का शरीर भी बच्चे को गर्मी देता है, उसकी सांसों को स्थिर करने में मदद करता है और बच्चे को सुरक्षा का एहसास कराता है। इसके अलावा जब भी पिता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उनका बच्चा उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत मजबूत होता है।
0: ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पिता थोड़ा दूर रहते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए।
1: देखिए आरजी रीना, बिल्कुल, और यही सोच बदलने की जरूरत है। जब पिता इस तरह से बच्चे के करीब आते हैं तो ना सिर्फ बच्चे को फायदा होता है, बल्कि पिता का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वो भी अपने बच्चे की देखभाल में बराबर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और परिवार का माहौल सकारात्मकता से भरा होता है और माँ को भी आराम और सहयोग मिलता है।
0: तो साथियों, ये बात बहुत जरूरी है कि हम नवजात की देखभाल को सिर्फ माँ तक सीमित ना रखे। अगर पिता भी इसमें शामिल होते हैं तो बच्चों को दुगना प्यार और देखभाल मिलता है। लेकिन सेहतिया भैया, हर चीज के साथ कुछ सावधानियाँ भी जरूरी होती हैं। क्या कंगारू मदर केयर करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: बिल्कुल, कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी कंगारू केयर दी जाए तो उस समय मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखें, ताकि पूरी तरह बच्चे पर आप फोकस रहें। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कोई तेज खुशबू या परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। साथ ही जिस जगह बच्चे को रखा जा रहा है, यानी छाती का हिस्सा, वह भी साफ और स्वच्छ होना चाहिए अर्जेरीना।
0: ओहो, और इसे कितने देर तक करना चाहिए? क्या इसका कोई समय होता है?
1: कम से कम अर्जेरीना 1 घंटा तो इसे लगातार ही करना चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा समय दिया जा सके उतना ही बेहतर होता है। कई मामलों में परिवार दिन में कई घंटे तक भी इसे जारी रखते हैं, जिससे बच्चे को लगातार फायदा मिलता है।
0: सेहतिया भैया, आज की बातचीत ने सच में मेरी सोच बदल दी। शुरुआत में थोड़ा झिझक थी और समझ नहीं पा रही थी कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, यही तो हमारा मकसद है, जानकारियों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना, ताकि हर परिवार अपने बच्चे की बेहतर देखभाल कर सके। और अगर कोई भी बच्चा सिर्फ जानकारी के अभाव में अपनी जिंदगी ना खोए।
0: साथियों, अगर आपके घर में कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या उसका वजन कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंगारू मदर केयर अपनाइए और अपने नजदीकी डॉक्टर या आशा कार्यकर्ता से सही जानकारी जरूर ले। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी महंगी मशीन में नहीं, बल्कि माँ के प्यार और उसके स्पर्श में होता है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी ताकत शांति, धैर्य और अपनापन ही होता है। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं आज की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य और सेवाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त होगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही लाभ कई। श्रोताओं, मिलेंगे फिर आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

तेरा इंतजार बड़ी शिद्दत से कर रही है मेरी मोहब्बत की सरगर्मियां। तेरे मेरे फासलों के बीच छुपी हुई है बहुत सी नजदीकियां।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद,
4: कॉल 8826213131।
5: टायर लो सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका, जल्दी कीजिए।
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद, कॉल 9412211111।
8: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद शहर का। और दोस्तों, आज सोच बदलो का टॉपिक बहुत ही कमाल का है और इस सोच बदलो के टॉपिक में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी हमारे साथी हैं जो हमारा साथ देंगे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का टॉपिक है शायद हर घर की सच्चाई जो बन चुका है, वो एक ऐसा टॉपिक जिसपे आज के समय में बात करना बहुत जरूरी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट घर में सब लोग एक साथ बैठे होते हैं लेकिन फिर भी हम किसी की बात नहीं सुनते, किसी से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में होता है मोबाइल। यस, आज पूरा का पूरा मुद्दा होने वाला है मोबाइल फोन और ये बहुत जरूरी डिस्कशन बन चुका है। तो मैंने सोचा सोच बदलो प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए मैं अकेला क्यों। तो आज हमारे साथ हैं आरजे रीना, आरजे कुमकुम और एक हमारी खास मेहमान शैली जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हाल चाल है आप लोगों के?
1: थैंक यू आनंद। सच कहूँ तो आजकल कई घरों में लोग एक दूसरे के पास बैठते जरूर है लेकिन कनेक्ट मोबाइल से रहते हैं, परिवार से नहीं।
2: बिल्कुल सही कहा। पहले लोग खाना खाते समय एक दूसरे से बात करते थे लेकिन आजकल तो सब मोबाइल में ही देखते हुए बैठे रहते
3: हैं। रीना जी और कुमकुम जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि बच्चों से लेकर बड़े तक सब धीरे धीरे मोबाइल के इतने आदि हो गए कि घर की हंसी और बातचीत कम हो जा रही है।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच गाइज। बिल्कुल, तो दोस्तों आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। दिल थाम के बैठिए और सुनते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं वेलकम बैक एक बार फिर से। दोस्तों जरा सोचिए, एक परिवार हॉल में बैठा है, पापा मोबाइल में रील्स देख रहे हैं और मम्मी व्हाट्सएप चला रही है, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। क्या यही परिवार है?
1: पहले लोग दिन भर बातें शेयर करते थे, आज क्या हुआ, कैसा दिन रहा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अब रिप्लाई सिर्फ इतना होता है, ठीक है, क्योंकि ध्यान मोबाइल में होता है।
0: बिल्कुल सही कहा
2: रीना। बिल्कुल सही रीना जी। और यही धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां बढ़ा देता है और घर के लोग साथ रहकर भी अकेले महसूस करने लगते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने कुमकुम जी। मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल रिश्तों को कमजोर कर देता है, बस ये है।
0: सही कहा शैली जी आपने, टेक्नोलॉजी जरूरी है लेकिन फैमिली टाइम उससे भी ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं सच बताऊं श्रोताओं, ऐसा मेरे साथ या शैली जी के या रीना कुमकुम के साथ नहीं, हर घर की कहानी हो गया है शैली जी। और मुझे लगता है कि सच बताऊं तो मोबाइल के हम इतने आदी हो गए हैं कि आजकल हम वॉशरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। शैली जी आप इस पे क्या कहना चाहेंगी?
3: और कई बार पेरेंट्स खुद मोबाइल में इतने डूबे और बिजी होते हैं कि बच्चों को कैसे वो सिखाएंगे कि उन्हें क्या करना है, जब वो खुद ही इतना बिजी है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और रीना तुम्हें क्या लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर हम सच में अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ छोटी छोटी आदतें बदलनी होगी, जैसे खाना खाते समय मोबाइल दूर रखना, फैमिली टाइम फिक्स करना, बच्चों से खुलकर बातें करना, सुबह और रात कुछ समय बिना फोन के बिताना।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी एक्सपेंसिव मोबाइल फोन की नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के समय और प्यार की होती है।
3: बिल्कुल सही कहा। और जब परिवार में बातचीत बढ़ती है तभी प्यार बढ़ता है, समझ बढ़ती है और सच में सोच बदलती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है मोबाइल की दुनिया में रिश्ते में जैसे मानो कहीं खो से जा रहे हैं, पास बैठकर भी लोग दूर हो गए हैं। मतलब एक टाइम था जब लोग एक दूसरे से बात करना पसंद करते थे, एक समय था जब लोगों को एक दूसरे की चिट्ठियों का इंतजार होता था, वहीं आज एक सेकंड के अंदर व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज करते हैं और थोड़ी देर के बाद वो ऐसे लगता है जैसे हमारे पास सब कुछ आ गया है। लेकिन उसका जो मजा था ना वो एक अलग ही था। अगर मैं शैली जी सबसे हटके बात करूं आप लोगों से गाइज, तो अभी जो ये व्हाट्सएप का ट्रेंड चल गया और उससे पहले जो चिट्ठियों का ट्रेंड था उसमें क्या था शैली जी, कितना मजा आता था उसमें?
3: उसमें बहुत मजा आता था, उसमें हम वेट करते थे।
0: करेक्ट। और हम भेजने के लिए भी हमें बहुत प्रोसेसिंग फॉलो करनी पड़ती थी।
3: अब तो क्या है कि मतलब एक बेचैनी रहती थी, वो हमने आज मम्मी को लेटर भेजा है या पापा हमारे बाहर है उन्हें लेटर भेजा है तो रिप्लाई क्या आएगा, कब रिप्लाई आएगा, और जो वो रिप्लाई पर तो उन्हें सजो के रखते थे। आज भी लोग पोस्ट कार्ड को सजो के रखे हुए हैं, लेटर बॉक्स जो आज भी हम देखते तो हमें खुशी से महसूस होती है।
0: तो मुझे लगता है कि देखिए सोच बदलने की जरूरत तो यहाँ पर है कि लेटर का ट्रेंड भले ही खत्म हो गया है, व्हाट्सएप का ट्रेंड आ गया है। आई नो व्हाट्सएप अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी हमारे और आपके फायदे के लिए बनी है, अच्छी बात है, हम लोग कनेक्टेड हैं। बट कहीं ना कहीं सोच ये बदलना है कि हम जब परिवार के साथ होते हैं, स्पेसिफिक टाइम बिता रहे होते हैं, परिवार को जो टाइम दे रहे होते हैं उसमें एक दूसरे से बात करना कितना जरूरी है। शैली जी आपको क्या लगता है?
3: परिवार में एक दूसरे से बात करना, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन परेशान है।
0: करेक्ट।
3: किसके मन में क्या बात, आजकल लोग आप सोचो कि मतलब काउंसलिंग करा रहे हैं लोग। इतना स्ट्रेस बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि आपके पास घर में भी एक व्यक्ति नहीं है जिससे आप अपनी बात कह पाए। पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है,
0: क्योंकि सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी
3: है। तो बिजी होने के बाद भी हमारे पेरेंट्स भी बिजी होते थे, मम्मी घर के कामों में, पापा बाहर, लेकिन फिर भी हम लोग शाम का खाना बैठ के खा रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो उसे पूछा भी क्या प्रॉब्लम है, बेटा आज क्या हुआ ऐसा जो आप खाना नहीं खा रहे हो, या आज आप उदास क्यों हैं?
0: सही कहा आपने।
4: वो कहते हैं ना दोस्तों कि असली कनेक्शन वाईफाई से नहीं दिल से होता है। जब लास्ट में शाम के टाइम हम पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाते थे तो चार बातें हुआ करती थी, लोगों को समझा जाता था, एक दूसरे को समझा जाता था, अपने ड्रीम्स के बारे में बात की जाती थी। अब लोग अपने मोबाइल फोन में ही इतना घुस गए हैं कि सारी चीजें उसी में देखते हैं।
3: और मुझे लगता है कि ये जो हम लोग में होता था ना कि इंतजार, पहले इंतजार करते थे हम रिप्लाई का, आज वो इंतजार खत्म हो गया है तो पेशेंस लेवल भी कम हो गया है
1: जी। और आज बात ना ईगो पे आ जाती है कि अगर आपको मैसेज कर रहा है तो आप क्या मतलब करते हैं इंसान कि यार अभी नहीं रिप्लाई देंगे, हम थोड़ी देर बाद रिप्लाई देंगे इसको।
3: बिल्कुल, पहले कम बातें होती थी, रिश्ते ज्यादा लंबे टिकते थे।
1: बिल्कुल,
3: अब बातें ज्यादा होती हैं,
1: रिश्ते कम टिकते हैं।
0: क्या बात है। चलिए दोस्तों ये बातें चलती रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौट कर आएंगे।
5: हेलो 9821026212 BPL अरे 9820026235 मैच टच चेक।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एफएम मुरादाबाद पे प्रोग्राम है सोच बदलो, और सोच बदलो का हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोबाइल फोन जो है रिश्तों को कहीं ना कहीं कमजोर करता जा रहा है, खत्म करता जा रहा है। मम्मी घर में होती है, पापा घर में होते हैं, हम सब घर में होते हैं, लेकिन उसके बाद भी नाश्ते के लिए एक टाइम था जब मम्मियां 100 गालियां देकर उठाती थी शैली जी, और आज का टाइम है कि मम्मी सिर्फ एक छोटा सा मैसेज कर देती है, नाश्ता रेडी है टेबल पे, ऊपर से नीचे आ जाओ, है ना। तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं हमें हमारे घर के पेरेंट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है।
1: हाँ बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नाश्ता रेडी है, पहले सब लोग जब टेबल पे आ जाते थे तभी नाश्ता लगता था। Correct. अब सबके कमरों में ही पहुंचा देगा
0: और
1: रूम पे
0: पहले
1: बेटा हम तुम्हारा रूम में मतलब
0: हाँ, मैं भी रेस्ट करो,
1: आप रेस्ट करो, मैं वहीं पहुंचा रही हूँ, क्यों वहीं भाई, सब साथ में बैठ के नाश्ता।
2: और पहले टाइम का भी फिक्स होता था, अब भूख नहीं है, अभी नहीं खा रही, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी, अब तो ये हो गया है।
1: अब नाश्ता हो रहा है 11 बजे 2 बजे, आप खाना कैसे खा लोगे,
2: इनफैक्ट हम उठ ही लेट रहे हैं,
0: मतलब दिनचर्या भी कहने के मोबाइल की वजह से, क्योंकि लोग
1: तो
0: लेट नाइट
1: पहले की लेडीज घर में खाना बनाने के बाद कढ़ाई सिलाई बुनाई सारे काम कर लेती
0: हैं।
1: अब लेडीज को खाना बनाने के बाद टाइम ही नहीं है,
2: टाइम ही नहीं है बिल्कुल,
1: क्योंकि वो सुबह का नाश्ता लेट, फिर दोपहर का खाना लेट, और चीजें लेट। पहले लोग ऑफिस चले गए, हम लोग की मम्मियों को हमने स्वेटर बुनते देखा है, मैंने तो आज तक एक स्वेटर नहीं बुन पाया क्योंकि टाइम ही नहीं है।
2: टाइम तो तब होना कि हम समय पर सोए समय पर उठे, अब उठते ही इतने लेट हैं। पहले टाइम के पंचुअल हुआ करते थे, अब हम टाइम को समझते नहीं है,
0: टाइम को इसलिए नहीं समझते,
1: पंचुअल भी अगर ना बोलो तो हम टाइम की वैल्यू
0: समझते थे। एग्जैक्टली,
3: टाइम की वैल्यू उतनी नहीं की जाती जैसे पहले की जाती थी,
1: और जो टाइम की वैल्यू आज भी करते ना वो सक्सेस है।
0: ये तो बात बिल्कुल सही कही है, तो मतलब सोच बदलने की जरूरत यहाँ पर नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हो किससे नहीं, जरूरत है सही चीज को मेंटेन करने की, है ना। अगर आप सही तरीके से चीजों को मैनेज करोगे तो मुझे लगता है बेहतर चीजें हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, हर चीज फोन में ही मत ढूंढो,
1: बिल्कुल
0: अगर आप घर पे हो, परिवार के साथ हो, रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो तो उनसे बात करो।
1: आप सोचो आज कल चैट जीपीटी जो आया है वो इतना पॉपुलर क्यों है,
0: लोग उससे बात कर रहे हैं,
1: क्योंकि लोगों के पास व्यूज ही नहीं रह गए हैं। आप लोगों को पहले, अगर कोई अगर नॉन प्रोफेशन बंदा है जिन्होंने कभी माइक हाथ में नहीं थामाया, अगर आप किसी को दे दोगे ना वो बोल नहीं पाएगा, उसके पास शब्द ही नहीं होंगे, डिक्शनरी कम हो गई है क्योंकि आपने इतनी बातचीत कम हो, आप एवरी थिंग के लिए आप डिपेंड हो गए हो सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे, इस पे और उस पे, तो फिर क्या ही होगा, आपके अपने पर्सनल व्यूज ही नहीं रह गए, आप अपने माइंड का यूज ही नहीं कर रहे हो, और जहाँ यूज कर रहे हो आप कहाँ कर रहे हो ये तो पता ही है।
0: नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, तो मुझे लगता है कि देखिए दिक्कतें टेक्नोलॉजी से नहीं है, दिक्कतें मोबाइल चलाने से नहीं है, दिक्कतें सिर्फ बात करने से है, क्योंकि हमें लगता है कि हर चीज हमारे लिए कन्वीनियंट होनी चाहिए, इजीली होनी चाहिए, हम इस इजी के चक्कर में मोबाइलों में इतना घुस गए हैं। आजकल आप देखो ना, घर बैठे बैठे हम चाहते हैं हर चीज आ जाए, आजकल दूध लेने का एक बहाना होता था कि हम सुबह दूध लेने जाएंगे, आजकल भैया दूध लेने भी नहीं जाते, क्यों, सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है।
1: पहले चलो ठीक है कुछ चीजों के लिए तो निकलना ही पड़ता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं निकलना है, कि हमने अपने आप को इतना डिपेंड कर लिया है। हम लोग पैदल स्कूल जाते थे,
0: सोचो
1: आजकल बच्चे को हम बैग लेकर के बस तक भी पहुंचाने जाएंगे,
2: छोड़ने जाते हैं
1: और उनका बैग उठा के बस से भी घर पे लाएंगे।
0: सही कहा आपने, तो दोस्तों मतलब कुल मिला के यह है कि बात आलस की तो नहीं कर रहे हैं, आज हम बात हम कर रहे हैं कि हमारे जो परिवार हमारे कनेक्शन कम हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ा कारण है, उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन इसलिए क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मोबाइल पे ही दिखाते हैं, हम परिवार के साथ होते हुए भी ऐसा महसूस करते हैं कि हम फैमिली के साथ नहीं है। अगर सोचो हम चार लोग यहाँ पे अगर अपने अपने मोबाइल में लग जाए तो कौन एक दूसरे से बात करेगा,
2: कोई भी जी
0: सोचने की बात है, और ना हम एक दूसरे को जान पाएंगे ना समझ पाएंगे।
1: आजकल जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हो गए उनका मजा किरकिरा क्यों हो गया है, क्योंकि वहाँ जाके लोग वहाँ की खूबसूरती नहीं देखते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस पे जाइए वहाँ की कहानी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा व्यू हम देख लें, यहाँ पे हमारा फोटो सबसे
2: फोटो,
1: बेस्ट
2: वीडियो
0: कैप्चर करो उसको ही।
1: खाने के टेबल पे खाना रखा है
0: Correct.
1: लेकिन आपको उसको टेस्ट नहीं पता है कि आपने हाँ ठीक था, बाद में अगर एक डिश चार डिश में से एक डिश आपने ऐसी टेस्ट के लिए वो खाना अच्छा नहीं था, बाकी की चार आपने स्वाद ले ही नहीं पाए,
2: क्यों हमारा ध्यान तो फोन में होता है, पहले हम फोटो खींचते हैं स्नैप भेजते हैं और फिर वही टाइम हो जाता है चलो चलो ठीक है।
1: टाइम में एक ऐसे आता था हिंदी में, ज्ञान के अभिशाप और चमत्कार
3: जी,
1: तो मतलब वो हर मतलब जब भी देखो वो एक सबसे रखा ही होता था क्वेश्चन पेपर में वो, तो उस टाइम पे मुझे वो इतना नहीं समझ आता था, मगर आज मुझे समझ में आता है। ऐसा नहीं है, मोबाइल अच्छी चीज है, हम लोगों को बहुत अच्छी चीजें मिली हुई है कि हम लोगों को बहुत कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन हम अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं ये मैटर करता है,
2: बिल्कुल
1: किस चीज पे दे रहे हैं, पॉजिटिव चीज पे दे रहे हैं या नेगेटिव चीज पे दे रहे हैं। पॉजिटिव भी है इसमें, नेगेटिव भी है।
0: सही कहा आपने। तो दोस्तों आप सुनते रहिए ऐसे ही सोच बदलो प्रोग्राम, और अभी हम लौट कर आते हैं एक छोटे से गाने के बाद।

0: इस गाने के बाद वेलकम बैक है शहर जाते जाते। रीना कुमकुम, आप लोग क्या कहना चाहोगे हमारे युवा पीढ़ी से, जो लोग घर में बैठ के बातें कम मोबाइल ज्यादा चलाते हैं उन लोगों?
1: मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए हर घर में जितने भी मेंबर्स है ना, हर घर में सभी के पास फोन है। तो पहली बात पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपके पास फोन है तो जो बच्चे हैं जो 12th तक अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको फोन ना दे। अगर आप उनको फोन नहीं देंगे तो वो देखिए और भी आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। हमें तो ये पता है ना कि हमने बच्चों को फोन दे दिया, वो पढ़ ही रहा होगा, लेकिन आप देखने नहीं जा रहे कि उस कमरे में वो पढ़ रहा है या वीडियो देख रहा है, क्या कर रहा है। तो अगर आप फोन दे भी रहे तो उस चीज का ध्यान रखिए कि बच्चा कब क्या किस टाइम क्या कर रहा है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, फोन नहीं देना चाहिए। लेकिन कई टाइम ना हमें टीचर्स ऐसे प्रोजेक्ट दे देते हैं कि बच्चों को काम होता है फोन से, इसलिए पेरेंट्स उनकी सुविधा के लिए देते हैं, पर वो ना फोन
1: यूटिलाइज हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए,
2: सुविधा के लिए दिए जाते हैं क्योंकि उन सुविधाओं से हम आगे बढ़ सके, अपने अपने करियर के लिए सोच सके, अपने फ्यूचर के बारे में आगे देख सकें कि हमारे पढ़ाई में और चीजों में क्या क्या कर सकते हैं, पर वो डिपेंड इतने हो जाते हैं उस फोन पे, उसके आदि बन जाते हैं एक तरह से।
3: मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि जब भी वो बच्चों के सामने मोबाइल देखें या खुद भी देखें तो मोटिवेशनल चीजें ज्यादा देखें, जिससे उन्हें कुछ लगे कि हाँ मम्मा या पापा हमें ये चीजें देख दिए तो उनके दिमाग पे भी वही छाप पड़ जाती है।
1: बिल्कुल,
3: तो वो भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे लगे कि हाँ ये चीज ठीक है।
4: और बच्चों को भी टाइम दीजिए, आप खुद नहीं फोन में रहेंगे, बच्चे अब आजकल मैम ये होता है कि बच्चे आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आप काम में बिजी होते हैं या फिर फोन चला रहे हो या फिर मासी का फोन आ गया तो भैया तो समझो बेटा।
3: तो सबसे ज्यादा यंगस्टर को काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है इस समय,
4: सबसे
3: ज्यादा स्ट्रेस लोग काउंसलिंग ले रहे हैं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, कि मुझे उनके पास बात करने के लिए लोग नहीं है साइड चल गई है, आइए बात करिए।
4: बिल्कुल, अब इंसान वहाँ टाइम दे रहा है लेकिन अपने फैमिली को कम।
2: मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग देखते हैं ना ड्रामास देखते हैं या कोई भी ड्रामा आप देखते हो कंट्री के बाहर का, उसमें ना एक टाइम दिया जाता है कि नो मोबाइल टाइम, फैमिली का टाइम जो रहता है उस मोबाइल को ना एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। तो ऐसा हमारे यहाँ भी होना चाहिए, आप सबको अपनी फैमिली में एक टाइम ऐसा बनाना चाहिए, यहाँ सब फैमिली एक साथ रहेगी, मोबाइल को एक बॉक्स में रख दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए।
1: चलिए श्रोताओं, अब हम लेते हैं जाने की विदा।
0: बिल्कुल, इजाजत लेंगे लेकिन सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सोच जब बदलेगी जब हम उसकी शुरुआत करेंगे, उसकी शुरुआत मुझे और आपको ही करनी है श्रोताओं। तो मोबाइल एक अच्छी चीज है हमारी फैसिलिटी के लिए, इस गवर्नमेंट ने बनाई है, टेक्नोलॉजी का अच्छा फायदा आपको जरूर मिलेगा और मिल भी रहा होगा आई एम श्योर। बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारी चीजें कर भी रहे हैं, बट इसका यह मतलब नहीं है कि अपने रिश्तों को भूल जाए, अपने परिवार को भूल जाए, परिवार को एक क्वालिटी टाइम दीजिए। और फैमिली से भी कहना चाहता हूँ, स्पेशली अगर आप मुझे सुन रही हैं, वर्किंग लेडी हैं, आप वुमेन वर्किंग वुमेन हैं, तो डेफिनेटली अच्छी बात है, आप जो भी कर रही करती रहिए, ऑल द वे बेस्ट। बट उसके साथ ही साथ अगर आप घर जा रही हैं तो उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम अपने बच्चे के साथ जरूर बिताएं, उससे पूछें आज उसने स्कूल में क्या किया, उसके स्कूल में कैसा रहा उसका टाइम, उसने किसके साथ टाइम बिताया। अगर आप फादर हैं तो आप भी अपने बच्चों के साथ स्पेशल टाइम डेफिनेटली सेलिब्रेट करें और एक वीकेंड में एक ऐसा दिन जरूर निकालें जिसमें नो मोबाइल, एटलीस्ट 1 घंटा ही सही, बट वो आप जरूर करें, कहीं बाहर जाएं, एक्टिविटीज करें, फन करें, बट मोबाइल को थोड़ा सा तवज्जो कम दें, मतलब जब आपको लगता है स्पेशली परिवार के लिए टाइम है। तो ये चीज आप कीजिए, सोच अपने आप बदलेगी, बाकी कोशिशें आपको करनी पड़ेंगी, हम भी आपके लिए कोशिश करते रहते हैं प्रोग्राम के जरिए कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाएं और आपको जगाएं। बाकी के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनते रहिए, है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। फिर से बोलेंगे रेडियो
2: बजाते रहो,
3: गुनगुनाते रहो।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बाय।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ,
8: चावला टायर
6: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका, जल्दी कीजिए।
8: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
9: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
10: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, अपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।

0: योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
3: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
4: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद है और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
5: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो, कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
6: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुँचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाए के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
8: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
6: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
10: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है, 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
11: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
13: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
12: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
14: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद। अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
15: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
14: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सुजाता जी।
0: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
1: ये तो सुजाता जी अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
0: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
1: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटर बॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशु जनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये देश में तेजी से हो रहा है।
0: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
1: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
0: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
1: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए, उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं। तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं तो उसके बाद हाथ धोएं बहुत अच्छे तरीके से, अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
0: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
1: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
0: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
1: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जांच करवाना बहुत ही जरूरी है और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कन्फर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि

0: के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
1: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
0: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है। और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
1: अच्छा, दस्त और डायरिया उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
0: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है। और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें। और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरिनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
1: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
0: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
1: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
0: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है लेकिन इसके साथ कैसे प्रसार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
1: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
0: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्त्री होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें। कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते हैं और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
1: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
0: सही जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना ना केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों के विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है। तो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM, ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
1: सर, आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
0: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये स्वास्थ्य की कुंजी है। और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए, अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं, तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है, एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता, उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक है।
1: बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं, आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास हिंदू सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूँ सुजाता स्मार्ट NGO से, और मैं हूँ इस समय परिवार कल्याण विभाग में। मेरे साथ है डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर RCHUP। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट NGO का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको एक हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
1: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है?
2: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
1: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं?
2: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, वहाँ जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी ANM बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय BCG का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए, डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ OPV की वैक्सीन भी पिलाई जाती है। और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे, 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने JEE का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं, और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल IPV लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग DPT की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजस रूबेला का बूस्टर डोज और JEE की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो DPT वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग TD का वैक्सीन लगाते हैं।
1: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को?
2: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती हैं। टीकों की बात करें तो TD का टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है, डिप्थीरिया से बचाव होता है और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जब बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
1: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
2: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा खून आता है, और उस खून जितना भी बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो अभी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
1: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे? क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
2: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं, तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है, जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
1: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
2: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं, और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहाँ पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5,000 से 6,000 की आबादी पे एनम होती हैं, और हर एक 1,000 की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर, आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1,000 की आबादी पर जो होती हैं, जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं, और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, और इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉइज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है, जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
2: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, और अब मैं देख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं, और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहाँ भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांतियां हैं तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1,000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए, और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
1: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
2: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है, ज्यादातर ये साइलेंट रहता है और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं, और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारत वर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
1: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
2: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया, हमारे पास मैपिंग है। हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है, और लगभग हर 3 से 6 महीने पे हम अपने इस माइक्रो प्लान को रिवाइज करते हैं। इन जगहों पे जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं इनका हमने माइक्रो प्लान बना रखा है, और इनमें नियत दिवसों में हमारी ANM बहन जी जाती हैं और जाके वो टीका लगाती हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं उनके लिए हम लोगों ने मोबाइल टीम की व्यवस्था कर रखी है, और ये मोबाइल टीमें जाती हैं पर्टिकुलर डेज पे, और ऑलरेडी इसकी सूचना हम पहले से उन जगहों पे रहने वाले निवासियों को दे चुके होते हैं, और इसलिए इस टीकों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सम्मिलित किए हुए हैं। अब कोई चुनौती नहीं रह गया ये हमारे लिए।
1: क्या सिर्फ बच्चों का टीकाकरण काफी है या परिवार के बाकी सदस्यों जैसे किशोरियों, गर्भवती महिलाओं का भी समय पर टीकाकरण जरूरी है?
2: देखिए, इसके बारे में अभी हम लोगों ने शुरू में मैंने चर्चा करके बताया, आपने देखा कि जो नेशनल हमारा शेड्यूल है उसके अंदर जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें आपने फिर से एक बार दोहरा दूं मैं अब दर्शकों के लिए, जन्म के समय टीका लगाते हैं, फिर 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह पे टीका लगता है, फिर 9 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों को टीका लगता है, ये एक ड्यूरेशन होता है, इस बीच में कभी भी आप टीका लगा सकते हैं। 16 से 24 माह के बीच में हम टीका लगाते हैं, 5 से 6 वर्ष के बीच में लगाते हैं, 10 वर्ष के और 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीका लगाते हैं, और गर्भवती माताओं को टीका लगाते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
1: आखिर में उन माता पिता और परिवारों के लिए आपका सबसे जरूरी संदेश क्या होगा जो किसी की कारण से अभी भी टीकाकरण को लेकर असमंजस में है?
2: देखिए, अब अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से स्मार्ट NGO का धन्यवाद देना चाहूंगा, और मेरा आखिरी संदेश यह है कि बिना किसी संशय के आप टीकों पे विश्वास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी संशय है तो आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ANM बहन जी, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, या उपलब्ध आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे मेडिकल अफसर से आप बात करिए और अपने संशय को दूर करिए। बच्चों के लिए टीका बहुत जरूरी है क्योंकि ये टीका बच्चों में होने वाली मृत्यु को आधी से ज्यादा कम कर देता है। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
3: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: तो 40 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचता मेरा दिल है। नई राह है, नई मंजिल है।

0: हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लगन तो हमें भी लगी हुई है और आपसे दोस्तों तभी तो हम चले आते हैं ना एवरी डे 3 से 5 आप सभी का फेवरेट शो लेकर हेलो फरमाइश, जहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं एंड कुछ आपकी और कुछ हमारी बातें और आपके फेवरेट गाने जो हम स्किप नहीं करते हैं। दोस्तों ये चांस आपके पास है, अभी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर सो के उठे हैं या फिर आराम कर रहे हैं, फोन आपके पास में है उसको उठाइए प्लीज। मैं कह रही हूँ ना उठाओ तो सही। हाँ, अभी आपको क्या करना है, कॉल लगाना है। हमारा मोबाइल नंबर है 9833789689698976. इस पर कॉल लगाना है और सीधा खुशी के साथ कनेक्ट हो जाना है। साथियों ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6 और आज बेस्ट फ्रेंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है और उसकी एक अच्छी हैबिट क्या है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है आपके बेस्ट फ्रेंड की, तो आप हमें बताइएगा कॉल करके। और मेरे साथ में अभी प्राची भी यहाँ पर हैं। हाय प्राची, हाउ आर यू? आई एम गुड, मैं बहुत अच्छी हूँ। सेम हियर, दोनों बहुत अच्छे हैं। और बताइएगा अभी बाहर से आप आए, कैसा वेदर है बाहर का?
1: वेदर तो अभी
0: वेरी हॉट, बहुत गर्मी है,
1: बहुत ज़्यादा गर्मी है।
0: तो इस गर्मी में आप आए हैं, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखा घर से बाहर निकलते वक्त? क्या क्या चीज़ें आपने प्रोटेक्ट की हैं जो आपकी बॉडी के लिए यू नो हेल्दी है, अच्छी है?
1: जैसे अभी जो वेदर हो रहा है वहाँ, उसमें कहीं भी आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि कभी कोई हमारा कोई इम्पोर्टेंट वर्क होता है जो हमें दोपहर में ही करना पड़ता है।
0: एग्जैक्टली,
1: तो उसके लिए मैं जब मुझे इतना कोई इम्पोर्टेंट वर्क होता है तो मैं अपने फीस को कवर करती हूँ। और आप अपने गॉगल्स अपने साथ रख सकते हैं,
0: वो भी ज़रूरी है।
1: और आपको क्या करना चाहिए, एक वाटर बॉटल ज़रूर रख लीजिए
0: क्योंकि
1: जो गर्मी का जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो बिना वाटर बॉटल बहुत मुश्किल है। अगर आपको पीपी लो रहता है तो आपको नींबू पानी भी साथ रखना चाहिए। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात कि आप बिना खाए पिए बाहर नहीं निकले, क्योंकि अगर आप बिना खाए पिए बाहर निकलेंगे तो बीपी लो, ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का बीपी लो हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: और ये कंडीशन मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं हमेशा चाहे थोड़ा ही खा हाँ। लूँ पर हमें बाहर जब भी जाएँ तो कुछ खाना खा के जाएँ, कुछ हेल्दी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो प्राची, क्योंकि एक तो धूप इतनी तेज़ है ना, उस समय में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि चलो बाहर खा लेंगे, लेकिन कई बार धूप इतनी तेज़ होती है, बॉडी में वीकनेस आ जाती है, तो उस वजह से चक्कर भी आ सकते हैं। तो ऐसे अगर आप चाहते हैं कि आपको हेल्दी रहना है, फिट एंड फाइन रहना है, तो उसके लिए आपको घर से कुछ खाकर जाना चाहिए एंड पानी की बॉटल हमेशा अपने पास रखें। और कार्यक्रम को अभी शुरुआत करते हैं, फर्स्ट कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी क्या फरमाइश है आज। हेलो फरमाइश। हेलो,
2: हाय दी।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
2: मैं दरक्षा फातिमा बात कर रही हूँ।
0: दरक्षा फातिमा जी, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
2: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम गोथी से बात कर रही हूँ।
0: जी बताइए दरक्षा, कैसे हैं आप?
2: आप कैसी हो मैम?
0: हाँ जी, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं, जब इतनी प्यारी प्यारी सखियाँ हमारे साथ कनेक्ट होती हैं।
2: जी मैम, आपसे बहुत चाहत थी बात करने की, बहुत दिनों बाद बात हो रही है आपसे।
0: आपकी चाहत पूरी हो गई है, बताइए दरक्षा। अच्छा, आज बेस्ट फ्रेंड डे है तो आप मुझे बताइए कि आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है?
2: मेरी बेस्ट फ्रेंड है रुकैया फातिमा।
0: और उनकी एक अच्छी बहुत ही खास बात जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, एक अच्छी बात, एक अच्छी हैबिट उनकी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
2: जी मैम, उनकी बात मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, वो लड़ती है फिर थोड़ी सी देर में राजी हो जाती है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा भी है, यू नो गुड हैबिट है कि नाराज होने के बाद तुरंत मान भी जाना, क्योंकि वो बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं कि उनको मनाते रहो 2-3 दिन तक लेकिन वो मुंह बनाकर बैठे रहते हैं।
2: हाँ मैम, उनकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, मुझसे फोन पे लड़ती है पर फौरन राजी हो जाती है।
0: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपकी ये दोस्ती ऐसे ही हमेशा लॉन्ग टर्म चलती रहे, हम तो यही कामना करते हैं प्रभु से। आप बताइएगा दरक्षा, क्या सुनोगी आज?
2: मैं अपनी बेस्टी के लिए सुनना चाहती हूँ, जमाने की सारी खुशी मिल गई तुम जो आई जिंदगी,
0: हर खुशी मिल गई।
2: हाँ।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा गाना है, और कुछ कहना चाहती हो आप?
2: जी मैम, मैं तो यही कहना चाहती हूँ जिससे भी आप दोस्ती करें हमेशा निभाएं उस दोस्ती को, मैं तो यही कहना चाहती हूँ बस।
0: हाँ बहुत अच्छी बात बोली है आपने। और देखिए रिश्ता ना दोनों तरफ से निभाया जाता है। अगर कोई आपको सच्ची पूरी ईमानदारी से सच्चाई के साथ रिश्ता निभा रहा है तो आपको भी उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। और उसकी मतलब एक होता है ना कि सामने वाला पर्सन हम पे भरोसा कर रहा है लेकिन हम उनको उन पर भरोसा नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं, दोनों तरफ से विश्वास होना चाहिए।
2: हाँ मैम, जैसे भरोसा रखते हैं ना तो उसे निभाने भी चाहिए, दोनों तरफ से भरोसा होना
0: हाँ,
2: चाहिए।
0: और रिश्ते तभी स्ट्रांग होते हैं जब विश्वास होता है।
2: जी
0: तो चलिए दरक्षा, आपको भी पहला सा ट्रैक सुनवाते हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
2: थैंक यू मैम, मैं उनको ये सही कहना चाहती हूँ, अगर वो भी सुन रही है तो कॉल लगा दे। थैंक
0: ओके, बिल्कुल लगा लेंगे, आपकी दिल की बातें उन तक पहुंच चुकी हैं।
2: यू मैम, बाय बाय।
0: बाय, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक। मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए अपने बेस्ट फ्रेंड की खास बात जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है और आपको उनकी ओर अट्रैक्ट करती है। बताइएगा कौन से हैं आपकी खास बेस्ट फ्रेंड। ओहो, आज उनकी याद मैंने दिलाई दी आपको। हाँ चलो जल्दी से बताइएगा, कॉल करके नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और इस दोपहर के समय में अपना ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए एवरीवन। और ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए।

0: सोना जीतो
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। शो चल रहा है हेलो फरमाइश, जहां पर आप अपनी पसंद के गाने सुनते हैं और श्रोताओं हमसे बात करने का मौका भी आपको मिलता है। दो घंटे एवरी डे मंडे टू सैटरडे आप यहां पर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मेरे साथ में प्राची भी है, तो मैं प्राची से जानना चाहूंगी कि प्राची आप मुझे बताइए कैसा लगा आपको ट्रैक।
1: ये ट्रैक तो बहुत सुंदर था, क्योंकि कितना प्यारा ट्रैक था ना, कि जमाने की सारी खुशी मिल गई सच में। वैसे भी आप बेस्ट फ्रेंड दीदी है, तो जब हमें हमारा बेस्ट फ्रेंड मिल जाता है तो जमाने की सारी खुशी मिल जाती है।
0: हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला है।
1: तो बेस्ट फ्रेंड का तो लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हम जो बात हम किसी से नहीं कह सकते वो हम उससे कह सकते
0: उससे कह सकते हैं। आपकी लाइफ में बताइए कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड, आपके सिस्टर हैं, मदर हैं?
1: हाँ वैसे मदर सिस्टर, तो सिस्टर मतलब उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है लाइफ में।
0: हाँ,
1: पर अगर हम बेस्ट फ्रेंड की बात करें तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है नैंसी।
0: ओके।
1: तो वो बहुत अच्छी है, उससे कुछ भी कहने के लिए कुछ भी सोचना नहीं पड़ता।
0: हाँ, एक ऐसा शख्स होना चाहिए जिसको जिससे हम बिना सोचे समझे मतलब बात कर सकते हैं, अपने मन की मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हम अगर कुछ बात कह रहे हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए।
1: मुझे लगता है कि वो दुनिया में एक ऐसी है कि जो मुझे सबसे कम जज करेगी किसी भी बात के लिए। मतलब वो करेगी नहीं इवन, तो इसलिए ऐसे लाइफ इंसान का लाइफ में होना
0: बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली exactly. तो अभी बात करते हैं अपनी कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
2: हेलो फरमाइश, गुड आफ्टरनून दी।

0: अभी रुको। वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हो रही है?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ जी, आप कैसी हो?
0: हाँ जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अपना नाम बताइएगा।
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम गोदी से निखत पाती हूँ, आपसे बात कर रही हूँ जी।
0: जी निखत, बताइए कैसे हाल चाल है आपकी?
1: मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हो?
0: हाँ मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं जिला मुरादाबाद गोदी से बात कर रही हूँ, कैसे बेस्ट फ्रेंड थे जी?
0: सेम टू यू, आप भी तो हमारी प्यारी सी फ्रेंड है, प्यारी सी बेस्ट फ्रेंड है।
1: हाँ जी, आप भी तो।
0: तो कैसे लग रहा है आज का सेशन हमारा, बताओ आप हमें।
1: बहुत अच्छा लग रहा है जी। कुछ
0: और आप क्या कर रही हैं, इतनी चुलबुली सी नटखट सी आवाज वाली लड़की, बताओ।
1: नहीं जी, बैठी थी मैं तो।
0: अच्छा बैठे रहते हैं आप? हाँ थोड़ा काम भी कर लिया करो।
1: जी, काम से ही फ्री होके बैठते हैं ना।
0: अच्छा मुझे लगा कि बस बैठे रहते हो, सारा घर का काम मम्मी करती हैं और फिर वो बाद में डांटती हैं, बेटा अभी बहुत सारे काम बाकी है और तुम फोन चला रही हो बैठकर। हाँ
1: नहीं, काम के लिए कभी डांट नहीं पड़ी, पहले ही
0: ओके
1: कर देती हूँ।
0: गुड गर्ल, आप बहुत प्यारी बच्ची हैं। फिर और बताइएगा फैमिली में सब ठीक है आपके यहाँ पर?
1: सभी ठीक है जी, आप बताइए।
0: हाँ हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, एकदम मस्ती में हैं, मौज कर रहे हैं और हेलो फरमाइश को प्रेजेंट कर रहे हैं।
1: हाँ जी, आप
0: आप
1: बेस्ट
0: बताइएगा
1: फ्रेंड है ना जी, तो आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ।
0: इरशाद, इरशाद कहिए, हम सुनना चाहते हैं।
1: तो मुझे इश्क सिखा देगा नहीं सोचा था, तो मुझे इश्क सिखा देगा नहीं सोचा था, मुझको पागल ही बना देगा नहीं सोचा था, पर पड़ा थी मुझ तेरा नाम ले सोते सोते, इतनी तासीर जगा देगा नहीं सोचा था। जिंदगी कीमती से है ये तुझे इल्म नहीं, जिंदगी कीमती से है ये तुझे इल्म नहीं, तो इसे मुझको लुटा देगा नहीं सोचा था।
0: अरे वाह क्या बात है यार, सीधा दिल पे वार कर दिया है आपने।
1: आपके लिए दी।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू स्वीट सा, बहुत ही प्यारी सी लाइनी थी डियर। और बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हो आप निखत फातिमा?
1: सुनूंगी तू नींदों की रानी और मैं प्यार का सपना।
0: अरे वाह ठीक है, तो इस गाने को सुनकर हम भी सपना देखेंगे फिर।
1: ओके दी, सभी
0: हाँ
1: बेस्ट
0: जी
1: फ्रेंड के लिए मेरी तरफ से। थैंक
0: ठीक है डियर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए,
1: यू, बाय बाय दी।
0: बाय टेक केयर। तो चलिए दोस्तों ये प्यारी सी हमारी लिसनर थी एंड अभी आप भी अगर चाहते हैं कॉल करना तो फटाफट से कॉल करो, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ जी अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसे कॉल लगेगा? आप सोच रहे हो कि मेरा फोन भी लग जाए और मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े, ऐसा नहीं होता है क्योंकि इस शो की ना दीवानगी बहुत ज्यादा है एंड लाइन बहुत लंबी है, कतार बहुत लंबी है, इसलिए कह रही हूँ कि बिना किसी देरी के आप फोन लगाओ। नंबर है 9837896896, रेडियो बजाते रहिए प्राची।
2: गुनगुनाती रही।
0: हाँ जी बिल्कुल, प्राची की स्वीट सी आवाज की तरह गुनगुनाते रहिए। चलिए प्यारा सा गाना सुनते हैं दोस्तों, लौट कर आते हैं अभी।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली आफ्टरनून है. फरमाइशों में आप आर्जरी ने खुशी के साथ करें तो एक काम कर, मैं आ जाती हूँ शो में कनेक्ट होने के लिए. और गुड वाली आफ्टरनून है श्रोताओ, आप आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत चंगे होंगे. और आपने क्या करना है, देखिए आज की जो तारीख है वो बहुत खास है और दिन भी बड़ा प्यारा है, यानी कि सोमवार. सोमवार का दिन अपने में बहुत खास होता है. तो आइए हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहती है. हेलो हेलो हेलो
1: हेलो फरमाइश. हाय दी.
0: हाय, कैसी हो?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ दी, आप बताओ आप कैसी हो?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, एकदम मस्त. क्या नाम है आपका?
1: दी आपने तो सरप्राइज दे दिया यार.
0: हाँ, मैं ऐसे सरप्राइज दे देती हूँ कभी कभी बीच में.
1: कॉल मेरी खुशी दी ने रिसीव की थी और आप बोल रही हो ओनियर.
0: मैंने उसको बोल दिया है कि भैया थोड़ी देर तुम रुक जाओ, मैं ही आ जाती हूँ.
1: ठीक किया दी, वैसे भी आपसे बहुत दिन हो गए बात की नहीं थी मैंने.
0: अच्छा अच्छा, ओके. आज फ्रेंड्स डे है ना, तो मैंने सोचा कि चलो तुम्हें थोड़ा रेस्ट दे देती हूँ मैं.
1: हाँ अच्छा किया दी,
0: है ना.
1: ऐसी थोड़ी हल्की हल्की हेल्प करा देनी चाहिए, है ना.
0: हाँ देखो, एक दूसरे के, जब आप ऑफिस में रहते हो, जब एक दूसरे का हेल्प नहीं करोगे तो आप कहीं जाओगे तो कोई कैसे करेगा.
1: हाँ, और बताएं सभी लोग कैसे हैं आपकी फैमिली में?
0: बहुत बढ़िया, एकदम मस्त है हमारी फैमिली में भी, स्टूडियो में भी सब एकदम चंगे हैं.
1: और भी गर्मी कैसी हो रही है?
0: पूछिए मत, ऐसा लग रहा है भट्टी जला दियो. लेकिन ऑफिस में रहो तो पता नहीं चलता है गर्मी का, ऐसा लगता है जैसे अंदर ठंड है बाहर भी ऐसा ही ठंड होगा.
1: फिर बाहर निकलते होगे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती होगी,
0: तभी तो हमारे कभी खांसी हो जाती है, कभी जुकाम हो जाती है.
1: गर्मियों में ना गाँव में बड़ा सुकून मिलता है,
0: तभी तो गाँव में जाने वाली हूँ मैं अब.
1: हाँ तो फिर हमारे यहाँ तो आ जाइए, हम भी गांव में रहते हैं.
0: बिल्कुल जी, चलो मैं 5 दिन के लिए आपके गांव में ही आ जाती हूँ.
1: हाँ तो दी कब आ रही हो बता दो.
0: 10 तारीख को.
1: 10 तारीख को.
0: 10 तारीख को लेकर सीधा मंडे तक रहूंगी आपके घर.
1: हाँ दी, मंडे तक नहीं, आप तो 2 हफ्ते यहाँ पे बिताना फिर जाना.
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने. और बाग में चलेंगे, वहाँ पे खाट, मतलब खाट बिछा के बैठते हैं ना, घर से लंच बना के

0: स्वाद तो अलग ही होता है.
1: लाजवाब होता है स्वाद
0: बट वो मिल नहीं पा रहा ना, बात तो ये है.
1: ही। मेरी फुफ्फो के यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ है, तो वहाँ पे हम जाते हैं ना तो खा के आते हैं, बहुत मजा आता है।
0: अब की बार स्टूडियो भिजवा देना, पार्सल कर देना.
1: हाँ दी भिजवा दूंगी।
0: हाँ अच्छा चलो ये बताओ कि आप कौन से गाने सुनोगी.
1: जी आज मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, आज बेस्ट फ्रेंड डे है ना, तो मेरी बेस्टी जरफ फातिमा के लिए है, तेरे यार हूँ मैं।
0: ओके, तो उनके लिए बेस्ट फ्रेंड पे ये गाना सुनना चाहती हो आप.
1: हाँ जी, मैं कुछ लाइन बोलना चाहूंगी
0: अरे
1: दर्श
0: नहीं.
1: फातिमा के लिए। खैर इससे पहले बोली तो नहीं है पर कोशिश करूंगी यार।
0: अरे कोशिश करनी चाहिए हर टाइम. बोलो.
1: सारे फासले मिटाकर तू हमसे प्यार रखना, सारे फासले मिटाकर तू हमसे प्यार रखना, हमारा रिश्ता हमेशा बरकरार रखना। अगर कभी इत्तेफाक से हम आपसे जुदा हो जाएं, अगर कभी इत्तेफाक से हम आपसे जुदा हो जाएं, तो
0: हाँ
1: कुछ पलों के लिए अपनी आंखों में मेरा इंतजार रखना दरख्शा।
0: ठीक. बहुत क्या बात है, बहुत ही बढ़िया आपने जो शायरी सुनाई है. और मुझे लगता है कि दोस्ती रिश्ते को बचाने के लिए, और दोस्ती में ना यार ऐसा होना चाहिए जब जब भी आप मिलो तो बातें ऐसी हो कि पता ही नहीं चले हम कि आज ही मिले हैं.
1: जितने भी फासले होते हैं ना दी, और जितनी नाराजगियां होती हैं, बस एक मुलाकात में सारी गायब हो जाती हैं।
0: गाय मत बोलो, ऐसा बोलो छू मंतर हो जाती है.
1: हाँ जी, पता ही नहीं लगता कि हाँ हम इससे नाराज थे कभी, हमारी लड़ाई हुई थी, कुछ पता नहीं चलता, बस ये लगता है वाह मुझे मेरी दोस्त से मिलने का मौका मिला। और
0: चलिए बहुत अच्छी बात है. और आप जैसी
1: दी
0: दोस्ती है ना सबकी बनी रहे,
1: हाँ जी, और हर किसी के पास नहीं होती है दी ऐसी दोस्ती भी।
0: और जिनके पास होती है उनको संभाल कर रखना चाहिए.
1: हाँ कुछ लोग
0: चलिए.
1: कदर नहीं कर पाते ना दोस्ती की।
0: चलिए हम आपको ये गाना सुनवाते हैं. ठीक है
1: ओके दी बाय।
0: बाय.

0: असंतियन के सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
5: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
7: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: के साथ, और बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है। और आज वैसे भी फ्रेंड्स डे है, तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास दोस्त है तो देखिए कुछ तो बातें आपको, जैसे आप कॉल पे हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, तो अपने दोस्त की दो अच्छाई बतानी है और दो बुराई बतानी, देखना चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों की बुराई कर पाते हैं या नहीं कर पाते। क्योंकि इसी में देखिए, दोस्तों की बुराई इन द सेंस कि ये नहीं कि हम उसको बुरा लगने के लिए कर रहे हैं, बल्कि दोस्त वो होता है जो उसके अंदर कमी होती है उसको हम बताते हैं, सुधरने का मौका देते हैं। तो वो हमें कभी भी उस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक असली दोस्त वही कहलाता है जो सुख में साथ देना दे लेकिन दुख में ज़रूर साथ दे। सो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6, और समय की बात करूँ तो 3:47 हो चुके हैं। चलिए श्रोता अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर।
1: आदाब।
0: आदाब जी, कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? और बताइए सर, काफी टाइम बाद जुड़े हैं आप। और बताइए, चलिए काम भी जरूरी है ना सर। और बताइए उधर का वेदर कैसा है? फोर्टी सिक्स है इस टाइम, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। हाँ ये तो है ही। सो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप कामिल जी?
1: मैम फिल्म का नाम है बोल हैं, जिंदगी का गुजारा तेरे बिन नहीं होना।
0: क्या बात है, जिंदगी का गुजारा तेरे भी नहीं होना,
1: नहीं होना।
0: मैडम जी के लिए। अच्छा क्या नाम है आपकी दोस्त का?
1: दोस्त का नाम भी ले लेंगे मैम, पहले तो ऐलान करना चाहता हूँ।
0: हाँ बिल्कुल बोलिए।
1: तेरी आरज़ू में हमने बहारों को देखा, तेरी आरज़ू में हमने बहारों को देखा, तेरी जस्तजू में हमने सितारों को देखा, ना मिला तुमसे बढ़कर इन निगाहों ने हजारों को देखा।
0: क्या बात है। और आज तो वैसे ही फ्रेंड्स डे है, तो दोस्त के लिए तो गाना बनता है।
1: जी जी मैम, हमारे जो दोस्त हैं बहुत ही खास हैं, दोस्त ये सभी कुछ हैं, वो ये समझ।
0: चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सुन रही होंगी आपके वो।
1: बिल्कुल।
0: चलिए जी हम आपको ये गाना सुनवाते हैं।
1: नाम लेना चाहूंगा कुछ दोस्तों।
0: हाँ हाँ बिल्कुल श्योर, मैं तो बोला ही आपको ले लीजिए।
1: सबसे पहले मैं साथ में लाया था आदमी मोहम्मद तालिब परवेज, वसीम अकरम, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, अनीस रहमान, यही सब सुनना चाहेंगे मैम।
0: चलिए जी सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: थैंक यू मैम।
0: ओके जी वेलकम। तो चलिए श्रोताओ ये गाना सुनते हैं, जिंदगी का गुजारा तेरे बिन नहीं होना। और आप भी बताइए आपके जिंदगी का गुजारा किन के बिना नहीं हो सकता है। हमारा नंबर है 9837896896।

0: और समय की बात करूं तो 3:55 हो चुके हैं श्रोताओं, और आप सुन रहे हैं फरमाइश शो और अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, जहां आपकी होती है फरमाइश वाले गाने। और आप नाम लेना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं, और आज वैसे भी फ्रेंड्स डे है तो आप अपने फ्रेंड के लिए जो भी गाना सुनना चाहते हैं बिल्कुल सुन सकते हैं। तो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? गुड आफ्टरनून। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: हाँ जी, हनुमान का राजस्थान से बोल रहा
0: हूँ। राजस्थान से बात कर रहे हैं, ओके सर। तो अच्छा, क्या काम करते हैं आप?
1: मैडम अभी तो फ्री है, गर्मी बहुत है, कुछ काम नहीं है, खेती बाड़ी का वैसे करते हैं काम। तो
0: अच्छा, खेती बाड़ी का काम करते हैं।
1: हाँ जी, वो भी है, साथ में शॉप वॉप भी है, बैठी साइड वाली वो यही है। एक बार काम को गर्मी फंक्शन है,
0: गर्मी तो हर जगह है सर,
1: लेकिन थोड़ा हमारी ज्यादा रहता है ना,
0: ज्यादा रहता है
1: राजस्थान तो वैसे ही मशहूर है इन चीजों गर्मी में।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? विनिंग स्पीच, ओके सर, ओके। आप किसी का नाम लेना चाहेंगे? ओके सर, चलिए हम आपको गाना सुनवाते हैं, ठीक है? ओके, वेलकम। आपका भी दिन आज का शुभ हो। और श्रोताओं, चलिए हम गाना एंजॉय करते हैं, विनिंग स्पीच।
2: दो दो कोड़े महगनानी, चार जी वहगनानी, उत्ते नू मैं 6 इंच चक्कियां, टाइम लगू मिटने नू सानू।

0: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: टायर लो सोना जीतो।
0: क्या?
1: जी हाँ,
2: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
2: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
4: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

0: हेलो, गुड वाली इवनिंग है, क्योंकि समय की बात करूँ तो दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई, यानी कि 4:04 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी फरमाइश शो में। और ये फरमाइश शो है, जो गाना आप सुनना चाहें हम वही गाना आपको प्ले करेंगे। उसके लिए आपको कॉल करना है, सिर्फ और सिर्फ एक घंटा बचता है, यानी कि हमारा नंबर है 9837896896। और देखिए इस टाइम ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप जितना हो सके यानी कि 6 बजे के बाद ही बाहर निकलिएगा, क्योंकि कहने के लिए शाम हो जाती है लेकिन दोपहर वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जैसे जैसे शाम होता है ना घर में अगर आप जाएंगे तो वैसे ही तपन वाली फीलिंग आती है। तो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, क्या नाम है आपका?
1: जिला मुरादाबाद, ग्राम बीबीपुर से मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ मैम।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जिला मुरादाबाद, ग्राम बीबीपुर से मकसूद हुसैन।
0: बीबीपुर से
1: जी? बीबीपुर अगवानपुर से आगे पड़ता थोड़ा सा।
0: चलिए, बहुत अच्छा गांव का नाम है बीबीपुर। सर मैंने पहली बार सुना है।
1: हाँ, बीबीपुर एक पंजाब में है एक गांव, और नहीं तो कहीं पूरे भारत में बीबीपुर गांव नहीं है कोई।
0: सर गांव के नाम तो ऐसे ऐसे बस सुनते जाओ।
1: हाँ, वाले गांव के नाम होते हैं वैसे तो।
0: हाँ, और बताइए क्या करते हैं आप?
1: जैसे ये है वो फरमाइश आती है जैसे रेडियो पर।
0: हाँ, आप क्या काम करते हैं?
1: मैं किसान हूँ, मैं खेती बाड़ी का काम होता हमारे यहाँ पर।
0: क्या बो रखा सर आपने खेतों में अभी?
1: अब तो मैम गन्ना है, धान की जो है तैयारी चल रही है, खेत जोत डाल दिए, और जो पनीर होता है वो पनीर हमने डाल दिया है, तो वो बड़ा हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, थोड़ा जब जमीन का पेड़ भर जाएगा पानी भर के, उसमें अगर बरसात का पुराना पड़ा तो इंजन है, इंजन से पानी भर के और उसकी जो है धान जो है मतलब उसमें लगा देते हैं।
0: अच्छा जी, गन्ना नहीं भिजवाया सर, आप बोल रहे थे गन्ना भिजवाऊंगा।
1: मैम अभी तो कल नहीं है, अभी तो कुछ भी ना है, गन्ना पलना शुरू होएगा तो गन्ना तो आप तो जानते हो मील चलते हैं अक्टूबर अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में मील चलते हैं, उस वक्त गन्ना तैयार होता है।
0: अच्छा अच्छा जी, अच्छा।
1: हाँ, गन्ने की तो फसल समाप्त हो गई है।
0: ठीक है ठीक है, बताइए जी
1: कौन?

0: बाद गन्ना थोड़ा बहुत होगा, बीघा दो बीघा जो रस के पूरी चलाते हैं ना मैम, सारे मतलब इस मौसम में तो वो रोक कर रखते हैं मैम, तो गन्ने पर जो है बड़ा महंगा पड़ता है उनका गन्ना, तो जो रोक कर करते हैं गिलास बनाकर बेचते हैं मैम, उसमें बड़ा फर्द है, आधा गिलास रस पीना देकर सारा फर्क पड़ता है, ऊपर से इतना नमक जल जीरा डालते हैं कि उसे पीने के 5 मिनट के बाद में फिर प्यास लग जाता है।
1: हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। बताइए कौन सा गाना सुनेंगे? तो अप्रैल तो खत्म हो गया सर। नहीं अप्रैल फूल तो मैं मनाती नहीं हूँ, मैं दूसरों का बना देती हूँ। हाँ चलिए अच्छी बात है, फिर शाम को आपके घर आ जाते हैं हम सब, है ना? हाँ आजकल की जैन जी बहुत स्मार्ट हो रही है सर। बताइए गाना बताइए आप। आई बरखा बहार, ठीक है जी, हम आपको ये गाना सुनवाते, कॉल करने के शुक्रिया। ओके जी।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और मेरे साथ में, मैंने जैसे आपसे बताया था एवरीवन कि मेरे साथ मैं अकेली नहीं हूँ, प्राची भी है यहाँ पर। हाय प्राची, वेलकम बैक, कैसे हैं आप? मोस्ट वेलकम। और हमारे साथ एक लिसनर भी कनेक्ट हो गए हैं, तो प्राची उनसे बात करते हैं। कौन हमारे साथ जुड़े हैं, जरा बात कीजिएगा।
1: हेलो हेलो, फरमाइश, कैसे हैं आप? हाँ जी पम्मी जी, बताइए आप क्या सुनना चाहेंगे? हाँ जी, हम बहुत बढ़िया हैं, आप बताइए, आपके घर परिवार में सब कैसे हैं? जी ठीक है, तो बताइए सर, आप क्या सुनना पसंद करेंगे आज? हाँ जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, एक बार और बताइए। ओके सर, ओके, अभी अब हाँ जी बताइए जी। अच्छा, ठीक है सर, आप अभी हम सॉन्ग प्ले करते हैं, आप गाना एंजॉय करिएगा। ठीक है सर, कॉल करने के लिए थैंक यू।
0: प्यारा सा ट्रैक, एंड लौट कर आएंगे हम। तब तक आप दोस्तों हमें कॉल लगाओ, नंबर हमारा है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और ये प्यारा सा गाना हम सुनने वाले हैं फ्रॉम द मूवी करण अर्जुन से। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं बिना किसी देरी के, शानदार गाने को लौट कर आते हैं हम। आप कहीं मचाइए, दिल से मुस्कुराइए और हमें फोन लगाते रहिए।
2: आई गॉट अ नॉलेज।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, यहाँ पर समय हुआ है 4:31। अभी आपने रीना जी को सुना, प्राची को सुना, खुशी भी आपको सुनने को मिल रही है। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको आज तीन तीन आवाजें सुनने को मिल रही हैं? और आज मैंने आपसे कहा था ना कि आज बेस्ट फ्रेंड डे भी है, तो अगर आप कोई लाइंस, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी बातें अपने दोस्तों के बारे में, अपने फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो ये मौका आपके पास है। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। आप इस पर कॉल लगाइए और हमें बताइएगा। अभी फिलहाल बात करते हैं अपने कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: आपको भी नमस्कार अशोक जी, कैसे हैं आप?

0: मैंने कहा किनके लिए सुनना चाहते हैं आप, खुद के लिए या फिर किसी फ्रेंड्स को डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: किसके लिए?
0: आपने दोस्तों के लिए, आपके फ्रेंड्स भी होंगे ना?
1: है ना दोस्त, आप ही हो दोस्त, सभी है सुनने वाले दोस्तों के लिए।
0: अच्छा अच्छा ठीक है सर,
1: सबसे पहले तो आप ही हो।
0: थैंक यू।
1: आपको कार्यक्रम नहीं आता राज वाला, राज करते थे?
0: जी नहीं, नाइट में तो नहीं आते सर।
1: ठीक है सर,
0: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए अशोक जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए व्यूअर्स, सुनते हैं अशोक जी की पसंद पर ये प्यारा सा ट्रैक एंड लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपका कॉल भी जल्द लग जाएगा। नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896896। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गाने गुनगुनाते रहिए।

0: हाय, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स। वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी दोस्ताना से लता मंगेशकर जी की खूबसूरत सी आवाज। एंड अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कहाँ से कनेक्ट हुए हैं वो हम उन्हीं से जानते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हाँ हेलो फरमाइश। सबसे पहले खुशी जी को मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: जी आपको भी नमस्कार। अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मैम जिला रामपुर ग्राम जहांगीर से आपका नेम सोता मोहम्मद इशरत, आप स्वागत कर रहा हूँ। कैसी हो आप?
0: इशरत जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा आप कैसे हैं और आपके परिवार में सब कैसे हैं, बताइएगा हमें।
1: मैम थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, बाकी तो परिवार में सभी अच्छे हैं। आपको याद करते रहते हैं, आपके केंद्र के प्रोग्राम सुनते रहते हैं। मैम आप प्रोग्राम में आती हो, छा जाती हो, आप से हट के जो भी प्रोग्राम पेश करता है क्वालिटी ऐसी मिलती है हमें, कुछ पता नहीं चलता किसकी कॉल आई किसकी नहीं आई। आप प्रोग्राम पेश करती है मैम, छा जाती हो, आपकी हर एक तारीफ करता।
0: शुक्रिया। आपने तो बिना सांस लिए इतनी सारी बातें एक साथ बोल दी है। हाँ, प्रैक्टिस करके रखी थी क्या पहले से?
1: ध्यान तो नहीं ना काफी टाइम।
0: अच्छा जी, बताएगा।
1: मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रात के शो हैं गीत आपके नाम से, ये भी आपने बंद कर दिया है। हेलो मुरादाबाद है मैम, वो भी बंद कर दिया। कोशिश करो चालू हो जाए मैम दोबारा से।
0: श्योर सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप बताएगा आज क्या सुनेंगे आप?
1: मैम आज मूवी का नाम है नकाब। मैम उसमें बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, एक दिन तेरी राहों में पनाहों में आऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा। मैम आशियार फरमाइश में बस यार मुझे ये वाला सॉन्ग मिले कर देना।
0: ठीक है, कोई बात नहीं है। मुस्कुराहट अगर जब आती है ना इर्शा जी, इर्शा जी, तो थैंक यू सो मच। मुस्कुरा लेना चाहिए और उसे स्किप नहीं करना चाहिए हमें। एंड ये गाना हम आपको सुनवाते हैं।
1: मैम खुश नसीब हो, आपके वजह से हम खुश रहते हैं मैम, ज्यादा अच्छा लगता।
0: हाँ जी, हम भी बहुत लकी हैं, हमारा काम ही यही है कि खुशी का काम यही है, खुशियाँ बांटना।
1: मैम इससे बढ़कर क्या बात होगी दुनिया में, इंसान खुश रहे और को खुशी दे, मैम सच्चे क्या माना जाएगा फिर।
0: तो चलो ये गाना सुनवाते हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप अपने दोस्तों को?
1: मैम दोस्तों का नाम बोलना चाहता हूँ, बाकी आज के दौर में कोई किसी को नहीं है, सगे सगे नहीं है मैम, यार दोस्त कहाँ के रहे।
0: जी जी जी, बताइएगा कौन है आपके दोस्त?
1: मैम जैसे कि ये हैं सुहाड़ से विजय राठौर और ये हैं ग्राम बीबीपुर से मकसूद भाई, साथ में आप।
0: ठीक है सर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: जी मैम शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं खूबसूरत सा गीत, लौट कर आते हैं हम। बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है, बिना किसी देरी के सुनते हैं जावेद अली जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। एंड दोस्तों, आप भी मुझे कॉल लगाओ, नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए और इसे प्यारे प्यारे गाने गुनगुनाते रहिए।

0: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
0: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
7: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो चल रहा है हेलो फरमाइश, और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: फरमाइश। यस, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका?
1: हेलो, मेरा नाम अलीजा है।
0: अलीजा, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: मैं
0: जी, बताइए अलीजा, कौन सी क्लास में पढ़ाई करती हो अभी आप? हाँ बिल्कुल, गाना आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये तो बताइए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो?
1: मैं पढ़ती हूँ।
0: अच्छा, और रेडियो सुनते हैं आप? पल पल वाला गाना सुनवाएंगे, मैंने कहा। आप बताओ, आप रेडियो सुनते हो ना घर में? ओके अलीजा, ठीक है, आपको गाना सुनवाते हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। हाँ हाँ बेटा, वही वाला ट्रैक सुनवाएंगे आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं अलीजा की पसंद पर बलबल रीना मोहाल, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक तलविंदर जी की आवाज़ में। और बिना किसी देरी के इस ट्रैक को सुनते हैं, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी प्यारी सी बच्ची। लौट कर आते हैं हम, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाओ, नंबर 9837898986।

0: बिल्कुल दोस्तों, मन जो है ना मेरा भी नहीं मानता है, लाइक जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन जो समय है ना वो हमें इजाजत नहीं देता है। बट हमारे लास्ट कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे बात करते हैं। और ये ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना गजेंद्र वर्मा जी की खूबसूरत सी आवाज़ में। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी बताएगा सर, कैसे हैं आप?
1: आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, अभी फोन लगाने ट्राई किया था और फोन आपसे लग भी गया और बात भी हो रही
0: है। अरे वाह, कनेक्ट हो गया है बहुत जल्द। और बताएगा आप क्या सुनना चाहते हैं सर?
1: पसंद का सवाल है, फिल्म का नाम रहेगा आज का। और
0: जी
1: चलाएंगे ये गाने को बोल रहे
0: हैं। ठीक है सर, ये ट्रैक आपको सुनवाते हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए,
1: धन्यवाद।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी आज के अर्जुन, गोरी हैं कलाइयाँ तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, और इस गीत के साथ मैं लेती हूँ आपसे जाने की अनुमति। एंड यहाँ पर नेक्स्ट प्रेजेंटर हमारी आ चुकी हैं आरजे रीना जी, जिनको आपने अभी बीच बीच में सुना भी था हेलो फरमाइश में। तो आपकी शाम को बनाएंगे और भी ज़्यादा खूबसूरत। फिलहाल मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मिलूंगी मैं आपको टुमारो मॉर्निंग सुबह 10 से 12। तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान और यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग दोस्तों।

0: 2026.
1: और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन इस वक्त गणतंत्र मंडप में हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री अपना स्थान ग्रहण करते हुए.
0: एंड द गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन पैक्ड टू इट्स कैपेसिटी. वी जस्ट वेलकम्ड आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी. The audience is rising and now taking their seats, and as we were mentioning that we extend a very warm and joyous welcome to all our dear listeners tuned into the national broadcaster Akashvani for the very prestigious Defence Ambassador Ceremony 2026 Phase 1. And a little while ago, the Ganatantra Mandap was buzzing with excitement and effervescence to honour our brave soldiers of our motherland who have sacrificed their all, given their supreme sacrifice. And there are those who have defied death and given a befitting reply to the enemies Devi of the land.
2: भारत के माननीय
1: रक्षा अलंकरण समारोह
2: सीपी राधाकृष्णन
1: 26 का आयोजन भारत के गणतंत्र मंडप में किया जा रहा है. उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन का आगमन इस वक्त राष्ट्रपति भवन में हो रहा है. सभी लोगों ने खड़े होकर माननीय उपराष्ट्रपति का स्वागत किया और इस वक्त माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीवी राधाकृष्णन अपना स्थान ग्रहण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री से नमस्कार करते हुए और अपनी जगह बैठते हुए
0: The audiences, as we had mentioned, back to its capacity, consisting of the family members, the near and dear ones of the medal awardees, as well as a very poignant and solemn moment for the next of kin of our brave martyrs. It is with a heavy heart that they come here, but yes, it's a moment of pride and honor for them that their beloved has left them with. The Ganatantra Mandap, which is, as I'd mentioned, full and brimming with its capacity, and of course glittering to perfection from the main entrance, a red carpet leading right up to the beautiful ornate chair, the majestic chair where our Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, shall sit and preside over the proceedings of this grand Defence Investiture Ceremony 2026. And right behind the chair is an imposing 5th century statue of Lord Buddha. Statue is a beauty, poetry in the stone, carved hundreds of years ago but still holding on to its grandeur. And right above that is a burgundy canopy overlooking the entire packed circular hall. And as we were talking about the gallantry awards, there are going to be 51 gallantry awards which shall be presented today, comprising 5 Kirti Chakra, 28 Shaurya Chakra, 12 Veer Chakra, out of which 1 Shaurya Chakra posthumously, 3 Veer Chakra posthumously, and 2 Kirti Chakra posthumously. It is a poignant moment. The Gallantry Awards of India stand as a testimony to the valor, bravado, and indomitable spirit of our brave men and women in uniform, and our soldiers coming from the tri-services, the Army, the Air Force, and the Navy, as well as from the police forces of India, in the khaki, olive blue white khaki, the uniform they donned, the vow they took, commitment to the nation to safeguard the frontiers always and ever. And a grand fanfare now welcoming our Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu.
1: Aur ab mananiye rashtrapati Srimati Draupadi Murmu ke agaman ki suchna unke suraksha guard उनके आगे चलते हुए माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस वक्त आ चुकी है राष्ट्रपति भवन के.
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz. मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज. आज फिर मैं वापस लौट कर आया हूं आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण बात लेकर. आखिर वो बात क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं. ये कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया जा रहा है, ये प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से. आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो लोगों की सालों की बचत और जीवन भर की कमाई कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है. इस अपराध का नाम है निवेश घोटाला. मतलब पैसे लगाओ और 10 मिनट में दोगुने करके वापस पाओ। हाँ जी, आखिर निवेश घोटाला क्या है? श्रोताओ, निवेश घोटाला वह धोखाधड़ी है जिसमें ठग बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देता है, कहते हैं कोई जोखिम नहीं है, गारंटी रिटर्न का वादा करते हैं। वह लोगों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप, नकली वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश के लिए उकसाते हैं। चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे, इस ग्रुप में लिखा है हर दिन 5% मुनाफा बिना किसी जोखिम के। इतना मुनाफा? कहीं धोखा तो नहीं? नहीं यार, देखो स्क्रीनशॉट भी है, सब लोग मुनाफा कमा रहे हैं। पहले 10,000 लगाए हैं, अरे वाह, ऐप में तो मुनाफा दिखाई दे रहा है, अब तो 50,000 रुपए लगा देता हूँ। मैं पैसे निकालना चाहता हूँ। निकासी से पहले वेरिफिकेशन फीस जमा करनी होगी। कुछ देर बाद ऐप गायब हो जाता है और समझ जाता है कि वह निवेश घोटाले का शिकार हो चुका है। निवेश घोटाले इतने खतरनाक क्यों है? श्रोताओ, निवेश घोटाले इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये लालच का फायदा उठाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, कई मामलों में रिटायरमेंट का पैसा चला जाता है, कर्ज लेकर निवेश किया जाता है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। निवेश घोटाले से रिलेटेड चलिए मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग। गारंटेड मुनाफा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शायद यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बिना जोखिम के निवेश, हाँ जी, आप कहीं पर अगर निवेश कर रहे हैं तो पहले वहाँ पर देखिए कि कितना जोखिम है कितना नहीं। आज आखिरी मौका है, जब आपके साथ या फिर आपसे कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अभी निवेश करो, आज आखिरी मौका है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अनजान व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, किसी भी वजह से, किसी भी कारण, किसी भी ऐसे ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऐप या कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या सच में वो ऐप वेरीफाइड है या फिर नहीं है, इन बातों का ध्यान भी रखना होता है। याद रखिए, असली निवेश में जोखिम होता है, ज्यादा मुनाफा मतलब ज्यादा जोखिम। निवेश करने से पहले क्या करें? निवेश से पहले ये बातें जरूर जांचें कि कंपनी या प्लेटफॉर्म सरकारी रजिस्टर्ड में दर्ज है या फिर नहीं है। किसी अधिकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इंटरनेट पर रिव्यू और जानकारी खोजें। अनजान लोगों बातों में ना आए। कभी भी बैंक लॉगिन, ओटीपी, यूपीआई पिन साझा बिल्कुल ना करें। बुजुर्गों और नए निवेशकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, निवेश घोटालों के शिकार अक्सर बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, पहली बार निवेश करने वाले लोग होते हैं। इसलिए परिवार में निवेश से पहले चर्चा करें। जल्दी मुनाफे के लालच से बिल्कुल बचें। शक हो तो नहीं कहना सीखें। ठगी हो जाए तो क्या करें? अगर आपके साथ निवेश घोटाला हो गया है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। याद रखिए, जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ सुरक्षित निवेश के 5 सुनहरे नियम। गारंटेड मुनाफा सबसे बड़ा धोखा, अनजान प्लेटफॉर्म बड़ा खतरा, जल्दबाजी मतलब नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना चाहूंगा कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और एक गलत फैसले से चला भी जाता है। लालच नहीं, जानकारी के साथ निवेश करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। हाँ जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम की जानकारियां भी देता है। तो राज फिलहाल इस शो से अभी के लिए अलविदा लेना चाहता है और जाने से पहले एक बार फिर कहना चाहता है कि लालच बुरी बला है। अगर कहीं पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा 2x, 4x इतने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो इन्वेस्ट करने से पहले कृपया करके जांच कर लें कि क्या आप सही जगह निवेश कर रहे हैं या फिर नहीं। तो अभी के लिए लेता हूँ यहाँ से अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए FM मुरादाबाद। जल्दी मिलूंगा कुछ और ऐसी ही इम्पोर्टेंट बातों के साथ।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली की इवनिंग है आर्जरीना के साथ। इवनिंग मस्ती शो में और समय की बात करूं तो 5:17 हो चुके हैं श्रोताओं, और आर्जरीना आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है ढेर सारी बातें लेकर, बहुत सारे पिटारे में बातें लेकर आई हूं। और आज की तारीख बहुत खास है क्योंकि आज है 8 जून, और 8 जून अपने आप में बहुत ज़्यादा खास होता है, आपको पता चल गया हो, क्योंकि 8 तारीख को बहुत कुछ मनाया भी जाता है। और क्या देश दुनिया में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हर आपको रीना बताने वाली है, तो आप सभी से एक ही बात कहेंगे। इनफैक्ट बॉलीवुड की गलियों की तरफ भी गेड़िया शेरिया लगाएंगे जी, है ना, और ट्रैफिक अपडेट में भी चलेंगे, यानी कि आपको फुल एंजॉय कराने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, एफएम मुरादाबाद अपने शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो कनेक्ट करके रहना है, रेडियो की सुई बिल्कुल भी नहीं घुमानी, क्योंकि बातें ढेर सारी करेंगे, ढेर सारी अपडेट आपको देने वाले हैं। सो अभी के लिए क्या करना है आपको, बस कनेक्ट रहना है और एक बहुत ही प्यारा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के बीच और करते हैं ढेर सारी बातें।

0: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: Don't thrill too much for him.
1: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है। इवनिंग मस्ती शो में आर्जोरीना के साथ कनेक्ट हैं आप, और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:25 हो चुके हैं। श्रोताओं, अगर आप ट्रैफिक में हैं तो ध्यान रखना है, सीट बेल्ट और हेलमेट जरूर लगाना है। आपने ये नहीं देखना कि बस दो कदम की तो दूरी पर ही जाना है, हेलमेट नहीं लगाते, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, लेकिन वही ना छोटी छोटी गलतियां यानी कि भारी पड़ सकती है। सोचिए, जिस दिन आप हेलमेट पहनकर ना गए और आगे आपको खाकी कलर में मामा दिख गए, तो एकदम भात भरने में ना वो टाइम नहीं लगाएंगे। 1000 का भात तो आपका आसानी से भर ही जाएगा, 1000 का वैसे भरता नहीं है, क्या पता आपसे ज़्यादा भी ले लिया जाए अगर आप बाइक स्कूटी पर 3 हैं 4 हैं तो इसीलिए अपनी सेफ्टी के लिए है, ना कि हमें बस ये है कि हाँ भैया हम दूसरों को दिखाने के लिए हेलमेट पहनते हैं। नहीं, नेवर, हम अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि आप सेफ रहे। क्योंकि आप घर से बाहर निकलते हैं ना तो फैमिली वालों को भी टेंशन होती है कि शाम को किस टाइम आएगा, अच्छा किस टाइम आने वाला घर पे, सही घर पहुंच जाए, बस ये। तो आप अपने साथ साथ परिवार वालों का भी सोचिए और समय पर घर आइए। और जब भी आप बाहर जा रहे हैं, चाहे 2 कदम की दूरी पर जा रहे हैं, ऑफिस से जा रहे हैं, या शाम को कहीं गेड़िया शेड़िया लगाने जा रहे हैं, हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है, आपकी सेफ्टी के लिए है, ना कि ये दिखावे के लिए। और ऊपर से बहुत से कहते हैं कि भैया गर्मी है, हेलमेट नहीं पहन सकते, पसीने आ जाते हैं, और सीट बेल्ट लगाएंगे तो पेट में दर्द हो जाता है। तो वो दर्द अपनी जगह है, और गर्मी लगती है वो भी अपनी जगह, आने दीजिए पसीना, जितना बॉडी से पसीना आता है वो तो अच्छा ही होता है ना। इसीलिए हेलमेट सीट बेल्ट के साथ कोई मजाक नहीं करनी है, आपने उसको पहन कर रखना है। चलिए फिलहाल ये मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद, जब करते हैं ढेर सारी बातें, आज के कौन कौन से डेज हैं उसके ऊपर बातें करेंगे और आपको बताएंगे, और आपसे कड़क सवाल भी आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, वो भी पूछूंगी।

0: सुर में गाना सीखिए।
1: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जेरीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 5:36 हो चुके हैं श्रोताओं, और आज की तारीख यानी कि 8 जून बहुत खास है आज का दिन, क्योंकि आज मनाया जाता है बेस्ट फ्रेंड डे। यानी कि एक ऐसी दोस्ती जिसका मुझे लगता है कि डे मायने नहीं रखता है। दोस्ती तो वो दोस्ती होती है जिसके लिए डेज नहीं देखा जाता है, उसके लिए हर डे है ना। लेकिन ये 8 जून हमें याद दिलाता है कि फ्रेंड्स आपकी जिंदगी में हैं और वो किस तरीके की दोस्त है आपके पास। कुछ जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त हमेशा आपके पास रहे, बल्कि दूर वाली दोस्ती भी उतनी ही लाजवाब होती है। जब आप कभी कभी मिलते हैं ना, और उस मिलने की जो खुशी है, एक क्रेज होता है ना, उसके लिए हम प्लान करके चलते हैं यार। जब हम मिलेंगे ना तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, जैसे मिलते हैं ना, जितनी भी प्लानिंग होती है ना, वो छूम अंतर हो जाती है। पता ही नहीं चलता क्या प्लानिंग करनी है, क्या नहीं करनी है। मतलब वही जो आप पहले मिले थे, बिल्कुल वही वाला, जो आपको सोचना ही नहीं पड़ता यार क्या बोलूं मैं इसके आगे, सोच कर जरा। दोस्ती वो होती है जहां आपको सोचना ना पड़े। तो आज यही उद्देश्य है, सच्ची दोस्ती का महत्व, सम्मान देना और अपने दोस्तों के प्रति प्यार और आभार व्यक्त करना। क्योंकि एक अच्छा दोस्त सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। और कहते हैं ना दोस्तों, जो खुशी में साथ दे तो अच्छे, और जो आपके दुखी में भी साथ दे वो और भी भले। तो मुझे लगता है जो आपके दुख में साथ दे रहे हैं उसको आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जहाँ कभी हंसी मजाक, कभी सलाह, तो कभी बिना कुछ कहे हमारी बात समझ ले, यही तो होती है सच्ची दोस्ती। जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें में अक्सर दोस्तों का साथ शामिल होता है। तो आज अपने बेस्ट फ्रेंड को एक प्यारा सा मैसेज, कॉल, मुलाकात के जरिए जरूर बताइए कि वह आपके जिंदगी में कितना खास है। क्योंकि दोस्ती बहुत एक

अनमोल रत्न होता है जो। और हम कभी कभी ये सोच लेते हैं ना कि जो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं आपके अंदर कमियां बताता है, नहीं तेरे अंदर ये कमी है, तू चेंज, तुझे चेंज करना पड़ेगा कुछ भी कर, तो हमें लगता है यार कि क्या बता रहे हैं, क्योंकि वो आपके अपने हैं और वो चाहता है कि आपका भलाई हो, ये नहीं चाहता कि कल को तुम्हें कुछ कहे, इसलिए अप्रिसिएट करता है वो आपको कि कहता भाई तू आगे बढ़, कुछ कर, अपने अंदर चेंज ला। तो समझ लीजिए उससे बड़ा दो प्यारा अच्छा दोस्त आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है, जो कि खुद भी चेंज होता है और आपको भी चेंज करने का हुनर रखता है। उससे बड़ा और अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता है। अगर आपके पास भी है ऐसा कोई दोस्त तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर है 9832378968। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके अपने दोस्त के बारे में ना दो लाइन अच्छी वाली बतानी है कि वो आपके लिए क्या है, कितना खास है, मैसेज करके बताइए 9832378968। और जुड़े रहिए आरजे रीना के साथ, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए एक बहुत ही प्यारा गाना दोस्ती के ऊपर ये गाना है और इस गाने को एंजॉय कर

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है। अर्जरीना 9.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 5:47 हो चुके हैं श्रोताओं। और एक खास बात जो मैंने पढ़ी और मैंने सोचा कि आप सभी तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम दूसरे जीव को खाते हैं ना तो दर्द उसको होता है बहुत। आप तो मज़े में खाते हो उसको, लेकिन उसके पूछ के देखिए कि उसके ऊपर बीतता क्या होगा, है ना, पूछ नहीं सकते ना। लेकिन उसके लिए अब ये कहा जा रहा है कि बनारस में नगर निगम की संदक बैठकों में ये साबित हो गया है कि मांस मछली की दुकानों को शहर से, यानी कि बाहर जो शहर में है, वो मांस मछली अब नहीं बेच सकते हैं। अगर उनको बेचना है तो शहर से बाहर उनको दुकान खोलना पड़ेगा, स्टॉल अपना जो भी लगाते हैं वो लगाना पड़ेगा। लेकिन अब शहर के अंदर ये चीज़ें नहीं बेची जा सकती हैं। क्योंकि जहाँ आस्था की चीज़ें हैं, आस्था है, भगवान है, और उसी गलियों में आपको इस चीज़ की दुकानें दिखे तो वो आस्था नहीं है। तो इसी के ऊपर देखते हुए अब बनारस की गलियों में ये कहा जा रहा है, बनारस में अब ना मांस मिलेगा ना ही मछली मिलेगी। अगर आप इनके शौकीन हैं भी तो इसके लिए आपको शहर से बाहर जाना पड़ेगा। तो श्रोताओं, मुझे लगता है कि जब हमें थोड़ी सी चोट लग जाती है ना तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि हाय मम्मी चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है, कट लग गई है। तो सोचिए, हम अपने ऊपर इतनी सी भी खरोच नहीं सहन कर सकते हैं। और जब उसी जानवर को, उसी जीव को जब काटा जाता होगा तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी, वो भी सोचता होगा ना कि पता नहीं मैंने कौन से अपने जन्मों में पाप किए हैं जो इसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि आपको आप नॉन वेज खा रहे हैं तभी आपको भरपूर प्रोटीन मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बहुत से ऐसे हैं जिन जो खाते भी हैं और बहुत से ऐसे हैं जो नहीं भी खाते हैं। तो मैं कहती हूँ आप कोशिश तो कर सकते हैं ना छोड़ने के लिए, कि छोड़ देते हैं, दूसरे जीव को नहीं खाते हैं। आप उसी की जगह पनीर खाइए, अंकुरित सब्जियाँ खाइए, सुबह आप उसको रात में भिगो दीजिए, सुबह खाइए, राजमा खाइए भिगो कर सुबह, आप हल्का सा उसको घी में और हींग में और काली नमक डालिए उसमें, काला नमक, और उसको भून कर आप खाइए तो देखिए कितना आपको अच्छा भी लगेगा, टेस्टी भी लगेगा और आपको प्रोटीन भरपूर मिलेगी। तो बस आज से आप अगर जो आप नॉन वेज खाते हैं कोशिश तो कर सकते हैं ना कि हम इसको छोड़ेंगे। फिलहाल तो ये जहाँ पे आस्था की आस्था है, मंदिरें हैं, वहाँ तो अब आपको ये नहीं मिलने वाली है। अगर आप चाह खाना में चाहते हैं तो आपको इसके लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। सो मैंने आप सभी से पूछा था कि अपने दोस्त के बारे में आपने दो लाइनें बतानी है, तो मेरे पास मैसेज आ गए हैं। चलिए हम मैसेज शामिल करते हैं कि इनका क्या मैसेज आता है। दोस्त वह व्यक्ति होता है जिसके साथ आपका गहरा भावनात्मक लगाव, विश्वास और आपसी समझ होती है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो खून के रिश्ते से परे, क्या बात है, पसंद और विचार की समानता के आधार पर बनता है, क्या बात है जी, बहुत अच्छी लाइनें लिखी है। और लिखते हैं आगे, लिखते हैं, सच्चा विश्वास दोस्त वह होता है जिसके सामने आप बिना किसी झिझक के अपने मन की बात कह सकते हैं। मुश्किल में साथ, सुख में हो तो साथ होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मुसीबत या दुख के समय आपके मदद कर रहा है, आपके साथ है, वो होता है सच्चा दोस्त। और आगे लिखते हैं, निस्वार्थ प्रेम, यानी कि सच्चा मित्र जो होता है उसमें कोई स्वार्थ या मतलब नहीं होता है। और आगे लिखते हैं, मार्गदर्शन, जो आपके दोस्त बोलते हैं कि आपके अंदर ये चेंजेस करने हैं, वो लिखा इन्होंने, एक अच्छा दोस्त आपकी कमियों को दूर करने में मदद करता है, यही रिश्ता अच्छा होता है। क्या बात है जी, बहुत अच्छी लाइनें लिखी है सर, लेकिन आपने आप नाम नहीं बताया है। सो इनका यानी कि लास्ट 4 डिजिट है 00301, यानी कि इनके फ़ोन नंबर है। तो सर आपसे प्लीज़ गुजारिश है कि आप अपना नाम भी हमें ज़रूर शामिल करें, क्योंकि नाम के बिना पता नहीं चल पाता है ना, क्योंकि आप लाइनें तो बहुत अच्छी लिखते हैं, मैसेज भी बहुत अच्छे भेजते हैं, उसके लिए आप अपना नाम भी ज़रूर मेंशन करें। फ़िलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो प्रीति का मैसेज आता है मेरे पास, और इनका कहना है कि जो मेरी बेस्टी है ना, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, वो कभी मैं अगर कहीं घूमने जा रही हूँ या घर में कोई फंक्शन है तो मैं इसको इनवाइट करती हूँ ना, तो उस टाइम बोलती कि नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ रही, तू अपना काम कर, तू इन्जॉय कर। लेकिन जैसे उसको पता चलता है ना कि मेरी तबीयत ख़राब है या मैं किसी परेशानी में हूँ, वो नहीं देखती कि वो क्या काम कर रही है क्या नहीं काम कर रही है। मतलब मैं अगर मैं उसको एक मैसेज भी कर दूँगी ना, आधे घंटे के बाद वो मेरे पास ही होती है, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना उसकी लाइफ में, वो छोड़ कर मेरे पास आ जाती है। तो मेरी दोस्त है ना मैम, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, और मैं यही भगवान से प्रे करती हूँ कि हमारी दोस्ती में किसी की नज़र ना लगे। बस टेंशन मत लीजिए मैडम, जब दीवारें पक्की होती है ना तो उसमें हवा भी पार नहीं होता है। तो आपकी दोस्ती तो ऐसी पक्की है जहाँ हवा तो आ ही नहीं सकती है। पत्ते की जब एक पत्ता होता है, अगर फूंक मारो तो वो उड़ जाता है, क्योंकि वहाँ वो नींव मजबूत नहीं है। और आपकी नींव मजबूत हो तो कोई कितना भी लाख कोशिश कर ले, कुछ भी नहीं कर पाता है। सो बहुत अच्छी बात आपने लिखी है अपने दोस्त के बारे में। और फिलहाल और अगले मैसेज की बात करूं तो ये कुलदीप जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, और इनका लिखना है कि मेरा दोस्त है दीपक और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं मैम, आपका रेडियो मतलब एफएम मुरादाबाद रेडियो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों एफएम मुरादाबाद रेडियो सुनना बहुत पसंद है। मैंने बहुत से रेडियो सुने, लेकिन जो एफएम मुरादाबाद सुनता हूँ ना, अलग ही वाइब आती है मेरे को, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं फेस टू फेस मतलब कनेक्ट हूँ, ऐसा लगता है कि मैं आप सभी के पास बैठकर ही बातें कर रहा हूँ। क्या बात है, और मैं जब भी फ्री समय में होता हूँ ना तो आपका रेडियो ज़रूर सुनता हूँ, बल्कि मैं गाड़ी में होता हूँ तो ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ऐप के माध्यम से आपका रेडियो सुनता हूँ मैं। बिल्कुल सर, और लिखते हैं कि जो मेरा दोस्त है दीपक आज बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन आज के डे वो मनाएगा नहीं मेरे साथ, एंजॉय नहीं करेगा, क्योंकि वो कहता है कि दोस्त के लिए कोई डे नहीं होता है यारा, डे दोस्त तो वो होता है जो आपके साथ हमेशा रहे, और ज़रूरी नहीं है कि वो दूर है तो आपकी दोस्ती कमज़ोर है, बल्कि आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है। तो मेरा दोस्त तो ऐसा है कि अगर कोई भी खुशी की चीज़ होती है ना तो वो शामिल नहीं होता उसमें, लेकिन उसको भी पता चल जाता है ना कि भाई हाँ थोड़ी डगमग हो रही है नैया, तो तुरंत मेरे पास आ जाता है और मेरी मदद करता है। और हम दोनों दोस्त ना एक दूसरे के लिए हमेशा रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मतलब कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है ना तो हम ये नहीं सोचते कि परमिशन ले ले घर वालों से कहीं जाने के लिए, नहीं मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों को पता है कि इसके अलावा मेरे पास कोई दोस्त नहीं है और उसके पास भी मेरे अलावा कोई दोस्त नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही सर आपने ये, तो कि अगर आप दोनों की दोस्ती और आप दोनों के बीच में तीसरा थर्ड पर्सन कोई नहीं है तो आप तो सच बताओ दुनिया के महान व्यक्ति हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी दोस्ती में ना थोड़ा सा नोक झोंक हो जाए ना तो वहाँ पे झुक जाइएगा सर, क्योंकि दोस्ती ऐसी बसती है। चलिए फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैं बातें बहुत करती हूँ गाइस, मैसेज आ गए तो मैसेज भी शामिल करने बहुत ज़रूरी है। चलिए फिलहाल ये गाना इन्जॉय करते हैं।

0: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर।
3: एयर कमोडोर प्रशांत बालकृष्णन नायर एक योग्य उड़ान अनुदेशक तथा एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। ये भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक है। इनको एक्सियोम 4 मिशन में एक स्टैंडबाय मिशन पायलट के रूप में चुना गया था, जहां इन्होंने प्राइमरी मिशन कर्मी दल के सदस्यों के साथ अत्याधुनिक मिशन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनके प्रशिक्षण में जीरो ग्रेविटी सिमुलेशंस, स्पेस वॉक ट्रेनिंग तथा स्पेशलाइज्ड स्पेस फ्लाइट ऑपरेशंस भी शामिल थे। इनके अदम्य साहस एवं असाधारण वीरता के लिए एयर कमोडोर प्रशांत बालकृष्णन को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। एयर कमोडोर प्रशांत बालकृष्णन नायर।
2: Proud family, with a round of applause, proudly receiving the Kirti Chakra. This is Group Captain Prashant Balakrishnan Nayar, flying captain, flying pilot in the Indian Air Force.
3: Captain Lalrin Omar Silo, Parachute Regiment.
4: और अब विशेष दल 4 पैराशूट के कैप्टन लाला रिनाउ साइलो आमंत्रित किए गए हैं कीर्ति चक्र के लिए।
3: कैप्टन साइलो को श्रीनगर इलाके में एक आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। घने जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आपने एक संदिग्ध गतिविधि देखी। मिनी RPV द्वारा आपने खतरे का विश्लेषण किया और स्पष्ट रूप से उच्च श्रेणी के एक आतंकवादी की पहचान की। रणनीतिक संयमता दिखाते हुए आपने आतंकवादियों पर सटीक गोलाबारी की। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप भीषण गोलाबारी के बीच आगे बढ़े और एक खूंखार आतंकवादी को नस्ती की मुठभेड़ में मार गिराया। निर्भीकता साहस का प्रदर्शन करते हुए आपने बाकी आतंकवादियों को भी निष्प्रभावी कर दिया। युद्ध कुशलता, अद्भुत बुद्धिमत्ता और स्पेशल फोर्सेस की निपुणता का प्रदर्शन करने के लिए कैप्टन लालरिन ओमर साइलो को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन लालरिन ओमर साइलो।
4: तालियों की कौतूहल के बीच राष्ट्रपति से पुरस्कार लेते हुए कैप्टन साहब कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा रहा है कैप्टन साहब।
5: अब शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। लांस दफादार बलदेव चंद आमट कौर, 4th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत।
2: एंड नाउ Shaura Chakra posthumously, a very poignant moment. The first chakra, Shaura Chakra, going to Lance Dafedar Baldev Chand from the Armored Corps, coming forward to receive his wife and mother.
5: Lance Dafedar Baldev Chand, 19 September 2025 को कश्मीर में चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान का हिस्सा थे। सशस्त्र आतंकियों द्वारा अचानक किए गए प्राणघातक हमले के बीच घिरे अपने साथियों की रक्षा के लिए आप हथियारबंद आतंकी पर अकेले टूट पड़े। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भीषण हाथापाई के बाद इस शूरवीर सैनिक ने आतंकी से विदेश निर्मित पिस्तौल छीनकर अपने कई साथियों की जान बचाई एवं अपने दल को पुनर्गठित किया। सीने में गोली लगने से घायल होने के बावजूद आप आखिरी सांस तक आतंकियों का मुकाबला करते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस हवलदार बलदेव चंद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिवानी रनौत तथा उनकी पूज्य माता श्रीमती विजय कुमारी।
2: ऑनरेबल प्रेसिडेंट वॉकिंग टुवर्ड्स द मार्टर्स वाइफ एंड मदर। to present the Shaurya Chakra posthumously to Lance Dafedar Baldev Chand. Hearts are heavy and overwhelming feeling, but our martyr leaves the family, the near and dear ones, with pride and honor.
5: अब वीर चक्र मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज, सीमा सुरक्षा बल मरणोपरांत, कांस्टेबल दीपक चिंगाखम, सीमा सुरक्षा बल मरणोपरांत।
4: उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक चिंगाखम की परिवार के सदस्य।
6: जी, मैं सारी उम्र थोड़ी आंख खिदमत करूंगी।
7: चंगे कर्म बंदे दे जद जागदे ने, रब आप सबब बनाउंदा है, सुल्तान बनाउंदा कैदियां नूं, दुख दे के सुख दिखाउंदा है।
6: पहले तू आए का तो क्या सी कि तू उन्हां दीआं खिदमतां करेंगी।
8: इनू डर लग, इनू छड्ड के चला जावे।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है रीना के साथ मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 6:08 हो चुके हैं, यानी कि दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है श्रोताओं। सो आज बात करने वाले हैं यानी कि उस नौकरी के बारे में। सरकारी नौकरी का सपना सुनने में जितना आसान लगता है ना, उसे पूरा करने का सफर उतना ही मुश्किल होता है। आज हजारों लाखों युवा यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसी परीक्षा के लिए अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर सफर करके परीक्षा देने पहुंचे हैं। कोई एक दिन पहले निकल जाता है तो कोई रात भर ट्रेन में बस सफर करता है, तो कोई अनजान शहर में रुककर अपने सपने को हकीकत बनाने की कोशिश करता है। एक परीक्षा सिर्फ 3 घंटे की होती है, लेकिन उसके पिछले महीने की मेहनत, परिवार की उम्मीदें और ना जाने कितने त्याग छिपे होते हैं। इसीलिए अगर आपके घर मोहल्ले रिश्तेदार में आज जिनका कांस्टेबल का एग्जाम है, तो आप, क्योंकि आज 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक यानी कि 2 शिफ्ट में ये पेपर होंगे, मॉर्निंग और इवनिंग में, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप उनको अप्रिसिएट करें, मोटिवेट करें, डीमोटिवेट ना करें कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। भगवान करे कि आपका एग्ज़ाम सफल होए, अच्छा होए, क्योंकि इंसान को ना हौसला मिलता है कि हाँ यार, कोई तो मुझे शाबाशी दे रहा है ना, और मुझे लगता है कि मुझे अच्छा पेपर करके आना चाहिए। तो जब आपकी एक छोटी सी मुस्कान उसके लिए कितना बड़ा हौसला बन जाता है। तो इसीलिए कोई आज एग्ज़ाम देने गया है या फिर कल भी एग्ज़ाम है कॉन्स्टेबल वालों का और परसों भी है, तो उनको अप्रिसिएट ज़रूर करें कि आप पेपर देने जा रहे हो, अच्छा पेपर जाए आपका। और साथियों, बस यही कहना चाहेंगे आप सभी से, आज जिनका जिनका कॉन्स्टेबल का पेपर है, अपने ऊपर विश्वास रखिए और आपने जो मेहनत करी है ना, 1 साल 6 महीने जितने भी मेहनत करी आपने, बस आज वो दिन है आपके मेहनत का रंग लाने का। 3 घंटे यानी कि आपके जिंदगी का अनमोल ये 3 घंटे सफर है, जहां आपने हॉपलेस नहीं होना है, बिल्कुल शांत दिमाग से अपना एग्जाम करना है। और जिनका कल एग्जाम है उनके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना एग्जाम देने जाइए, बिल्कुल डरना नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, बिंदास होकर जाइए और बिंदास होकर एग्ज़ाम देकर आइए। और हमेशा अपने अंदर यही उम्मीद रखिए कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो आपका जो ऑरा होता है वो पॉजिटिव हो जाता है और आपकी चीज़ें भी फिर अच्छी होती हैं। तो इसीलिए जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये सोच अपने अंदर ज़रूर रखिए कि मैं ही हूँ जो कर सकता हूँ, मेरा लॉ कोई और है ही नहीं, अपने अंदर ये सोच जरूर रखिए। चलिए एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोता आप सभी के बीच, ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल आपने कितने नहीं जाना है, बस आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और ये गाना बहुत ही प्यारा है।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548।

0: 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है आर्जरीना के साथ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और अब बात कर लेते हैं वेदर अपडेट की, जो कि मुरादाबाद की बात करूं भैया तो यहाँ पर 38 डिग्री सेल्सियस यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज 8 जून को कहीं कहीं बारिश बताया जा रहा है कि बहुत तेज़ आंधी तूफान आने वाली है, यानी कि हवाओं की बात करूँ तो 80 की रफ्तार में बताया जा रहा है। तो श्रोताओं, आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि कहीं पर तो इतनी आंधी तूफान तेज़ बारिश और कहीं पर गर्मी का इतना प्रचंड कि सहन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, रहना मुश्किल हो रहा है कि भैया इस गर्मी से कैसे बचे, कैसे राहत मिले। ऊपर से रात को लाइट चली जाती है तो और भी परेशानियां बढ़ जाती है ना, यही टेंशन रहता है। लेकिन आज यूपी के कई ज़िलों में, बिहार में, दिल्ली में बारिश आने वाली है। अरे रुक जाइए, मुरादाबाद में बारिश आएगी, यानी कि 12 तारीख को बारिश बताया जा रहा है कि मुरादाबाद में 11, 12, 13 को बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। श्रोताओं, कुछ नहीं पता कल क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि बारिश आने की संभावना है 11, 12, 13 तारीख में। और आज के लिए यानी कि बिहार, यूपी के कई जिलों में और दिल्ली NCR में बारिश आ सकती है। अभी हवाएं की जो रफ्तार है वो बहुत तेज आएंगी। किसान भाइयों के लिए थोड़ा सा राहत मिलेगा, लेकिन एक बात उनको भी ध्यान रखना है कि खुले एरिया में जब आंधी तूफान आए वहाँ से आपको जितना हो सके बचना है। और आंधी तूफान के समय मैं तो कहती हूँ कि घर पर रहिए, बाहर मत जाइए। और जो किसान भाई है वो बाहरी खेत में जो काम होता है, पानी वगैरह का देना होता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो खासकर अभी अपना ध्यान रखिए, कोशिश करिए उस टाइम पर आप कहीं पर छुप जाए ताकि आप आंधी तूफान से बच सके। खुले एरिया में जितना हो सके उतना जाने से बचे। और आज का दिन भी हमारे लिए बहुत खास है, खास इसलिए है कि आज किसी का बर्थडे है। मैं गाना प्ले कर रही हूँ, वो गाना सुन के आपने बताना है कि आज किन का बर्थडे है। और अगर आपका भी आज बर्थडे है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, क्योंकि रेडियो है आपका बर्थडे विश करने के लिए। सोचिए कि आपका बर्थडे रेडियो पर विश होएगा तो कितनी खुशी होएगी आपको, है ना। सो चलिए फाइनली एक गाना प्ले करती हूँ और आपने सोचना है कि ये गाना जो आप सुन रहे हैं आज, गाना सुनकर बताना है कि आज किस एक्टर का बर्थडे है, उसके बाद मैं बताऊंगी। और आपका भी बर्थडे है तो आप भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपके बर्थडे विश करने के लिए हैं यहाँ पर जी। चलिए फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं। ये गाना सच बताऊं मुझे बहुत पसंद है।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। तो चलिए मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि दीपक जी का कहना है कि भैया शिल्पा सिट्टी जी का आज बर्थडे है, तो हैप्पी वाला बर्थडे उनको। और भैया फिटनेस के लिए बहुत जानी जाती है, ये तो बात सही कही आपने सर। और अगले मैसेज की बात करूँ तो रूपाली का मैसेज आता है और इनका कहना है कि आज मेरी फेवरेट एक्टर शिल्पा शेट्टी जी का बर्थडे है। ओहो क्या बात है जी। सो जो आपने गाना सुना है ना, शाम भी खूब है, इसमें जो एक्टर है वो शिल्पा शेट्टी है और आज इनका बर्थडे है। और आपको पता है कितने साल की हो गई है, यानी कि 51 की हो गई है। और इनका जन्म हुआ था 8 जून 1975 को। सोचिए श्रोताओं, अभी भी 51 साल में ये 15-16 साल की लड़कियों को टक्कर देती है। वो पता है क्यों? क्योंकि ये अपने फिटनेस का बहुत ध्यान रखती है। और कहते हैं ना, आपके हाथ में है कि आप 30 की एज में बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो या फिर 51 साल की एज में भी आप 14-15 साल की लड़कियों को टक्कर दे रहे हो। सिर्फ और सिर्फ ये फिटनेस का राज है और ये फिटनेस के ऊपर जाने भी जाती हैं, क्योंकि ये रखती है अपने फिटनेस का बहुत ध्यान। इनका कहना है कि भैया फिट है वही हिट है और वही चमकता है। और अब इनके फेस पर भैया जितने भी इनके साथ की जो एक्टरें हैं उनको देखेंगे और आप इनको देखेंगे ना, तो आप कह नहीं सकते कि यार ये शिल्पा शेट्टी है ना, ये 51 साल की हो गई है ना। आप इनको देखेंगे तो देख के भी नहीं लगेगा कि ये 51 साल की हो गई है, ये अपने आप को इतना फिट रखती है। तो श्रोता आप सभी से यही कहना चाहेंगे, इस भाग दौड़ की जिंदगी में ना अपने लिए समय निकालिए। सुबह अगर आपको नहीं मौका मिल रहा है तो शाम को आप ज़रूर निकालिए अपने लिए, योगा एक्सरसाइज ज़रूर करिए, क्योंकि ये योगा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। सुबह कम से कम अपने लिए आप आधा घंटा तो निकालिए, अनुलोम विलोम कपाल भाती तो करिए, देखिए चेहरे पर कैसा ग्लो आता है और आपको फिट रखता है, मोटापा कम करने में मदद करता है। तो इसीलिए अपने लिए इस बिजी शेड्यूल में ना टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है जी। चलिए एक कड़क सवाल भी लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए, लेकिन उससे पहले गाना और फिर से कनेक्ट होते हैं जी, करेंगे ढेर सारी बातें एक कड़क अपडेट के साथ।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। टीएनसी अप्लाई।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आरजोरी ने आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है। इवनिंग मस्ती शो लेकर समय की बात करूं तो 6:35 हो चुके हैं श्रोताओं, और अब इसी बीच में लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए कड़क सवाल। और कड़क सवाल भी बहुत आसान है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, गूगल बाबा को परेशान नहीं करना पड़ेगा, है ना जी। तो आज के कड़क सवाल ये हैं कि कौन से पेड़ पर हम नहीं चढ़ सकते हैं। ये तो बड़ा आसान है जी, आपने बताना है मैसेज करके, नंबर है 9823789689 पर आपने मैसेज करना है कि कौन से पेड़ पर हम नहीं चढ़ सकते हैं। सोचिए और फटाफट मैसेज करिए। फिलहाल एक और प्यारा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं, करेंगे ढेर सारी बातें।

क्या बात है जी, बहुत ही खूब गाना एंजॉय किया है। और समय की बात करूं तो 6:40 हो चुके श्रोताओं, और एक ऐसी बात जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, है ना? मुझे पता है। और आप अब सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी कहते हैं ना, वक्त बदल जाता है लेकिन, और लोग बदल जाते हैं लेकिन एक माँ का प्यार कभी नहीं बदलता। आखिरकार ये क्यों बात कर रही हूँ मैं, सुनिए जरा। सोचिए, 48 साल पहले बिछड़ा बेटा साधु बनकर लौटा है, चेहरा बदल चुका था, उम्र बढ़ चुकी है, लेकिन जैसे ही उसने आवाज लगाई माँ ने उसे पहचान लिया, क्योंकि माँ की पहचान आंखों से नहीं दिल से होती है। माँ अपने बच्चों की पहली मुस्कान पहचानती है, पहला कदम पहचानती है, और उसकी आवाज तो उम्र भर नहीं भूलती, चाहे वो चार दिन के बाद क्यों ना लौट कर आए। और ये तो बात हो रही है 48 साल बाद, माँ के दिल में उसके लिए वही जगह रहती है। ये कहानी ना याद दिलाती है कि दुनिया के हर रिश्ते एक सीमा हो सकती है, लेकिन माँ के प्यार और इंतजार के लिए कोई सीमा नहीं होती है। सो अगर आपकी माँ आपके साथ है तो आज उन्हें गले लगाइए, उनका शुक्रिया कीजिए, क्योंकि सच ही कहा गया है माँ तो माँ होती है, वे अपने बच्चों की आवाज जरूर पहचानती है। और आज की कड़क सवाल भी आप सभी के लिए बहुत ही सिंपल लेकर आई हूं मैं, क्योंकि आप अपने पहचानना नहीं बिल्कुल सोचना भी नहीं पड़ेगा, आसानी से आप बता पाएंगे। सो आज का कड़क सवाल ये है कि कौन से पेड़ पर हम नहीं चढ़ सकते हैं। सोचिए और फटाफट मैसेज करिए, नंबर है 9837896896। चलिए फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 6:47 हो चुके श्रोताओं, और आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि आज मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। यह दिन हमें महासागरों के महत्व को समझाने और उनके रक्षण के लिए जागरूकता करने और उद्देश्य में मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं हमारी धरती का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, और महासागर हमें ऑक्सीजन, भोजन और जलवायु संतुलन प्रदान करता है। लेकिन प्लास्टिक प्रदूषण और बढ़ते कचरे की वजह से समुद्री जीव खतरे में पड़ जा रहे हैं। तो आइए आज संकल्प लेते हैं कि प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करेंगे, पानी को बचाएंगे और पर्यावरण को स्वस्थ रखेंगे और स्वस्थ रखने में अपना योगदान देंगे। क्योंकि अगर महासागर स्वस्थ रहेगा तभी हमारी जो धरती है सुरक्षित और सुंदर बनी रहेगी। आप सभी को विश्व महासागर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी से यही गुंजाइश है कि आप नदियों में पानी, कचरा, प्लास्टिक कुछ ऐसा ना डालें, क्योंकि जब वो शुद्ध रहेगी ना तभी आपको शुद्ध हवा मिलेगी, प्राकृतिक भी हरी भरी रहेगी। तो आज का बहुत प्यारा सवाल सोचिए और महसूस करिए, क्योंकि अगली बारी सिर्फ आपकी है। मैंने आज क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि कौन से पेड़ पर हम नहीं चढ़ सकते हैं। सोचिए और फटाफट मैसेज करिए, नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है, क्योंकि आप बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, जिसका आप सुबह सुबह सेक भी पीते। अब देखिए मैंने इतना भी फॉर एग्जांपल दे दिया आपको कि कौन से पेड़ पर हम नहीं चढ़ सकते हैं। चलिए फिलहाल एक गाना एंजॉय करते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के बीच श्रोता और करेंगे क्या, अरे ढेर सारी बातें। चलिए फिलहाल एक गाना

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ और आप सुने अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। लेकिन अब बारी आ चुकी है आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेजेस, तो चलिए देखते हैं कि किनका क्या मैसेज आता है आज की शाम। तो मैसेज की बात करूं तो हेलो रीना मैम, गुड वाली इवनिंग है, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे जी। और ये हमारे साथ कनेक्ट होती है ललिता कश्यप जी, और इनके कहने कि मैम इतनी गर्मी क्यों करा रखी है आपने? ओ माय गॉड, बहुत गर्मी है जी। अभी टेम्परेचर की बात करूं तो 41 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर से ये कह रही कि मैम चाय पी लीजिए। भैया चाय लवर जो होते हैं ना, चाहे गर्मी पसीना टपकता रहे लेकिन चाय नहीं छूटना चाहिए, चाय तो चाहिए चाहिए। पर चार बजते बजते जो बॉडी में सनसनाहट होने लगती है ना, मतलब बॉडी का एक एक अंग काम करना बंद कर देता है। जब तक एक घुट चाय का सिप ना ले लो ना, तब तक भैया लगता है कि कुछ हो रहा है बॉडी में। लेकिन जो चाय लवर नहीं है उनके लिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो चाय लवर भैया, चाहे गर्मी हो चाहे कितने प्रचंड गर्मी क्यों नहीं पड़ रही हो, लेकिन चाय तो चाहिए तो चाहिए। फिलहाल लाइट चली गई अभी फिलहाल। और आगे बात करूं तो कह रही कि गाना बिंदास प्ले कर रही हो मैम, और आज ऊपर वाले कमरे में कैसे सोएंगे भैया, बहुत गर्मी है। अरे मैडम आप एक काम करिए, आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी। देखिए आप अपने छत पर शाम के टाइम पानी डाल सकते हैं, जिससे छत थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, फिर आपको सोने में आसानी, आप सो सकते हैं। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की बात करते हैं। अगला मैसेज आता है हमारे पास, ये क्या कहना चाह रही हैं? इनका कहना है हाय संजू, हमारे साथ कनेक्ट होती है। हाय रीना दी, कैसी हो आप? आप चाय पियेंगी? एक कप चाय। ओके जी, एक कप चाय बना हुआ आपके लिए। अरे अरे क्या बात है, इतनी प्यार से बोल रही है तो आप तो पिलाएंगी, तो हम जरूर पी लेंगे जी। और उस साथ में कहती कि नींबू पानी, तो देखिए चाय को कैंसिल करते हैं, नींबू पानी पर आते हैं, नींबू पानी पी लेते हैं ना, मस्त रहेगा। और इनका कहना है कि दी शर्माना मत, दिल ठोक कर बोलना है आपने। तो हमने दिल ठोक कर बता दिया जी कि चाय नहीं नींबू पानी पीते हैं, नींबू पानी एक साथ एंजॉय करते हैं। सो अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, ये मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। शायद सारी कली, गुड इवनिंग रीना जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, आपका शोर सुन रहे बहुत अच्छा लग रहा है। आज का राइट आंसर होता है केले के पेड़ पर हम नहीं चढ़ सकते क्योंकि वह चिकना होता है। और फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होती हैं पूजा जी, जो कि मुरादाबाद से है, और इनके कहने की मैडम हम तोरी के पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। अरे जो, अरे वो मैडम वो तो बेल हो गई, वो तोरी थोरी है, वो जो तोरी बोलते हैं ना गाइस, वो जो लौकी वगैरह, हाँ तोरी बोलते हैं उसको, वो तोरी होती मैम, वो उसकी जो बेल होती है वो पेड़ नहीं होता है वो। चलिए कमाल का आंसर है भैया, ऐसा आंसर तो क्या बात है, मजा ही आ गया सुन के। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज भी आता है मेरे पास, और इनका कहना है कि हम पता किस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, हाँ जी अनार के पेड़ पर। अरे भैया अनार के पेड़ पर नहीं चढ़ सकते हो? चलो कैसे नहीं चढ़ सकते बताओ जरा, अनार का पेड़ बहुत कमजोर होता है, आप उस पे चढ़ेंगे ना तो टूट जाएगा पहली बात तो। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ राकेश जी कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि मैम केले के पेड़ पर हम

पहला राइट आंसर है. आप सभी ने भी राइट आंसर दिया है, लेकिन वो जो तोरी का पेड़ नहीं होता, बेल होता है उसका. ठीक है जी, चलिए. और जो अंगूर हो, और जो आपने अनार बोला है ना, उस पर आप चढ़ नहीं सकते, बहुत कमज़ोर होती है वो. चलिए, आप सभी को दिल से शुक्रिया मैसेज करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए. और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, ढेर सारी बातें करेंगे. और अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर. यूं ही अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और पानी पीते रहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है श्रोताओं. तो पानी तो मैं कहती हूँ एक के, मतलब ये नहीं देखना है कि आपको प्यास लगेगी जब आप पानी पिए. प्यास नहीं भी हो तब भी पानी पीजिए, क्योंकि आप पानी पीते रहते हो तो आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है. और साथ ही साथ आप गर्मी में, मतलब जो जितना ऑयली खाना है प्लीज़ अवॉइड कर दीजिए इन गर्मियों में. तो जितना अवॉइड करेंगे उतना ही आप सभी के लिए अच्छा होगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे और अपने सेहत का भी ध्यान रख पाएंगे. घर का खाना खाइए, हल्का फुल्का खाना खाइए, जैसे खिचड़ी और छाछ दही ले सकते हैं, जो कि ये हल्का होता है. साथ ही साथ आप फ्रूट्स ले सकते हैं, वाटरमेलन, जिसमें पानी भरपूर होता है. और

अच्छा, इन्होंने ललिता कश्यप जी ने पहले मैसेज दे दिया भैया, 6:35 पे आंसर आ गया था, लेकिन मैंने इनके आंसर पर ध्यान नहीं दिया है। इनका कहना है कि केले का पेड़ है। क्या बात है, फिर तो आप इरशाद अंसारी से भी पहले आज विनर बन जाती है जी। मैंने आपका आंसर नहीं ध्यान दिया, सॉरी टू गाइस, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ना कि आप मैसेज में इतना घुल जाते हो कि आपको और मैसेज देखने में, आज तो सच बताओ तो मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। सॉरी ललिता जी, आप बनती है मेरे शो के विनर, और अभी के लिए मैं लेती हूँ जाने की इजाज़त। सुबह बाय, टाटा, ठीक है। एक प्यारा सा गाना आप सभी के बीच छोड़कर जा रही हूँ, सो इस गाने को एंजॉय करिए और यूँ ही अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और पानी पीते रहिए, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खन्नूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
7: हेलो, नमस्ते, आदाब, वेलकम करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम विशेष बातचीत में। दोस्तों, इस दिन को मनाने की खास वजह लोगों के बीच ब्रेन ट्यूमर को लेकर जागरूकता फैलाना है, जिससे कि लोगों को इस बीमारी की पहचान हो सके और समय रहते वो अपना इलाज करा सके। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इस दिवस की मनाने की शुरुआत जो है वो साल 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। और आज के इस स्पेशल डे पर आगे की बातचीत हम जारी करेंगे ब्रेन ट्यूमर स्पेशलिस्ट BMC हॉस्पिटल के डॉक्टर मोनीत अग्रवाल जी के साथ, जो कि एक न्यूरो सर्जन है। FM मुरादाबाद के स्टूडियो में आपका वेलकम है सर।
8: नमस्कार
7: जी। नमस्ते सर, क्योंकि मैंने आपका नाम पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी हमारे श्रोताओं को एक बार अपने बारे में जानकारी दें।
8: मैं डॉक्टर मोनीत अग्रवाल, मैं न्यूरो सर्जन हूँ और इससे मैं BMC हॉस्पिटल मुरादाबाद में कार्यरत हूँ। मेरी ट्रेनिंग जापान से हुई है और उसके बाद मैंने मैक्स हॉस्पिटल साकेत में, मेदांता गुड़गांव में, मेरठ में सुभारती मेडिकल कॉलेज में, फिर मुरादाबाद में साई हॉस्पिटल में रहा हूँ और अब मैं BMC हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मेरी रुचि अगर ऑपरेशंस में देखा जाए, ब्रेन में देखा जाए, तो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी या फिर स्पाइन सर्जरीज, ट्रॉमा सर्जरी, एनोरिज्म सर्जरी इनमें है। और अमूमन देखा गया है कि ब्रेन ट्यूमर्स अब दिनों रात बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
7: जी जी, तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे है कि ब्रेन ट्यूमर क्या है?
8: ट्यूमर, जब भी हम ट्यूमर की बात करते हैं, इसका मतलब है अनियंत्रित ग्रोथ होना, वही ट्यूमर होता है। ऐसे ही ब्रेन में है, जब ब्रेन के सेल्स जो होते हैं वो अनियंत्रित कंट्रोल्ड होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं, तो उसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। क्योंकि ब्रेन हमारा स्कल में, मतलब हड्डी के अंदर बंद है, एक बंद डिब्बे में है, तो जब उसमें चीज बढ़ती है तो प्रेशर डालती है, जिसके वजह से हमारे कुछ कार्य कम होने शुरू हो जाते हैं हमारे, और हमारी याददाश्त कंट्रोल होना, सब चीजें बहुत कम हो जाती हैं। तो एक प्रेशर इफेक्ट होता है और ब्रेन का हर हिस्सा एक काम करता है अपना, अगर उसने उस काम को छोड़ दिया तो फिर हमें वो चीज सामने दिखाई देती है जो उसे सिम्टम्स की तरह हमें सामने आता है। तो इसीलिए ब्रेन ट्यूमर अपरामयक बहुत घातक है, क्योंकि वो तेजी से बढ़ता है और हमें मानसिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाता है वो।
7: ओके, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अगला सवाल हमारा आपसे है कि ब्रेन ट्यूमर होने की कोई निर्धारित उम्र है या किसी भी उम्र में हो जाता है?
8: ब्रेन ट्यूमर के लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं है, ये किसी उम्र में हो जाता है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक समय पाया जाता है। हर उम्र में इसके अलग अलग टाइप्स हैं जो चीज पाई जाती हैं। बच्चों में अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बड़ों में अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं।
7: अच्छा, सर इसका कोई विशेष कारण?
8: अमूमन तो इसको जीन्स में बदलाव या म्यूटेशन ही देखा गया है, मोस्ट कॉमन कारण वही है। लेकिन अब हम कुछ टाइम से देखते हैं कि रेडिएशन, ये एक बहुत बड़ा कारण है। किसी भी मरीज के बहुत ज्यादा सीटी स्कैन हो, एक्सरेज हो, या वो रेडिएशन के आसपास रहता हो, जैसे आजकल मोबाइल यूज करना, ये अपने आप में देखा गया है कि एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है ब्रेन ट्यूमर होने का। ये पाया गया है कि जहाँ टावर्स लगे हुए हैं मोबाइल के, वहाँ के आसपास के लोगों में इसकी संख्या बड़ी है। कुछ सालों में इस चीज को पाया गया है। तो मुझे लगता है कि रेडिएशन से बच के रहना बहुत जरूरी है और व्यायाम करना, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं अगर हम चाहते हैं कि हम उनकी रोकथाम कर सकें।
7: जी, तो आज जैसा कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है, और इस पर हम आपसे अगला सवाल ये जानना चाहेंगे कि पूरे वर्ल्ड में ब्रेन ट्यूमर कितने प्रतिशत लोगों में पाई जाती है?
8: अगर हम पूरे विश्व की, वर्ल्ड की बात करें, तो अमूमन ये देखा गया है कि ये अमूमन 1 लाख में से 11 लोग जो हैं वो इस बीमारी से प्रभावित हैं, जो अपने में बहुत बड़ी संख्या है। और इंडिया में इसे पाया गया है कि करीब अमूमन 28,000 लोग इस बीमारी से हर वर्ष ग्रसित होते हैं और जिनमें 24,000 लोगों की डेथ होती है। ब्रेन ट्यूमर सबसे खतरनाक ट्यूमर में से है। आप समझें कि पूरा हमारा शरीर जो है वो, हमारा हर चीज जो है हमारे ब्रेन से काम करती है। अगर वहीं का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा, तेजी से ग्रो कर रहा है, तो खतरनाक है। इवन अब इसे कई जगह तो स्किन के ट्यूमर से भी ऊपर पाया गया है। इंडिया में सबसे कॉमन जो हम मानते हैं माउथ का कैंसर मानते हैं, अब उसके बाद इसका नंबर आना शुरू हो गया है।
7: तो संख्या बहुत बड़ी है जैसा कि आप बता रहे हैं, और लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सके, बस ऐसी हमारी कोशिश है, और आप लोगों की कोशिशें तो लगातार जारी हैं। अगला सवाल ये है कि महिला या पुरुष कौन सी कैटेगरी में ब्रेन ट्यूमर ज्यादातर शिकायतें पाई जाती हैं?
8: इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि ये चीज महिला में या पुरुष में ज्यादा पाई जाती है। अमूमन बर्तल, हाँ, टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे मेनिंजियोमास टाइप ट्यूमर है जो कि फीमेल्स में या महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं, और ग्लायोमास हैं जो पुरुषों में ज्यादा पाए जाते हैं। इनमें मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं कह सकते कि ये ट्यूमर है ये महिलाओं में ज्यादा रहेगा या पुरुषों में ज्यादा रहेगा या बच्चों में ज्यादा रहेगा, ये अलग अलग है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज।
7: अच्छा, जैसा कि आपने बताया अभी कि ब्रेन ट्यूमर के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, तो कुछ नाम बता दीजिए।
8: जैसे मैंने बताया, मेनिंजियोमास हैं, ग्लायोमास हैं, न्यूरोमास हैं, शोनोमास हैं, मेटास्टेसिस हैं, इस तरह से अत्यंत हेमेंजियोमास हैं, हेमेंजियोब्लास्टोमास हैं, रिनोफेरेंजियोमास हैं, इस तरह के कई ट्यूमर्स हैं। शायद इसका हमारे श्रोताओं को इतना ज्ञान की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चीज बढ़ती जा रही है और जिसका रोकथाम हो या जैसी पता चले उसका तुरंत इलाज हो।
7: जी, जैसा कि आपने कहा कि जैसे ही पता चले इसका तुरंत इलाज हो, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, लोग पहचाने कैसे?
8: देखिए इसके लक्षण बहुत आम लक्षणों में से है। आपको सर दर्द होता है, रोज होता है लोगों को सर दर्द, तो इसका एक बहुत बड़ा लक्षण सर दर्द है। उल्टी आना है, घबराहट होना है, चक्कर आना है, और याददाश्त कम होना है, हाथ पैरों का कम मूवमेंट होना है, कम दिखाई देना है, बोलने में दिक्कत आना है, मूड का टेढ़ा होना है। इस तरह के कई लक्षण हैं जो हम ब्रेन ट्यूमर में देखते हैं, और ये हमें कई और बीमारियों में दिखते हैं। ये एक डॉक्टर ही आपको, एक न्यूरोसर्जन ही आपको अच्छी तरह बता पाएगा कि ये चीज किस सिम्टम्स, जो सिम्टम्स हैं, ये ब्रेन ट्यूमर कैटेगरी में बैठते हैं या नहीं बैठते। पर जैसे ही आपको कोई लक्षण दिखाई दे, आपको मेनली उल्टियां, अगर सर में दर्द तो उल्टियां बहुत हो रही हैं, तो आप तुरंत किसी न्यूरोसर्जन को दिखाएं, क्योंकि एक चांस है कि ब्रेन ट्यूमर ना हो।
7: जी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और लक्षण तो आपने बताए, हम उम्मीद करते हैं श्रोताओं को समझ में आई होगी, और अगली बार से अगर ऐसे लक्षण उनको दिखाई देंगे तो जरूर वो जांच कराएंगे जाके हॉस्पिटल में। अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जैसा कि बहुत खतरनाक बीमारी है, तो इससे बचने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं?
8: देखिए ब्रेन ट्यूमर से बचना, क्योंकि ये मेनली जीन्स म्यूटेशन की वजह से ज्यादा होता है, तो इसलिए बचना तो मैं कहूंगा कि इतना नहीं है, क्योंकि ये तो जेनेटिक ही होना है चीज। लेकिन अभी भी मोबाइल का यूज कम करें, पहली चीज। रेडिएशन से दूर रहें, फिर अल्कोहल का या स्मोकिंग का सेवन कम करें, क्योंकि अगर कुछ होता भी है तो हमारी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो उसे फाइट कर सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी डेवलप रहती है। जब हमारी इम्यूनिटी डेवलप कम हो जाती है तो ये सब चीजें, बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। तो इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, और कोशिश करें कि मोबाइल का यूज कम करें और रेडिएशन से थोड़ा दूर रहें, सही नींद लें और व्यायाम करते रहें, वो बहुत जरूरी है इसके अंदर।
7: क्या बात है, तो उम्मीद है दोस्त इस चीज का पालन जरूर करेंगे जो अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया। अगला सवाल ये बता दीजिए, इस बीमारी का उपचार क्या है?
8: देखिए सबसे पहला तो हमें इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जो पता लगाने के लिए हम कर सकते हैं, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जो न्यूरोसर्जन कर सकता है आपका, और उसके बाद सीटी स्कैन जो सबसे पहले डायग्नोसिस होती है, फिर एमआरआई जो हमें और अच्छी तरह बता पाती है, फिर एंजियोग्राफी है, पेट सीटी स्कैन है, कई तरह के और हमें जांचें हैं जो हम करके पता लगाएं कि ब्रेन ट्यूमर कहाँ पर है, कितना बड़ा है, कितना नुकसान पहुंचा रखा है, क्योंकि सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जब इनका पता चलेगा तभी इसका प्रॉब्लम इलाज कर पाएंगे। अब हम इलाज की बात करते हैं, तो ब्रेन ट्यूमर का सबसे बड़ा इलाज, सबसे अच्छा इलाज तो सर्जरी ही है, पर अब कुछ नई पद्धति भी आई है। जैसे हम गामा नाइफ कर सकते हैं, मतलब हम रेडिएशन को, किरणों को एक तीव्र गति से एक पॉइंट पर भेजें, तो उस एरिया को वहाँ पे छोटा कर सकता है, जला जा सकता है, सो उसे हम रोकथाम कर सकते हैं। इसी में आगे डेवलप हुआ है साइबर नाइफ, जो कर सकते हैं, जो कि ज्यादा एडवांस है गामा नाइफ से भी। नाइफ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक से कट कर रहे हैं उसको, इसीलिए हम उसे नाइफ वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। और अगर हम ये करते हैं तो हम उस ट्यूमर की रोकथाम कर सकते हैं, टाइम पे कर सकते हैं उसकी। अब रोबोटिक सर्जरी का भी इसके अंदर धीरे धीरे रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
7: जी जी जी, तो बहुत सारे आपने उपचार बताए हैं, बहुत सारे तरीके बताए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बीएमसी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं अभी, तो यही जानना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर को लेके वहाँ पे पेशेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं?
8: वहाँ बहुत उत्तम फैसिलिटीज हैं, हम काफी ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट करते हैं, हमें वो सारी फैसिलिटीज हैं जो एक हॉस्पिटल में चाहिए होती हैं, एक एडवांस सेंटर में चाहिए होती हैं ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, और पेशेंट्स रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं हमारे। और इस चीज है कि जो भी फैसिलिटीज आपको चाहिए वो सारी हैं, आईसीयूज, ओटी, ट्रेंड स्टाफ, सब कुछ वहाँ मौजूद है, सब इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं, तो वहाँ आपको किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
7: सर, इस बीमारी को लेके एक छोटा सा मैसेज जो हमारे पब्लिक को देना चाहते हैं आप?
8: मैं अपनी जनता को कहना चाहूंगा कि जब भी उनको सर में दर्द हो, उल्टी लगे, या उनमें जरा भी घबराहट हो और उनको लगे कि कुछ अमूमन अलग चीज हो रही है, उनसे जो रूटीन करते हैं उससे कुछ अलग हो रहा है, हाथ पर काम कम कर रहे हैं या आंखों से दिखना कुछ कम हुआ है, तो तुरंत उसको कभी भी देर ना करें, उसे फर्स्ट वार्निंग साइन समझें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अमूमन कहते हैं कि एक सर में दर्द हुआ, हमने गोली खा ली, दर्द की गोली खा ली, दर्द निवारक दवा ले ली, दर्द ठीक हो गया, उल्टी गोली खा ली, ठीक हो गया वो चीज, पर अंदर अंदर वो पनप रहा होता है, और आप समझिए बहुत खतरनाक बीमारी है। जब 28,000 लोग साल के इसे ग्रसित होते हैं और 24,000 मर जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी है, और इसे जितनी जल्दी रोकेंगे उतने जल्दी फायदा होगा मरीज को, सर्जन को भी ऑपरेशन करने में आसानी है और ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप लेट करेंगे तो ऑपरेट के बाद ही ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है इसका, और ऐसी बीमारी और कई ट्यूमर्स तो जो बेनाइन होते हैं, अगर हमने निकाल दिया पूरा तो आपकी लाइफ नॉर्मल है, तो जितनी जल्दी उसे करेंगे उतना अच्छा है। तो मेरा मानना है कि जरा भी आपको सिम्टम लगे या एक साइन दिखे, आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, जिससे कि आपकी जिंदगी बचाई जा सके।
7: ये थे हमारे साथ बीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर मोनित अग्रवाल जी। बहुत ही कीमती वक्त निकाला इन्होंने हमारे पब्लिक को, ये एक छोटा मैसेज दिया जिससे लोग जागरूक हो सके और समय रहते अपना इलाज करा सके। एफएम मुरादाबाद की टीम आपका दिल से अभिवादन करती है, साथ ही आप हमारी जनता के लिए इतनी निष्ठा और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।
8: धन्यवाद।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण रहा पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएगा ये केंद्र। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई 4 स्पेशल ट्रेनें। और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो नाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों से प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ मिलेगा।
3: मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है? हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा। यहाँ पे अब रीजनल सेंटर मेट्रोलॉजी का प्रारंभ होगा तो उसका एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होगा।
0: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12 सालों में मौसम

0: विभाग ने इतने राडार और उपकरणों की स्थापना की है जितने पिछले 65 सालों में स्थापित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सिर्फ 14 राडार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है।
1: जितनी प्रगति गत 12 वर्षों में हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इतनी उससे पहले के शायद 65 वर्षों में ना हो पाई। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे, और कई एक ऐसे प्रदेश थे जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, जहां एक भी रडार नहीं था। आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए हैं, और मिशन मौसम के तहत 50 और जुड़ने वाले हैं, यानी अगले 2 साल में हम 100 रडार तक पहुंचेंगे।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। ये परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज से 10 जून तक आयोजित की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा दो पालियों में आज राज्य के 1183 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। केंद्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्थायी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में 50% की छूट प्रदान की जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के दुबेपुर बसारी ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत बने मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी शहरों जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि गांवों की प्रतिभाएं निरखकर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
4: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मान

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूं सुजाता स्मार्ट एनजीओ से। और मैं हूं इस समय परिवार कल्याण विभाग में, मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर।

0: इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है कि माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
1: सर अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं?
0: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, वहां जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी एएनएम बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ ओपीवी की वैक्सीन पिलाई जाती है, और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने जेई का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल आईपीवी लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग डीपीटी की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजस रूबेला का बूस्टर डोज और जेई की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो डीपीटी वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग TD का वैक्सीन लगाते हैं।
1: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को?
0: देखिए गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती हैं। टीकों की बात करें तो TD टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है डिप्थीरिया से बचाव होता है, और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जब बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
1: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
0: देखिए इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से ऐसे समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा सारा खून आता है, और उस खून जितना भी बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, RBCs होती हैं, WBCs होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में जो भी हमने शुरू में जिक्र किया उन टीकों को लगाना जरूरी है।
1: सर कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे? क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
1: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है, और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
0: देखिए भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं, और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहाँ पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनम होती हैं, और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी

0: सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1000 की आबादी पर जो होती हैं, जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, और इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉयज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
0: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब मैं देख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पर दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहाँ भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांति है तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए, और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
1: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
0: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है, ज्यादातर ये साइलेंट रहता है, और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है। और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं, उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं, और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारत वर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
1: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
0: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया, हमारे पास मैपिंग है। हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है, और लगभग हर 3 से 6 महीने पे हम अपने इस माइक्रो प्लान को रिवाइज करते हैं। इन जगहों पे जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं, इनका हमने माइक्रो प्लान बना रखा है और इनमें नियत दिवसों में हमारी एनम बहन जी जाती हैं और जाके वो टीका लगाती हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं, उनके लिए हम लोगों ने मोबाइल टीम की व्यवस्था कर रखी है और ये मोबाइल टीमें जाती हैं पर्टिकुलर डेज पे और ऑलरेडी इसकी सूचना हम पहले से उन जगहों पे रहने वाले निवासियों को दे चुके होते हैं और इसलिए इस टीकों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सम्मिलित किए हुए हैं। अब कोई चुनौती नहीं रह गया ये हमारे लिए।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
4: ओ, हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
5: ओ,
4: जैसे UPI से।
5: अच्छा।
4: हाँ,
5: और सुनो एक और नियम है।
4: वो क्या है मम्मी जी?
5: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
4: आम भी ना मम्मी जी।
6: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
7: हर लेन देन अब है आसान।
8: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। राजधानी में हाल में हुई आग की घटनाओं के बाद प्रशासन सतर्क, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विषय पर समीक्षा बैठक की। दिल्ली को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने बवाना में पर्यावरण अनुकूल बांस से बना कूलिंग जोन स्थापित किया और आकाशवाणी ने आज अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विषय पर समीक्षा बैठक की। राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में हुए मालवीय नगर और अन्य आग की घटनाओं के बाद आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।
9: बैठक में अवैध भवनों के खिलाफ चल रही अभियानों, अग्नि सुरक्षा संबंधी लाइसेंस के दुरुपयोग और भविष्य की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई। इस दौरान दिल्ली की आपदा संबंधी प्रणालियों में सुधार करने पर बल दिया गया। बैठक में अग्निशमन विभाग के कार्यबल को मजबूत करने के उद्देश्य से मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए पूर्व अग्निवीरों की भर्ती पर विचार करने का सुझाव दिया गया। साथ ही पिछले सप्ताह गठित अधिकारियों की टीम को समय पर कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट ATR प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। बैठक में गर्मी से संबंधित आपदा प्रबंधन उपायों और मॉनसून की तैयारियों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। आगामी बरसात के मौसम में बाढ़ के प्रति अतिरिक्त सावधानी, सख्त कार्यान्वयन और शून्य सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया गया। निकिता की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं आकर्षिता सिंह।
8: दिल्ली को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बीच हुआ। ये पहल धूल रहित सड़कों, शहरी हरियाली और वैज्ञानिक सड़क प्रबंधन को बढ़ावा देगी। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। इस बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि कक्षा 12वीं की परीक्षा 2026 के लिए नंबरों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की विंडो 2 जून से 7 जून तक पूरी तरह कार्यरत थी। इस दौरान 1,60,000 से अधिक उम्मीदवारों ने 3,08,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं के लिए आवेदन किया। साइबर हमलों और किसी भी तरह के खतरे से बचाने के लिए साइबर सुरक्षा टीम ने इस पूरी अवधि में सिस्टम की लगातार निगरानी की। CBSE ने मीडिया और सोशल मीडिया पर इस पोर्टल के काम न करने को लेकर चल रही कुछ खबरों पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों का भ्रम दूर करते हुए बताया कि जिन छात्रों के स्क्रीन पर रोल नंबर नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है तो इसका कारण ये है कि उन्होंने इस प्रक्रिया के पहले चरण यानी आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए आवेदन नहीं किया। बोर्ड ने याद दिलाया कि नियम के मुताबिक सिर्फ वही छात्र अगले चरण के लिए पात्र होते हैं जिन्होंने पहले चरण में अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई किया हो। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूची जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
10: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
8: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में यमुना जीर्णोद्धार के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि साफ और स्वच्छ यमुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का संकल्प है और सबको मिलकर इसको जल्द पूरा करना है। बैठक में तय किया गया कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष के अंत तक 99 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। अब तक 128 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा चुके हैं। श्री शाह ने बल देते हुए कहा कि यमुना जीर्णोद्धार परियोजना में कार्य प्रगति की हर 20 दिन में समीक्षा की जाएगी। दिल्ली पुलिस की सामुदायिक पुलिसिंग सेल ने आज खिचड़ीपुर के झुग्गी में बच्चों के लिए आत्मरक्षा सत्र का आयोजन किया। इसका उद्देश्य युवा प्रतिभागियों में व्यक्तिगत सुरक्षा और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना था। दिल्ली पुलिस ने आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मेगा साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 250 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को उभरते साइबर क्राइम के खतरों के बारे में जागरूक किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में एक विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
1: आज 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के रंग भवन में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंजाबी लोक गीतों और राजस्थानी लोक नृत्य कालबेलिया सहित विभिन्न लोक प्रस्तुतियां प्रदर्शित की गई। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आकाशवाणी को 90 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी। श्री जोशी ने इस अवसर को ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी पीढ़ियों से समाज की रीढ़ रही है और सूचना, संस्कृति और रचनात्मकता के माध्यम से लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव ने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर उसके कर्मचारियों और श्रोताओं को बधाई दी।
11: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 2400 घंटे 23 प्रमुख भाषाओं और 146 से अधिक बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
8: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देशभर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। एक रिपोर्ट।
12: इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को योजना के अंतर्गत मिलने वाली 9 मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं की जानकारी दी जाएगी और उनका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। समारोह के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा 75 रूपए का स्मारक सिक्का और 5 रूपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
8: राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती गर्मी और लू से नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली सरकार हीट एक्शन प्लान के अंतर्गत कई प्रभावी कदम उठा रही है। इसी क्रम में बाहरी उत्तरी जिला प्रशासन ने एक गैर सरकारी संगठन सीड्स के सहयोग से बवाना में एक अभिनव और पर्यावरण अनुकूल बांस से बना कूलिंग जोन स्थापित किया है, जो वर्तमान हीटवेव के दौरान लोगों को राहत प्रदान कर रहा है।
13: वर्तमान में बवाना और अलीपुर में 2 कूलिंग जोन संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 3 और कूलिंग जोन विकसित किए जा रहे हैं, जिन पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इनमें से एक कूलिंग जोन जिला उपयुक्त कार्यालय के सामने स्थापित किया जा रहा है। इस कूलिंग जोन का उद्देश्य विशेष रूप से समाज के कमजोर संवेदनशील वर्गों, निर्माण श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों, ड्राइवरों, रिहाड़ी पटरी विक्रेताओं और खुले में काम करने वाले अन्य नागरिकों को अत्यधिक गर्मी के दुष्प्रभावों से बचाना है। इन कूलिंग जोन का निर्माण मुख्य रूप से बांस से किया गया है। नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कूलिंग जोन में ठंडे पीने के पानी, ORS पैकेट, अग्निशामक यंत्र, हीट वेव से बचाव और जागरूकता संबंधी सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री और पर्याप्त बैठने और विश्राम की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कूलिंग जोन को लोगों से अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। नीतिका गुप्ता के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
8: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक दिल्ली में और आसपास के राज्यों में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। राजधानी में हाल में हुई आग की घटनाओं के बाद प्रशासन सतर्क। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विषय पर समीक्षा बैठक की। दिल्ली को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बीच समझौता ज्ञापन। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने बवाना में पर्यावरण अनुकूल बांस से बना कूलिंग जोन स्थापित किया। और आकाशवाणी ने आज अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
15: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
14: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
15: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
16: कॉल 7500153841।
17: टायर लो सोना जीतो।
18: क्या?
17: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
19: अपोजिट
17: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
19: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हालचाल हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की जो शाम है ना, बहुत ही झकास है यार, बहुत ही बिंदास है। ऑफ कोर्स ये
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
2: हेलो जी, कैसे ट्यूज के रायंगन की आवाज बहुत प्यारी है और ये लिखते बहुत प्यारा है और बहुत ही अच्छा सुनाते भी हैं। मेरा इनसे कैसे जो है बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ ये भी बताएंगे और ये कैसे स्टूडियो पहुंचे ये भी जानेंगे। चलिए काम कर

0: वेलिन का वेलकम करते हैं। तो भाई बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका हमारे एफ एम मुरादाबाद के स्टूडियो में। हाउ आर यू, कैसे हाल चाल है भाई आपके?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुलाकात हुई अच्छी रही।
0: जी जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा, ये पहली मुलाकात है। वो गाना याद आ गया मुझे, वो गाना जरूर सुनेंगे हम इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत स्वागत है, आज हमारे स्टेशन में आप आए हैं तो आपका खुली बाहों के साथ वेलकम करता है आपका प्यारा सा दोस्त आनंद। तो भाई पहले अपने बारे में बताओ यार, अपना नाम वाम बताओ मेरी जनता को जरा।
1: मेरा नाम मोहम्मद अजीम है, मैं उत्तर प्रदेश के छोटे जिले अमरोहा ग्राम इकोंदा से रहने वाला हूँ, जोया के पास पड़ता है।
0: अच्छा, मुरादाबाद की जनता जानती होगी शायद, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं मुरादाबाद से नहीं हूँ, बट अब तो मुरादाबाद बहुत अच्छे से मुझे भी जान गया और मैं भी जान गया हूँ मुरादाबाद को। तो अजीम ये बताओ कैसे लग रहा है ऑफिस में, आप आए हो पहली बार, आप रेडियो पे आए हो? उससे पहले कभी नहीं आए हो?
1: नहीं।
0: अच्छा,
1: बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे आपसे, खासकर बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका, लहजा।
0: भाई आपका लहजा और आपका कम्युनिकेशन भी अभी बहुत अच्छा होने वाला है, चिंता मत कर। मुझे भी अच्छा लग रहा है अजीम आपसे मिलके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। और ऑडियंस आज आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनाने वाला है लड़का यहाँ पर। अच्छा वैसे करते क्या हो, थोड़ा पहले अपने बारे में बताओ यार।
1: आनंद भाई मैंने अभी बीएससी कंप्लीट की है पीसीएम।
0: भाई लगता तो नहीं है यार, तेरी इससे देख के तो बड़ा छोटा सा बच्चा लग रहा है यार ये, मेरे को लग रहा था छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। क्या किया है, क्या किया?
1: बीएससी कंप्लीट,
0: बीएससी कर लिए भाई, मुझे मारो, बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे का क्या चल रहा है?
1: आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी 8-9 तारीख में मेरा पेपर भी है यूपी पुलिस का।
0: क्या बात है, अरे वाह, ऑल द बेस्ट यार भाई, ऑल द वे बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए और आपके एग्जाम के लिए। तो मतलब प्रिपरेशन करते करते आप जो है जो अभी यहाँ पर सुनाने पहुंचे हो, ये वाला टैलेंट कैसे आया?
1: ये बस लिखने का शौक पड़ गया था, लिखता था, लिखने लगा, आगे वो बढ़ता रहा, लोगों के ओपन माइक्स करने चालू करे, चीजें मिली, अच्छा लगा लिखने पर, लोगों को सुनाई अपने आसपास के लोगों को, उन्होंने कहा बढ़िया लिखता है यार, कहीं अच्छी जगह जा। फिर आपसे मुलाकात हुई एक ओपन माइक, वहां से इंट्रक्शन हुआ।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जो भाई के साथ में पहला कॉन्वर्सेशन था वो एक ओपन माइक में था। मैं एक्चुअली मुरादाबाद की जनता को भी ये चीज बताना चाहता हूँ गाइज, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जब भी मैं किसी ओपन माइक में जाता हूँ या किसी भी एक्टिविटी में जाता हूँ या फिर कोई भी सोशल प्रोग्राम्स में जाता हूँ जो आसपास में कराए जाते हैं, मेरा मकसद यही होता है कि वहां जाके कुछ अच्छे लोगों को ढूंढा जाए और उनको सही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। अगर उनके अंदर कोई स्किल है, कोई अच्छा टैलेंट है, जैसे अजीम में बहुत अच्छा टैलेंट है, मैंने इसीलिए अजीम से कोऑर्डिनेट किया, संपर्क किया और उसको स्टूडियो पकड़ के मैं ले आया। शायद उसने भी ये सोचा नहीं होगा, इमेजिन नहीं किया होगा, ये अनएक्सपेक्टेड होगा उसके लिए, क्यों भाई?
1: सही बात है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड।
0: हाँ अनएक्सपेक्टेड था, मैं समझ सकता हूँ भाई की आज जुबान भी लड़खड़ा रही है क्योंकि आज पहली बार वो स्टूडियो में आए, राइट? इसी वजह से। बट कोई बात नहीं यार, काम डाउन, एक काम करते हैं, एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं और उसके बाद आपके साथ जो है सिलसिला जारी रखेंगे, ठीक है? कौन सा गाना है जो तुम्हारा फेवरेट है जरा बताओ?
1: आनंद भाई मुझे जो गाना पसंद है वो है मैं शायर तो नहीं।
0: यार वो तो तू लग रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है, शायर तो ये है, इतनी बड़ी चिट्ठी लेकर आया, मतलब पूरी डायरी लेकर आया ये बंदा। यार गाना बहुत अच्छा है, मैं शायर तो नहीं मगर हसी, तुम्हें देखा तो शायरी आ गई। हम लोग इतने गा रहे हैं, आप रेडियो बंद मत करो, हम बिल्कुल नहीं गाने वाले, हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं है, सॉरी यार। फिलहाल अब अजीम ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है तो ये गाना जरूर सुनेंगे और आपको भी सुनाएंगे, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही खूबसूरत कलाकार ने शैलेंद्र सिंह ने इस गीत को गाया है। तो ये गीत सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, इस गाने के बाद जल्दी से वापस आएंगे और अजीम से कुछ बेहतरीन सुनेंगे, आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन। बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना नीलेंद्र जी की आवाज में। मैं शायर तो नहीं, लेकिन मेरे साथ जो बैठे हैं वो शायर है। मैं शायर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। हाँ भाई, शायर आपका स्वागत है। मोहम्मद अजीम, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद वंस अगेन एंड वेलकम टू आरजे आनंद के साथ ये जो कॉन्वर्सेशन वाला शो चल रहा है। फिलहाल ये बताओ, आप शायर हो या नहीं, ईमानदारी से बताना। है ना?
1: हाँ।
0: अरे बिल्कुल यार, मुझे पता है। चल फिर कुछ बढ़िया सा हो जाए यार, हमारे दोस्तों के लिए क्या सुनाओगे, सबसे पहले क्या पेश करोगे?
1: पेश मैं कहना चाहूंगा, सबको किसी न किसी से दुख होता है एक तरीके से। मोहब्बत होती है, इजहार होता है,
0: प्यार होता है,
1: टूट जाता है दिल, किसी न किसी तरीके से टूटता है।
0: बिल्कुल यार।
1: अब आपके पास एक लास्ट मौका ऐसा जरूर आता है जब वो सामने वाला पर्सन कहता है कि मेरी यादें सारी मिटा दो, फोटो मिटा दो। आप ब्लैकमेल तो नहीं करोगे मुझे मेरे फोटो से? आप फोटो भी डिलीट कर देते हो, सब डिलीट कर देते हो, बसता क्या है आपके पास? यादें, दुख।
0: करेक्ट।
1: तो आप उस दुख पे उससे क्या कहना चाहोगे, आप किसी से अपने आप से कहना चाहोगे? तो शायरी अंदाज में, दुख पर जोर चलता भी तो कैसे मेरा, दिया जो उसने था। दुख पर जोर चलता भी तो कैसे मेरा, दिया जो उसने था। ना चला पाया मैं जोर उस पर, आखिर ये दुख भी तो उसी का दिया था। आखिर ये दुख भी तो उसी का दिया था। और वैसे भी मेरे पास इसके अलावा है ही क्या, मेरे पास इसके अलावा है ही क्या। ये दुखी है जिसने मुझे जिंदा रहने पर मजबूर किया है, ये दुखी है जिसने मुझे जिंदा रहने पर मजबूर किया है। ये भी चला गया तो उसकी याद कौन दिलाएगा। अब यही है। थैंक यू सो मच।
0: क्या बात है यार अजीम, बहुत अच्छा आपने बोला, उसकी याद कौन दिलाएगा। और जब जो इंसान चला जाता है, कहते हैं ना कुछ होना हो उसकी यादें जरूर हमारे साथ होती हैं। आप सब कुछ बुला सकते हो लेकिन यादें कभी नहीं बुला सकते। कहते हैं ना, लोग कहते तो हैं अरे यार समय के साथ सब बदल जाते हैं, लेकिन यादें कभी नहीं बदलती यार,
1: कभी नहीं,
0: है ना। इंसान की जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन जो यादें हैं ना वो कभी, बस सिर्फ जो साथ में बिताई है वो मेमोरी जो है वो कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन वो लौट के सिर्फ यादें आ सकती हैं।
1: बस
0: करेक्ट। तो बहुत ही अच्छा अजीम ने सुनाया, और आई होप जनता आपको इनकी जो आवाज है वो पसंद आ रही होगी। मुझे तो बहुत आ रही है यार, आई लाइक इट योर वॉइस ब्रो। लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि तेरी आवाज भी बहुत अच्छी है, वॉइस अच्छी है, क्वालिटी बढ़िया है। चलो इसी बात पे कुछ और बढ़िया था, आपने आते ही दिल तोड़ने वाली बात कर दी। मेरा तो टूटा ही नहीं है खैर अभी तक, और टूटना भी नहीं चाहिए वैसे तो। वेल कुछ बढ़िया सी कुछ और कुछ शेरो शायरी बढ़िया कुछ कुछ आप दोस्ती के ऊपर सुना सकते हो, प्यार के ऊपर तो आप सुना ही रहे हो। आज हम भी मिले हैं तो हम भी दोस्ती हैं, वी आर फ्रेंड ब्रो। तो कुछ
1: क्यों नहीं दोस्ती के ऊपर।
0: हाँ श्योर यार, एक बढ़िया सी,
1: जस्ट इमेजिन आप मुझे मिले हो। हाँ, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा तो मोहब्बत इसमें भी आई है।
0: अरे यार, तो ये मोहब्बत वाली तो मोहब्बत वाली पे चिपते भाई।
1: बताता हूँ ना, बताता हूँ, सुनो अगर पसंद नहीं आए तो।
0: अरे नहीं, बिल्कुल आएगी भाई, बिल्कुल।
1: मोहब्बत चली गई तो क्या हुआ, कुछ दोस्तों को तो पा लिया। मोहब्बत चली गई तो क्या हुआ,
0: कुछ दोस्तों को तो पा लिया।
1: उसे पा ना सके तो क्या हुआ, दोस्तों को तो पा लिया।
0: क्या
1: तेरे साथ चाहता था प्यार से खाना खाना,
0: तेरे साथ चाहता था प्यार से खाना खाना,
1: तू ना सही दोस्तों के साथ खा लिया।
0: ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, क्या बात है। अजीम तुझे क्या लगता है, मतलब आज के जमाने के लड़के हैं हम भी, आजकल दोस्ती में वो प्योरिटी रह गई है क्या, जो शुद्धता एक पहले के लोगों में होती थी एक दूसरे के लिए? हाँ भाई, हम खड़े हैं हमेशा आपके साथ में, आपके सुख दुख में। आजकल दोस्ती में वो चीज है या सिर्फ सेल्फिशनेस ज्यादा हुई है कि जब तक हमारा काम है तब तक दोस्ती है? इस चीज पे तुम क्या मानते हो, दोस्ती सच में है? दोस्ती में तवज्जो है आज भी वो? कुछ
1: कह सकते हैं,
0: कुछ कुछ है,
1: कह सकते हैं,
0: पर वो कुछ कुछ वाले नहीं, हर किसी को नहीं टकराते ना यार।
1: हाँ, हर किसी को नहीं टकराते,
0: है ना। मजे की बात ये भी है।
1: हाँ।
0: और आजकल समय ऐसा हो गया कि किसी से दोस्ती करने से पहले बड़ा सोचना पड़ता है यार,
1: बहुत ज्यादा।
0: वैसे तो हर कोई आपके लिए दोस्ती है, जब आप अच्छा काम करते हो तो आपको हर कोई दोस्त बना लेता है,
1: बनाना चाहता
0: है ना, हर कोई बनाना भी चाहता है, लेकिन हम किस पे ट्रस्ट करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
1: कर नहीं कर सकते किसी पे ट्रस्ट, इस टाइम नहीं कर सकते,
0: है ना।
1: आप जस्ट इमेजिन, हर कोई मैं हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं हर किसी के काम आता हूँ। आरजे भाई, जैसे कि आपने मुझे कल भी बताया था, मैं कल अपने दोस्तों के लिए बहुत बहुत दूर चले जाता हूँ, बट मैंने अगर कुछ भी मांगा उनसे, कुछ भी रिक्वेस्ट की, वो नहीं सुनते। कहने का मतलब है दोस्त भी,
0: मतलब तुम इसे कह सकते हैं कि तुम्हारी तरफ से अच्छा वन साइड वाला फ्रेंडशिप रहता है, पक्का वाला, बट सामने से तुम्हें वो एक्सपेक्टेशन नहीं मिलती है बदले में, है ना, जो तुम एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन जब ये चीज नहीं होती है तो कभी कभी लगता है फिर किस काम की फ्रेंडशिप,
1: फ्रेंड हो जाते हैं वो, वही होता है कि
0: फिर धीरे धीरे वो चीजें मतलब उस तरफ आने लगती है कि जो आप सोचते भी नहीं हो, और वहीं से चीजें खराब होती है यार। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुमने कहा 20% भी आज के समय में ऐसे लोग हैं जो दोस्ती अच्छी निभाते हैं, लेकिन वो अच्छे लोगों को ढूंढना भी हर किसी बस की बात नहीं है बॉस।
1: 100 में से 80% को खत्म करके 20% को ढूंढना तो मुश्किल हो जाता है,
0: बहुत मुश्किल हो, स्पेशली सोशल मीडिया के जमाने में तो खास कर यार, है ना। वेल इसी पे कुछ और सुनाना चाहोगे अजीम हमारे लिसनर्स को?
1: हाँ, अब आपकी मोहब्बत होगी, हाँ, कोई ना कोई तो,
0: हाँ,
1: अब आपकी उसमें कहते हैं ना, मोहब्बत कहती है मेरी स्माइल पे तारीफ करो ना, तो उसपे मैंने शायरी लिखी थी उसकी मुस्कुराहट पे।
0: अच्छा, मेरी स्माइल पे तारीफ करो ना।
1: हाँ, क्यों नहीं, हंसते लोग बहुत देखे।
0: हाँ भाई, हाँ भाई,
1: हंसते लोग बहुत देखे, ना देखी उस जैसी हंसी,
0: क्या बात है,
1: हंसते लोग बहुत देखे ना देखी हो जैसी हंसी, खूबसूरत तो वो बहुत है पर उससे ज्यादा खूबसूरत है उसकी हंसी, वो आंखें वो लब वो उसके कान का झुमका।
0: वाह,
1: वो आंखें वो लब वो उसके कान का झुमका है बहुत हंसी पर उससे ज्यादा खूबसूरत है वो उसकी हंसी। अब तो जलन होने लगी है मुझे उसके लबों से भी, अब जलन होने लगी है मुझे उसके लबों से भी, आखिर वही तो उसको हंसने के बाद दोबारा चूमते हैं। थैंक यू सो मच।
0: क्या बात है यार, वेरी वेरी अमेजिंग यार। ये जो शायर के अंदर का ब्लड प्रेशर बाहर आता है लास्ट में जाते जाते, ये क्यों होता है? ये मेरे को समझ नहीं आता कि शुरू से तो इनकी रफ्तार बड़ी धीरे होती है और जाते जाते मतलब पूरा हाँ बस मैं ही हूँ सबसे बड़ी मोहब्बत का शायराना, मतलब एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है यार। जैसे अभी तुम्हारा देखा मैंने, ये कोई इसके पीछे कोई खास रीजन है, ये शायरी का मजा बन जाता है।
1: शायरी का मजा बन जाता है। अब जस्ट इमेजिन में ये सी कहने लगता, अब तो जलन होने लगी है मुझे उसके।
0: भाई मत कर यार, मेरे को नींद आ जाएगी, बहुत सारा खेलना है। तो गाइज ये जो अमेजिंग सी कॉन्वर्सेशन ही आप ऐसे ही सुनते रहेंगे, एंड मोहम्मद अजीम मेरे साथ मौजूद है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं मैं तो भूल ही जाऊंगा, बड़ा लंबा चौड़ा नाम इस एरिया का। अमरोहा तुम्हारा मुरादाबाद 89.6। ये हंसी की बातें कर रहा था, इश्क मोहब्बत की बातें कर रहा था। एक गाना है हसमत पगली प्यार हो जाएगा, सुना है? सुनो, आपकी आवाज है, बहुत प्यारा गाना है। उसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, आपके हिम्मत जाइए सुंदरी आनंद को।

0: बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया गाते हैं। इतनी अच्छी राइटिंग होने के बाद कभी ख्याल नहीं आया बॉलीवुड में जाके ट्राई करूँ यार?
1: नहीं, बहुत ट्राई आता है, मन करता है साउथ में जाऊं।
0: साउथ में आई हो जी, साउथ लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है, मैं बिल्कुल अच्छा मानता। लेकिन तुम साउथ में क्यों जाना चाहता जी, तुम्हारा हिंदी इतना अच्छा?
1: क्योंकि मुझे विलन्स रोल बहुत पसंद है।
0: विलन्स? अयो माँ, मेरे को बाहर निकालो, तुम निकालो बाहर, मेरे को विलन लोग से बहुत डर लगता भाई। सो यार देखो, ये थी जोक्स पार्ट, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अजीम वंस अगेन वेलकम है यार, गाना तो अच्छे अच्छे जो है आज सुन ही रहे हैं आप अजीम और मैं भी इंजॉय कर रहे हैं। तो अब अभी क्या तुम सुनाना चाहोगे? लेकिन इससे पहले एक बात कहूंगा यार अजीम, आजकल ना सोशल मीडिया का वाला प्यार बड़ा अलग ही है। मतलब एक होता है कि एक प्यार होता था यार, जब इंसान बिना देखे ही प्यार करता था उसकी आवाज से, उसको इमेजिन करता था। आजकल क्या होता है ना, प्यार बाद में होता है, पहले लोग देखना पसंद करते हैं कि पहले पिक्चर भेजो, मैं देखना चाहता हूँ पहले दिखते कैसे हो। एग्जैक्टली, तो ऐसा लगता है कि प्यार उसके दिल से नहीं, उसकी खूबसूरती से हो रहा है एक्चुअली, जबकि प्यार दिल से होना चाहिए है ना। और जो दिल से प्यार होगा ना, उसमें इमोशंस होगा, फीलिंग्स होंगी। देखो यार, मैंने प्यार व्यार तो कभी किया नहीं है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट जितना मैं देखता हूँ लोगों को, मिलता हूँ, कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल है ऐसे जो एक्चुअली आज भी अपनी मोहब्बत के लिए रोते हैं, तो तब मुझे लगता है कि यार आज की दुनिया में 2026 में ऐसा भी प्यार है कि लोग इतना एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, और जो ये तड़प है ना, जो बेकरारी, वही इश्क है, है ना। और कुछ इश्क ऐसा भी है कि अभी हुआ, जिसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन, इट्स नॉट लव, इट्स अट्रैक्शन, है ना। तो एक वो हो गया, लेकिन यार मैं वही कह रहा था कि दोनों प्यार अलग अलग है, लेकिन सोशल मीडिया वाला प्यार ऐसा है कि अभी प्यार हुआ, उसके थोड़ी देर के बाद ब्लॉक भी हो गया, है ना। तो इस प्यार में और पहले के प्यार में तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इन प्यार के ऊपर तुम्हारे पास कुछ है बढ़िया सा, जो आज के जमाने का प्यार है स्पेशली, इस पे क्या कहना चाहोगे?
1: बहुत अच्छी शायरी है मेरे पास इसमें। जैसे होता है ना कि आप रंग रूप के लिए तो कर रहे हैं,
0: हाँ भाई,
1: लेकिन आप अपनी मोहब्बत से, वो तो आपके उसके पीछे हजार पागल है,
0: करेक्ट,
1: ठीक है ना, आपके पीछे पागल है, ओके, बट आप उससे आखिर बार क्या कहते हो जब आपके छोड़ के जाती हो? मेरे जैसी मोहब्बत किसी और से पालो तो बता देना, मेरे जैसा हक जताने वाला मिल जाए
0: तो बता देना,
1: यूं तो हजार हैं तुमसे मोहब्बत जताने वाले, यूं तो हजार हैं तुमसे मोहब्बत जताने वाले, हमसा मोहब्बत करने वाला मिल जाए तो बता देना।
0: क्या बात है यार,
1: सो मच,
0: वंडरफुल यार, हर बार पे थैंक यू बोलेगा तो मैं बाहर भाग जाऊंगा, फिर तुम इंटरव्यू कर लेना। खैर मजा आ रहा है, हर बात में थैंक यू बोलोगे तो मजा नहीं आएगा ब्रो, लेकिन यार थैंक्स अ लॉट, दिल से बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी नाइस, एंड आई एम श्योर आपको भी पसंद आ रहा होगा गाइस। और मोहब्बत के ऊपर तो यार बहुत सारी ना, प्यार के अंदर बहुत सारी चीजें चलती हैं, कभी कभी प्यार में ना भरोसा भी बहुत जरूरी होता है, कभी कभी नहीं, हमेशा ट्रस्ट होना चाहिए प्यार में, है ना। लेकिन आजकल के प्यार में ट्रस्ट कम हो गया है यार, आजकल प्यार में ना ट्रस्ट में देखता हूँ बहुत कम है, लोगों को अपने पार्टनर पे बिलीव ही नहीं है, वो थोड़ा सा भी बाहर जा रही है तो उन्हें डाउट्स हो जा रहा है, अब फ्रेंड्स किससे बात कर रही हूँ, कहाँ बात कर रही हूँ, कितनी देर कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ये सब चीजें जो चलती है ना कहीं, ये प्यार को कमजोर भी बनाती है,
1: सही बात
0: है ना। तो इसके ऊपर कुछ कहना चाहो?
1: ये है, देखो डाउट भी वही करता है अगर देखा जाए तो,
0: जो प्यार मोहब्बत करता है, प्यार करता है,
1: अगर उसे मोहब्बत नहीं है तो वो,
0: ये बात मैं समझता हूँ, आई एग्री विद यू यार, मैं 100% बिलीव करता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा कभी कभी ये चीज करना भी ना सामने वाले को प्रॉब्लम में डाल देता है, है ना,
1: परेशान भी नहीं करना चाहिए सामने।
0: गॉट इट, अच्छी बात है, हम किसी की केयर कर रहे हैं, उसके बारे में जानने का हमारा राइट है, हमारा हक है, है ना। लेकिन अभी मेरा हक है कि इस पे तुम मुझे कुछ सुनाओ, कुछ बेहतरीन सी लाइनें बोलो, कुछ अच्छा सा क्या लिखा है तुमने
1: इस पे, तो एक ही चीज कह सकता हूँ मैं, जैसे मोहब्बत चली गई, बिछड़ गया, अब मतलब जैसे होता है ना, प्यार होती है आपके पास तो आप रोशनी में रहते हैं एक तरीके से 24 घंटे,
0: करेक्ट यार, बिल्कुल बिल्कुल,
1: आपको हर चीज अच्छी अच्छी लगने लगती है,
0: करेक्ट यार।
1: लेकिन उसके बाद क्या कहते थे आप, उसके बाद क्या कहोगे, कभी चमकता था कभी काता था अपने चारों ओर ये रोशनी का घेरा, कभी चमकता था कभी चमकाता था अपने चारों ओर ये रोशनी का घेरा, तू क्या बिछड़ा यार मुझसे, तू क्या बिछड़ा यार मुझसे, अब बाहर की तो बाहर बात छोड़, मेरे यार मेरे अंदर ही है तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, तेरे बाद ना रोशनी रही ना रोशनी का घेरा, तेरे बाद ना रोशनी रही ना रोशनी का घेरा, तेरे बाद बचा है तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा।
0: क्या बात है यार, क्या बात है, वाह जी वाह, सिर्फ बचा है अंधेरा ही अंधेरा, कल बिजली चली जाए अंधेरा ही अंधेरा हो। खैर मैं इनके कॉन्वर्सेशन को बिल्कुल खराब नहीं करूंगा, बहुत अच्छा इन्होंने बोला। अच्छा यार, जब नया नया प्यार होता है ना अजीम, तो लोगों के अंदर ना कि बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बड़ी अच्छी चमक होती है बंदे के अंदर, उस पार्टनर के अंदर, दोनों बड़े खुश होते हैं, नया नया जब प्यार होता है एक दूसरे का वेट करते हैं, मिलते हैं, तो जब नया नया किसी का हमारी लाइफ में किसी की एंट्री होती है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे, नया नया प्यार एक दूसरे से, जब अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है,
1: तब तो मोहब्बत होती है, लड़का हर तरीके से शायरी अंदाज में भी तारीफ ही करता है।
0: हाँ, तो वही तारीफ हम सुनना चाह रहे हैं हुजूर।
1: तो तारीफ है उसके बालों की।
0: अरे वाह,
1: अब जैसे लड़की की बाल है, आपको आप मिलते भी हो तो उसके बाल होते हैं ना, भीगे भीगे बाल होते हैं, बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, उस पर मैंने एक शायरी लिखी है, तारीफ करूं मैं उसकी, लेकिन

0: कैसे, क्योंकि उसकी तो हर एक चीज कमाल है।
1: क्या बात है,
0: तारीफ करूं मैं उसकी, लेकिन करूं कैसे, क्योंकि उसकी तो हर एक चीज कमाल है, लेकिन उन सब में से जो मुझे पसंद है उसके भीगे बाल हैं, गाल भी अच्छे हैं, पर कसम से यार लाजवाब उसकी चाल है, उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें, उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें, जी करता है मैं उनमें डूबा ही रहूं, लेकिन ये बात मैं उससे कैसे कहूं, ये बात मैं उससे कैसे कहूं, क्योंकि वो है इतनी कमाल है, उसकी उसकी तारीफ में तो मैं पूरी किताबें लिख दूं, उसकी तारीफ में तो मैं किताबें लिख दूं, क्योंकि वो है ही इतनी कमाल है, लेकिन यार मुझे जो उसमें सबसे ज्यादा पसंद
1: उसके है उसके भीगे बाल है। जी हाँ, क्या बात है, कहूंगा मम्मी से बेटे, समझ गया।
0: अम्मी से नहीं
1: कहना। अरे नहीं नहीं, इससे जोक से पा रहे। एनीवे, ये तुमने खुद ने लिखा है ब्रो?
0: हाँ, मैंने खुद ने लिखा।
1: क्या बात है, मतलब दिल की कलम से जो बात निकलती है उसे कहते हैं सच्ची होती है भाई वो, तो मतलब बता दे मुझे किसके भीगे बाल
0: है। कोई बहुत पसंद है लेकिन अब वो किसी और की पसंद है, मैं कैसे बता सकता हूं
1: भाई मुझे। अच्छा ये यार हर किसी के साथ होता है। और अच्छा एक चीज और है यार अजीम, कहते हैं कि असली और सच्ची मोहब्बत वही होती है जो तुम्हें ना मिले, जो प्यार तुम्हारा मुकम्मल ना हो सच्चा होता है, ऐसा मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है यार। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, मतलब कुछ लोग कहते हैं अगर आप जिससे प्यार करो वो आपके साथ मिल जाए तो पूरी जिंदगी खुशनुमा हो जाती है, बट कुछ लोग कहते हैं जिनको नहीं मिलता वो कहते हैं कि सच्चा प्यार ना मिले वही तो असली प्यार है,
0: मोहब्बत ही वही जो
1: बहुत वही तो मोहब्बत है जो प्यार मुकम्मल ना हो, है ना। तो इस पे क्या सुनाना चाहोगे हमारी मुरादाबाद की जनता को, कुछ है कुछ बढ़िया सा इसमें? कोई इंसान है जिसका प्यार उसे नहीं मिला है बट वो अपने आप को खुश रखने के लिए कह रहा है कि यार नहीं, यही तो असली प्यार है, यही तो प्यार, जो प्यार मुकम्मल ना हो वही तो मोहब्बत है, जिसकी याद हमें जिंदगी भर रहे, जिसकी यादों में हम जिंदगी भर रहे हैं, तो प्यार है।
0: अच्छा मेरे पास इस पे एक है बढ़िया शायरी। हाँ, लेकिन वो ऐसे है जैसे आपकी मोहब्बत की शादी भी तो हो जाती है ना।
1: हाँ यार,
0: दूसरी की हो गई वो,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन एक वो जो खुश है या दुखी है लड़की सामने वाली, आपकी मोहब्बत है, लड़का है लड़की जो भी है, तो आप उस लड़की की स्टोरी देखने के बाद कैसे बताओगे कि वो खुश है, जबकि उसने सिर्फ पैर और पायल की फोटो लगा रखी है।
1: करेक्ट।
0: उस पे मैंने लिखी है शायरी। शादी हो गई थी उसकी 12/6/2025 को थी, देखा था मैंने उसका स्टेटस, ब्लॉक नहीं किया, शायद जलाना चाहती थी, इस 12 तारीख को उसकी एनिवर्सरी भी है, देख रहे हो मोहब्बत की एनिवर्सरी आने वाली है, तब मैंने उस पर लिखा था, वो उसके पैरों पर लगी मेहंदी, वो उसके पैरों में बंधी पायल, वो उसके पैरों में लगी मेहंदी, वो उसके पैरों में बंधी पायल, उसको देखकर खुश था दुखी था मैं शायद घायल, उसको देखकर खुश था दुखी था मैं शायद घायल, यार वो कितनी खुश थी, यार वो कितनी खुश थी, देखकर पता चलता है उसकी मेहंदी का रंग, और वो उसके पैरों में बंधी पायल, उसके पैरों में बंधी पायल।
1: क्या बात है, क्या बात है यार, बहुत बहुत बढ़िया, तुमने पूरा ओपन माइक ही खोल दिया यार मेरे स्टूडियो में आज, मतलब सच में बहुत मजा आ रहा है। एंड अजीम आई होप तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा यार, अपने दिल की बात आप तमाम लोगों तक पहुंचा रहे हो आज, और ये जो लड़का डायरी लेकर आया ना इसमें बहुत सारी भरी पड़ी है इसके दिल की बात, आज मैं सारी सुनूंगा। तो दोस्तों आप कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड रहिए, एंड अभी एक गाना सुन लेते हैं कोई बढ़िया सा। इतनी सारी भीगे भीगे बालों की बातें कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो कुछ ऐसे ही तड़कता भड़कता सा गाना होना चाहिए क्या अजीम?
0: क्यों नहीं,
1: कोई गाना है तेरे दिमाग में अभी जो तू सुनना चाह रहे हो या सुना?
0: भीगे भीगे बालों पे एक गाना भी है यार,
1: बट वो मुझे याद नहीं आ रहा
0: है।
1: यही तो प्रॉब्लम है कि जब हम कोई एक्चुअल में चीज को याद करते हैं ना उसी टाइम गायब होती है, वैसे हमारे जहन में घूमती रहती
0: है
1: ना,
0: लेकिन अभी मेरे मन में आ रहा है लेकिन वो
1: दिमाग में नहीं, जुबान पे नहीं आ पा रहा है। भाई काम कर, तू अपना गाना याद कर, जब लौट कर आएंगे तो फिर तेरी पसंद का गाना सुनेंगे, फिलहाल तू एक मेरी पसंद का गाना सुन। दोस्तों आप भी सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो, अजीम के साथ आप ढेर सारी बातें सुन रहे हैं, उसके दिल की शायरी सुन रहे हैं, और साथ में आनंद भी आपका साथ दे रहा है, तो स्टे ट्यून्ड रहिए, एक बढ़िया गाना सुन के जल्दी लौट।

0: जिससे मोहब्बत होती है लोग अक्सर उसे चांद कहते हैं ना आरजू भाई।
1: बिल्कुल यार, सही कहा आपने। मेरा नाम आनंद है यार वैसे।
0: आरजे भाई
1: भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आनंद बोलोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। आनंद नहीं आ रहा क्या?
0: आनंद बहुत ज्यादा आपके साथ तो आनंद आ रहा, तभी
1: इसलिए
0: तो
1: मैंने ये नाम रखा है यार। नहीं आएगा तो भी आनंद बोल के जाएगा।
0: बहुत खूबसूरत नाम है आपका।
1: चलिए
0: इससे ज्यादा खूबसूरत आपका नाम है।
1: क्या बात है। तो एक काम करते हैं, इसी खूबसूरती के साथ अब इसमें चांद को ऐड कर देते हैं। तुम अभी कुछ बोल रहे थे चांद के बारे में।
0: जैसे जिससे मोहब्बत होती है लोग अक्सर उसे चांद कहते हैं।
1: हाँ।
0: उस पे मैंने शायरी लिखी है
1: जी।
0: जिससे मोहब्बत होती है लोग अक्सर उसे चांद कहते हैं, तुझसे मुझे मोहब्बत है पर मैं तुझे चांद नहीं कहूंगा।
1: क्या बात
0: पूछती है क्यों?
1: अरे
0: पगली, मुझे ये भी पसंद नहीं तू मेरे से एक इंच भी दूर रहे, चांद तो मेरे से 384,400 किलोमीटर दूर है। फिर मैं तुझे चांद क्यों कहूं? फिर मैं तुझे चांद क्यों कहूं? अगर तू चाहती है मैं तुझे कुछ कहूं तो मैं तुझे अपनी रूह कहूंगा। पूछती है क्यों? पूछती है क्यों? अरे पगली, वो मेरे मरने पर ही मेरे जिस्म से अलग होगी, मेरे जिस्म से अलग होगी। थैंक यू।
1: क्या बात है यार, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। बड़ी गहराइयों के साथ लिखते हो भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्सर आधी रात में बैठ के लिखते हो क्या?
0: नहीं।
1: मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग रात में ज्यादा लिखते हैं जो शायर होते हैं, ऐसा सुना है मैंने।
0: हाँ, रात को माइंड फ्रेश रहता है, यही बात आती है।
1: और ज्यादातर जो है आदमी की क्रिएटिविटी रात को ही निकलती है,
0: ज्यादा जागती है।
1: करेक्ट। बहुत अच्छा लगा अजीम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, योर शायरी, जो भी आपने आज श्रोताओं तक पहुंचाया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। एंड जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पहले तो आपको कैसा लगा यहाँ पर अपने दिल की बात कहकर मेरे लिसनर्स से?
0: बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा। थैंक्स फॉर यू। नो, आप मुझे थैंक यू कह रहे हैं, मुझे आपको थैंक यू कहने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनर्स, आपने मुझे सुना। अगर मैं पसंद आता हूँ तो आपका बहुत शुक्रिया। अरे अगर कहीं गलती है तो मुझे बताएं आप।
1: बिल्कुल, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपकी बहुत सारी गलतियां हैं, मैं जल्दी चिट्ठी भेजूंगा आपको सारी गलतियों की। ये अजीम जी हमारे साथ थे आज स्टूडियो में, जिन्होंने बहुत सारी शेर व शायरी साथ करी। और जाते जाते एक शब्द तमाम लोगों के लिए आप पेश करना चाहते हो, जिसमें हर कोई शामिल हो, हर कोई इंक्लूड हो, कुछ ऐसी शायरी जो आप कहना चाहते हो, या किसी को किसी की मोहब्बत की याद आ रही है तो उसके लिए आप क्या कहोगे जाते जाते?
0: हाँ हाँ, है ना। हद तो ये है मैं तुझे बेपनाह बेवजह चाहता रहा।
1: क्या बात है।
0: हद तो ये है मैं तुझे बेपनाह बेवजह चाहता रहा, तूने किसी और को चाहा ये भी एक हद ही थी। तूने किसी और चाहा ये भी एक हद ही थी, अब हद ये है कि मैं मर जाऊं पर तेरे अलावा किसी और को न चाहूं। अब हद है ये है कि मैं मर जाऊं पर तेरे अलावा किसी और को न चाहूं। तेरी जगह कितनों ने मांगी, तेरी जगह कितनों ने मांगी, पर अब हद ये है कि तू नहीं तो कोई हक नहीं।
1: क्या बात है। थैंक यू सो मच अजीम, आप आए, लवली टॉकिंग टू यू मेरे भाई। एंड आई एम रियली श्योर जितने लोगों ने भी सुना होगा उनको भी बहुत मजा आया होगा इस शेर व शायरी वाले प्रोग्राम में। एंड आई होप आप नेक्स्ट टाइम जल्दी आएंगे और हमारे साथ फिर से एक बढ़िया कॉन्वर्सेशन करेंगे।
0: पक्का।
1: राइट, और कुछ बढ़िया सुनाने आएंगे।
0: पक्का
1: ना। और गाइज, आपका भी दिल से शुक्रिया कि आप इतनी मोहब्बत के और इतनी शिद्दत के साथ सुनते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अजीम, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके एग्जाम्स जो आप देने वाले हो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके फ्यूचर के लिए ऑल द वे बेस्ट। एंड आई होप आप ऐसे ही रॉक मचाते रहो, और जो ये लिखने का सिलसिला है, जो लोगों तक अपनी बात रखने का सिलसिला है, जो आप अपने शेर व शायरी के माध्यम से रखते हैं, ये भी आप कंटिन्यू रखें, करते रहें। हमारा प्यार और जो सहयोग है वो हमेशा आपके लिए।
0: थैंक यू सो मच।
1: और जितना हमें लगेगा कि यार ये बंदे को और पकड़ पकड़ के बुलाना चाहिए स्टूडियो में अपने लिसनर्स के लिए, तो हम तुम्हें परेशान करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे।
0: पक्का, मैं तो चाहता हूँ आप मुझे परेशान करें।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो गाइज, मैं इसको परेशान करके आता हूँ, आपसे लेता हूँ जाने की इजाजत, फिर होगी मेरी आपकी मुलाकात वेरी वेरी सून। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। बहुत सारी बातें हो गई यार, आई कांट बिलीव दिस कि कितनी जल्दी इतना सारा टाइम हो गया है। फिलहाल कुछ अच्छे गाने छोड़ के जा रहा हूँ, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। टाटा बाय, ख्याल रखिए अपना। बाय बाय अजीम,
0: बाय बाय, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू, बाय बाय।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर्नी और समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका कम्युनिटी रेडियो और मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या पर जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना, क्या ये सिर्फ काम की वजह से है या फिर एनीमिया के संकेत हैं? इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर शालू गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। नमस्कार श्रोता और नमस्कार सुजाता जी।
0: मैम, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि एनीमिया क्या होता है और ये कितना आम हो गया है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया अपने कम्युनिटी रेडियो के तहत, जिससे कि मैं लोगों को इस बारे में कुछ बता सकूं। अगर आप एनीमिया का मतलब सरल शब्दों में चाहें तो यह है शरीर में खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जिसका काम होता है कि ऑक्सीजन को खून के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाए। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। और आयरन की कमी की वजह से और कई कारणों की वजह से इस हीमोग्लोबिन की मात्रा में जब कमी होती है, उसे एनीमिया हम कहते हैं। थोड़ा बदलाव खाने में अब आने लगा है, लोग जंक फूड खाने लगे हैं, जिससे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, ये सब नहीं मिलते हैं। इन वजहों से भी शरीर में खून कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा साफ सफाई की कमी, पेट में कीड़े होना, महिलाओं में पीरियड्स अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी कारण ये बन सकता है।
0: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बताएं कि एनीमिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आम लोग इसे शुरुआती स्तर पर कैसे पहचान सकते हैं?
1: ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं एनीमिया के कुछ लक्षणों को इग्नोर करती हैं, उन्हें नजरअंदाज करती है ये सोच के कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि इंसान जल्दी जल्दी थक जाता है, चक्कर आने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, सांस भी फूल सकती है, चेहरे पे, होंठ पे पीलापन आ जाता है, शरीर पे सूजन आ सकती है, बालों का झड़ना भी हो सकता है। इसकी वजह से लोगों को लगता है और स्पेशली महिलाओं को ये लगता है कि क्या ऐसी खास बात है, शायद ज्यादा काम कर लिया इस वजह से ये परेशानी हमें हो रही है। लेकिन अगर ये सब चीजें कंटिन्यूअस निरंतर बनी रहे तो ये जरूरत है जानने की कि ये किस कारण से हो रहा है, कहीं हमें खून की कमी तो नहीं हो रही है। ऐसे में कमजोरी बार बार महसूस होने पे, सीढ़ियां अगर थोड़ी सी चढ़ने पे सांस फूलने लगे, या निरंतर थोड़ा स्पीड में चलने में अगर सांस फूलने लगे, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने खून की जांच जरूर से करवानी चाहिए।
0: अच्छा, क्या एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है या इसके और भी कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, ज्यादातर एनीमिया आयरन की कमी से होता है, भारतवर्ष में भी और उत्तर प्रदेश के राज्य में भी ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है, इसके और भी बहुत कारण होते हैं। हम आयरन की कमी, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, जंक फूड जब ज्यादा खाया जाता है, जब पोषण संबंधी कारण हो सकता है और गैर पोषण संबंधी कारण भी हो सकता है। अगर हम पोषण संबंधी कारणों की बात करें तो आयरन के साथ साथ कभी कभी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसे हम कहते हैं। और गैर पोषण संबंधी कारणों में, जैसे अगर ज्यादा खून बढ़ना, जैसे मैंने बताया ना कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अगर बहुत ज्यादा पीरियड्स आए, किशोरियों को अगर ब्लीडिंग ज्यादा आने की समस्या हो, इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, अचानक शरीर में खून की कमी हो जाती है, तथा कुछ बीमारियां जैसे मलेरिया, जो शायद लोगों को इतना नहीं पता है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कई तरह के इन्फेक्शंस और किडनी की बीमारी और कैंसर, इन सब में भी एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। लेकिन मैंने जैसा अभी आपको बताया, मुख्यतः भारत में और उत्तर प्रदेश में आयरन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है।
0: क्या ये सिर्फ एनीमिया महिलाओं तक सीमित है या पुरुष और बच्चे भी इससे प्रभावित हैं?
1: ये एक बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जैसा देखते हैं महिलाओं में ही ये सीमित नहीं है, जान के आपको हैरानी होगी कि बच्चों में, पुरुषों में, बुजुर्गों में ये किसी भी एज को नहीं छोड़ता है, सब में ये बीमारी हो सकती है। हालांकि महिलाओं में ये थोड़ी ज्यादा होती है, किशोरियों में ज्यादा होती है, कारण बच्चों में ज्यादा होती है। कारण ये है कि खान पान की कमी और अपने ऊपर थोड़ा लापरवाही करना या पौष्टिक तत्व ना लेना। महिलाओं में आप जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, इन सब में संभावना अधिक होती है। बच्चों में क्योंकि उनके शरीर को अधिक पोषण चाहिए, आयरन विटामिन की जरूरत उनके शरीर को ज्यादा होती है जब ये ग्रोइंग फेज होती है। और इसके अलावा गलत खान पान की आदतें, जैसे बच्चे आजकल जंक फूड्स बहुत खाते हैं, बार बार पेट में कीड़े हो जाने, जैसे वर्म इन्फेस्टेशन अगर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसलिए हर एज में और हर सेक्स में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा।
0: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बता दें कि हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए और कब इसे खतरनाक माना जाता है।
1: WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनमें नॉर्मल जो हम हीमोग्लोबिन का लेवल लेते हैं वो है 12 ग्राम या उसके अधिक, पुरुषों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक, लेकिन गर्भवती महिलाओं में अगर 11 ग्राम डेसीलीटर या उससे अधिक होता है तभी हम उसे नॉर्मल मानते हैं। 11 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन होता है तो हमें उसे फिर एनीमिक कैटेगराइज करते हैं। ये कैटेगरी एनीमिया की माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है।
0: तो किन स्थिति में हम जानेंगे कि ये सीवियर एनीमिया है?
1: अगर 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो ये सीवियर है, ये खतरनाक है और ये जानलेवा भी हो सकता है।
0: क्या मोटे लोगों को एनीमिया नहीं होता?
1: बिल्कुल हो सकता है। मोटापे का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पोषण आपको मिल रहा है, ओवर ईटिंग अगर आप कर रहे हैं या हिडन हंगर जैसी, अगर जैसे कुपोषण, मतलब जिसे कहते हैं ना, मोटापा इज अ काइंड ऑफ कुपोषण, ये एक नॉर्मल चीज नहीं है। और मोटे लोगों को कई बार वो तला भुना जंक फूड ज्यादा खाते हैं, वो पोषण और जो कि जरूरी पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो नहीं खाते हैं। बेसिकली एनीमिया हमारा आयरन की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी की वजह से होता है, इसलिए ऐसे लोगों में एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उनका जो खाना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसलिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है।
0: अच्छा, रोजमर्रा के खाने में कौन कौन सी सस्ती और स्थानीय चीजें शामिल करें जिससे एनीमिया से बचा जा सके?
1: वैसे तो आयरन फोलिक एसिड की गोली हमारे प्रदेश में हर स्वास्थ्य केंद्र पे, चाहे वो उपकेंद्र हो, चाहे वो PHCs हो, CHCs हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, वहाँ सब जगह ये निशुल्क उपलब्ध है। लेकिन खाने में जो जरूरी चीजें हैं जो कि इंसान अपना सकता है इस बीमारी से अपने बचाव के लिए, वो हैं दालें, अनाज जैसे चना है, मसूर है, मूंग है, सोयाबीन है। इसके अलावा अंकुरित दालें जैसे हैं या मूंग चना है, इनको ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, और सबसे सस्ता जैसे कहना चाहिए गुड़ और चना जो कि हर घर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, सेब है, अंडा, मांस मछली, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो इससे भी अपने को आयरन की कमी दूर कर सकते हैं। आयरन के साथ साथ अगर आप विटामिन सी का सेवन करें तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जैसे नींबू है, अमरूद है, आंवला है। अगर ये आप आयरन के जो खाने हैं, आयरन रिच फूड्स जो मैंने अभी आपको बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, दाल, अंडा, मांस मछली, इसके साथ अगर आप ये वाले फल भी खाएं जो कि सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं, तो इसमें आयरन का अवशोषण और भी बेहतर हो सकता है।
0: मुझे ये भी जानना है कि आयरन की गोली लेने का सही तरीका क्या है और खाने के साथ या खाली पेट उसे खाया जा सकता है?
1: देखिए, आयरन की गोली लेने का सबसे सही तरीका तो खाली पेट है और ये ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि खाली पेट लेने पर कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द, ये सब भी महसूस हो सकता है। ऐसे में इसे हल्के भोजन के करीब 1 या 2 घंटे बाद लिया जा सकता है। लेकिन ये चीज का खास ख्याल रखें कि चाय और कॉफी के साथ या उसके तुरंत बाद आयरन नहीं गोली जो है वो कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन का अब्सॉर्प्शन कम हो जाता है और प्लस कुछ पदार्थ जैसे टैनन्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, वो सब नुकसान करते हैं। अगर आप आयरन की गोली को नींबू पानी के साथ या आप संतरे के रस के साथ आप लें तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आयरन का अब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है।
0: अच्छा, हमें ये भी बताया डॉक्टर कि क्या बच्चों में एनीमिया जब हो जाता है तो क्या उनकी पढ़ाई या मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
1: अब बहुत हद तक ये बहुत जरूरी है, इसीलिए कि गर्भवती माताएं और धात्री माताएं स्पेशली अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जैसे कहते थे ना पहले जमाने में लोग कि गर्भवती जब महिलाएं होती हैं तो वो 2 केले खाती हैं, अपने लिए भी खाती हैं, अपने बच्चे के लिए भी खाती हैं। तो ये बहुत गर्भ से ही अगर आप आयरन की कमी आपके अंदर नहीं होगी, आप पूरी तरह से आयरन खाएंगे तो आपके बच्चे पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। और बच्चों में तो स्पेशली अगर एनीमिया हो तो उनका वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पे इसका असर पड़ता है। अगर उनकी याददाश्त, उनकी ध्यान लगाने की क्षमता, उनकी सीखने की गति ये कम हो सकती है और उनका शारीरिक विकास भी कम हो सकता है अगर उनमें आयरन की कमी हो। इसलिए माँ और बच्चे दोनों के लिए आयरन बहुत जरूरी है।
0: अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइए कि अगर एक श्रोता आज से ही एनीमिया से बचाव शुरू करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: मैं इसमें 2 बातें आपको बताऊंगी कि बचाव करने के लिए सबसे पहला तो है कि अपनी आदतें जो कि खाने से संबंधित है उनमें सुधार करें, और दूसरा नियमित रूप से आयरन के टेस्ट के लिए अपनी हीमोग्लोबिन की जांच कराएं, जिससे उसे ये पता चल सके कि उसका आयरन का लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। साथ में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने पे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें कि डिवॉर्मिंग के लिए हम लोग गोली देते हैं जिससे कि पेट के कीड़े भी मर सकें, तो उसका भी 7-6 महीने पे अगर करें तो जो वर्म इन्फेस्टेशन है वो खत्म हो सकता है, जिस जो भी एक कारण होता है एनीमिया करने का। और बाकी तो जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि पौष्टिक तत्व जो है वो खाने में लेने चाहिए। आयरन की गोली जरूरत के हिसाब से दी जाती है। स्कूलों में भी हमारा विप्स का प्रोग्राम चलता है जिसमें कि स्कूल के बच्चों को हर हफ्ते आयरन की गोली दी जाती है स्कूलों के अंदर। तो इस तरह से भी घर में भी और घर के बाहर भी आयरन की गोली का सेवन करना, खाने में पौष्टिक तत्वों को इंक्लूड करना और समय समय पर हीमोग्लोबिन की जांच कराना।
0: हमारे जितने भी ग्रामीण श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से?
1: देखिए, अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, मगर आपको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि यही चीज अगर बढ़ जाए तो वो जानलेवा हो सकती है। और इसीलिए बहुत और ये बचाव पूरी तरह संभव है, आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी आप छोटी छोटी अपनी आदतों में सुधार लाके, अपनी जीवन शैली में

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जुनीना के साथ और अखिल जी आपके शो के लिए। देखिए मैं इनके साथ कंपनी के लिए आ जाती हूँ और आपने क्या करने, देखिए हेलो मुरादाबाद शो हमने स्टार्ट कर दिया आप सभी के लिए, क्योंकि आपकी फरमाइश थी ना हेलो मुरादाबाद शो नहीं आ रहा है, लेकिन अब हम लेकर आ गए हैं। आपके मन की बात, दिल की बात हमने सुन ली है। सो आपने इसमें क्या करना है, हमें कॉल करना है और अपना गाना बताना है, साथ ही साथ गाने के साथ साथ एक शायरी तो आपको सुनानी पड़ेगी, देखो है ना।
1: कोई ना कोई तो वाक्य आपको बताना ही पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और जब आप शायरी पेश करते हैं तो आपके गाने, अरे बिल्कुल आपकी फरमाइश हम जरूर पूरा करेंगे। और इसके लिए आप कॉल करिए हमें 9837896896 पर और अपने फेवरेट वाला गाना एंजॉय करिए। चलिए फिलहाल एक गाने के बाद लौट कर आते हैं।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है और आप सभी के शो शुरू हो चुके हैं, यानी कि हेलो मुरादाबाद शो, जहां आपने देखिए हमें कॉल भी करना है और अपनी प्यारी सी शायरी भी सुनानी है। तो अखिल जी बोलिए कुछ। अरे
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं 89.6 MHz। और जैसे रीना जी ने कहा, अखिल जी कुछ बोलिए कुछ, तो मैं तो इसी से शुरुआत करूँगा। दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा मुस्कुराने का। ये कोई पल भर की पहचान नहीं,
0: क्या बात
1: दोस्ती
0: है।
1: वादा है उम्र भर साथ निभाने का।
0: अच्छा जी,
1: हमारे साथ हमारे एक लिसनर जुड़े हैं,
0: कॉलर पे है, हम चलिए उनसे बात करते
1: चलिए उनसे
0: हैं।
1: पहले बात करते हैं उसके।
0: हेलो, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका।
2: राजपूत
0: विपिन राजपूत जी, कहाँ से बोल रहे हैं।
2: बोल
0: अच्छा जी, क्या करते हैं आप विपिन जी। तो विपिन जी, आपने कौन सा गाना सुनना है ये बताइए।
2: अरे
0: अरे सर, मार कटारी मर जाऊं, पहले कटारी कर दिया आपने, फिर जिएंगे कैसे। अच्छा ये बताइए, आपने एक शायरी सुनानी पड़ेगी। देखिए हमने कॉन्सेप्ट रख दिया है गाने विद शायरी, बिल्कुल तभी आपका गाना प्ले होएगा सर। सुनाइए।
2: इस गर्मी लगाया ना जाए, किसी को भी हम सफर बनाया ना जाए, सब जख्मों पर नमक छिड़कते हैं, यहाँ चखने के लिए किसी को भी दिखाया
0: अरे क्या बात
1: क्या
0: है,
1: बात है,
0: दिल पर
1: क्या
0: नमक
1: बात है।
0: छिड़केंगे तो सर पिघल जाएगा।
1: विपिन
0: और जलन
1: जी
0: इतनी होगी कि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
1: अंदर से आहा तक निकली है विपिन जी की ये शायरी।
0: हाँ ये प्यार का जुनून चढ़ जाता है जब सर चढ़ के बोलता है वो। क्यों
1: कभी
0: विपिन जी, सही कहा ना हमने। क्या हाँ समझ गई मैं।
1: बहुत ही अच्छा गाना
0: जैसे
1: सुना
0: आपने
1: आपने।
0: नाम बताया मैं तभी समझ गई थी। चलिए सर, आपको मैं गाना सुनवाते हैं, ठीक है। शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। गुड इवनिंग श्रोताओं, आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि आप भी कॉल करिए और गाने विद शायरी, शायरी के साथ आप जो एक शायरी सुनाइए और गाना सुन के जाइए, गाना वही जो आप सुनना चाहें।
1: बिल्कुल सही।

0: मोहन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ,
6: चावला टायर
4: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
7: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
8: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
9: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
8: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
9: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
10: कॉल 7500153841।
11: आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शो, जहाँ अपने गानों के साथ साथ शायरी भी सुनानी पड़ेगी। तो ये कॉलर मैं अखिल जी को दूंगी, ठीक है जी?
12: क्यों नहीं, मेरे को ही दो आप सारे को। नमस्कार, कैसे हैं आप?
13: हेलो
12: हेलो मलिक साहब, नमस्कार, कैसे हैं आप?
13: जी नमस्ते, अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ सर। आप सुनाओ सर, आप ठीक हो सर?
12: बढ़िया सर, बढ़िया सर। क्या करते हैं मलिक साहब आप?
13: जी मैं बिजनेस करता हूँ।
12: आप बिजनेस करते हैं?
13: जी
12: कहाँ? कहाँ?
13: यहाँ पर अपनी गांव में करता हूँ, 2-4 शॉप है हमारे पास। जैसे जी ये पेंट होते हैं, पीवीपी होते हैं, जो टैल या सीमेंट वीमेंट लगाते हैं, उसी के भी बिजनेस है हमारे पास।
12: तो मलिक साहब आप ये बिजनेस करते कहाँ हैं?
13: जी मैंने कहा नहीं, मेरी गांव में 2-4
12: गांव। कहाँ पर है हम सब जानना चाहते हैं, सब हमारे गाँव कहाँ से?
13: जी मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिला बड़गाम में हमारा गांव पड़ता है, और हमारे गांव का नाम है वड़गाम। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कम 22 किलोमीटर दूर है सर।
11: सर लेकिन आपका नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नाम बताइए अपना।
12: अपना नाम? और
13: मेरा नाम जी, नहीं मलिक मेरा नाम है, अक्सर फोन करते रहता हूँ इस प्रोग्राम में। और आज काफी दिन के बाद कॉल किया, क्योंकि खेती बाड़ी का सीजन भी चल रहा था यहाँ कश्मीर के अंदर। और जो हमारे सबसे ज्यादा मशहूर एक चीज है कश्मीरी सेब, उसकी जो हम दवा ववा लगाते हैं इसी महीने में लगाते हैं।
12: क्या बात है मलिक साहब, मलिक साहब आप
11: भी ज्यादा होता है क्या?
12: सेब, सेब सबसे ज्यादा फेमस
11: है। भेज दीजिए, पार्सल कर दीजिए,
13: जब इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी तो इंशाल्लाह भेजूंगा आपके शहर में।
11: हाँ क्योंकि यहाँ पे तो महंगे, कश्मीर में बहुत सस्ती होती है ना, क्योंकि वहाँ पे तो पेड़ ही इसकी उपज ही है।
13: बहुत सारे पेड़ है हमारे पास, तरह तरह की सेब होती है, जैसे इटली होते हैं, गिलशन होते हैं, महाराजा होते हैं, अमेरिकन होती है, अलग अलग सेबों के।
11: सर ग्रीन वाला एप्पल भेजिएगा,
13: ग्रीन वाला, उसको हम हाइडेनिस कहते हैं।
11: हाँ जो भी कुछ कहते हैं सर, पर वो बड़ी रसीली होती है ना।
12: मलिक साहब आपके आपके सेब जो हैं भले ही लाल हो ना हो, मगर हमारी रीना जी के यहाँ पे बात करते करते गाल लाल हो गए सेब की तरह। आप कौन सी शायरी सुनाना चाहेंगे?
13: एक शेर मैडम के लिए सुनाना चाहता हूँ। दिल आपकी याद में उदास है, दिल आपकी याद में उदास है, बस आपसे मिलने की आश है, बस आपसे मिलने की आश है।
12: क्या बात है,
13: लोग हमारे पास है, न जाने कितने लोग हमारे पास है, लेकिन हमारे लिए आप ही खास है।
12: क्या बात कही आपने, क्या बात
11: है। लेकर आइएगा तभी मुलाकात हो पाएगी
13: इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे हिंदुस्तान की किसी जगह पर इंशाल्लाह आऊंगा, और मेरे दोस्त भी है वहाँ पर मुरादाबाद में, तो उनसे भी मिलूंगा और आकाशवाणी का भी दौरा करूंगा इंशाल्लाह।
12: क्या बात कह दी आपने मलिक साहब, अब आपके दोस्त को तो हम सीक्रेट में ही रखते हैं। आप बताइए उस दोस्त के लिए गाना कौन सा प्ले करेंगे?
13: अक्सर उसका अब उसको बहुत सारे लोग जानते हैं, ये मुकेश कशरत भाई है या फरमान भाई है, एक नगमा है फिल्म का नाम है शराबी, गाने की बोले तेरे प्यार दे, प्यार दे, किशोर कुमार की खूबसूरत आवाज।
11: सर मेरी सर मेरा नाम क्या है?
13: रीनत जी।
11: अच्छा चलिए पहचान गए,
12: ये तो आप रीना से रीनत जी हो गई है, ये तो आपने बिल्कुल सही पहचाना है मलिक साहब। बहुत अच्छा लगा हमें आपकी कॉल आई, कश्मीर से आई है तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अब हमें एसी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत ठंड हमारे पास, ठंडक। हाँ
13: सर, जहाँ पर मैं रहता हूँ और हमारे जो खिड़की के पास बहुत बेहतरीन छोटा सा दरिया चल रहा है, उसका पानी इतना नीला है कि मैं उसको देखता रहा इस वक्त उसको पानी को देख रहा हूँ। और मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ एक खुशखबरी, आपको पता है कि यहाँ पर वंदे भारत जो ट्रेन चल गई है वहाँ,
12: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
13: अब आप आ सकते हैं और घूम सकते हैं अपना देश है। और सबसे बात अच्छी बात यह है कि जो कश्मीर है वो हमारा मुल्क का जो हमारे कंट्री उसका जिगर है ये,
12: बिल्कुल सही बात
13: है, मोस्ट वेलकम भी करूंगा।
12: नहीं नहीं साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी, और हमारा तो खुद सबका ये रहता है कि कश्मीर जितना, मतलब कहते हैं ना कश्मीर को, कहते हैं जन्नत का दूसरा नाम अगर है तो वो कश्मीर है।
13: वैसे तो आपको एक बात भी कहना चाहता हूँ, मैंने सुना कि एफिल टावर पेरिस में होता है, लेकिन जब आप कश्मीर ट्रेन में ट्रेवल करोगे तो एक जगह पर आप आओगे कि जहाँ पर आपको एफिल टावर दिखेगा।
12: क्या बात है,
13: एक जगह एक नदी है वहाँ जम्मू और कश्मीर के दरमियान,
12: हाँ जी,
13: तो एफिल टावर की जैसे वहाँ पर जो इंजीनियर ने बना दिया तो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है।
12: हाँ जी हाँ जी, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा ब्रिज है आई थिंक।
13: जी जी, और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करूंगी कि आप लोग आओगे आपकी टीम के साथ और मुझे मेहमान नवाजने का मौका दीजिए।
12: पक्का मलिक साहब, पक्का, ये भी कोई कहने की बात है, हम जब भी आएंगे आपको जरूर याद रखेंगे वहाँ,
13: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
12: चलिए आपका सुनते हैं पसंदीदा गाना और जल्दी ही करेंगे आपसे मुलाकात, क्या कहती हैं रीना जी आप?
11: हाँ जी श्रोता, हमसे यही मैं तो यही कहना चाहूंगी, देखिए आपका फेवरेट शो जो की बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हेलो मुरादाबाद शो बंद तो नहीं हो गया। अरे बंद कुछ नहीं होता है, देखिए आपके बिना न हम रह सकते ना आप हमारे बिना रह सकते है। सो बस कॉन्सेप्ट बस ये चेंज कर दिया इसमें कि गाने विद शायरी।
12: बिल्कुल सही कहा, और ये जो अगला गाना है ये गाना भी वही चीज है, ये आपके और हमारे बीच का ही गाना है।
11: हाँ तो चलिए फिलहाल हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, कॉल करते रहिए, नंबर है 9837896896।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है। आज रीना और अखिल जी के साथ आपने बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया है, सराबी मूवी से, दे दे प्यार दे प्यार दे।
1: इतना बढ़िया गाना है रीना,
0: किशोर कुमार जी की आवाज में ही गाना
1: गजब
0: किया है ना।
1: और इस गाने से ना कुछ यादें ऐसी जुड़ी हुई हैं, जैसे बचपन में जब ये गाना प्ले होता था, मैं जब इसे देखता था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे, तो उस समय ना ऐसा लगता था कि पापा जब भी ये गाना देखते थे, तो मैं पापा के साथ बैठा होता था, पापा बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे इस सॉन्ग को। तो लगता था यार क्या गाना है, मतलब जिस तरीके से अमिताभ बच्चन, मतलब कहते ना हंक की तरह, क्या

0: स्टेप करते हैं और किस तरीके से इसे फिल्माया गया है. तो इसमें एक करेक्टर है बीच में जो डिस्टर्ब हो जाता है बहुत, कि आधी रात में कौन आ गया गाना गाने सोसाइटी में. अक्सर हो जाता है, आज भी ऐसा हो जाता है अगर सोसाइटी में कोई डिस्टर्ब हो जाए कि भाई.
1: ये मूवी मैंने भी देखी है.
0: तो एक तरीके से कहते हैं उस समय में भी लोग अपने एक्सप्रेशंस को अपने एक्सप्रेशन को सामने लाने के लिए लोगों के अपने कैसे किस तरीके से करते थे यार. आज के में तो ऐसे अगर किसी का बर्थडे हो तो कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड का सोसाइटी में पहुंच जाता है, पूरा धूम धड़ाके से गाने की आवाज एकदम तेज कर दी उसने, खूब प्ले कर रहा है. तो मगर इससे जो पुराने के समय में थे ये तो बहुत ही स्टाइल से करते थे सब.
1: हाँ, तो चलिए अपने अगले कॉलर,
0: चलिए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से. नमस्कार, हेलो मुरादाबाद, कैसे हैं आप?
2: दुनिया में जीने के बहाने हजार होते हैं.
0: क्या बात.
2: जो जीते हैं बिना दोस्ती के वो बेकार होते हैं.
0: बहुत
2: जो करते हैं सच्ची दोस्ती की कदर बस वही इस दोस्ती के हजार होते हैं. गुड इवनिंग सर जी.
0: गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. आपने इतनी अच्छी बात की है दोस्ती के ऊपर, तो एक शायरी मैं भी आपको सुनाना चाहूंगा. कौन कहता है दोस्ती बराबरी में होती है. कौन कहता है दोस्ती बराबरी में होती है. सच तो ये है कि दोस्ती में सब खबरदारी होती है. एक रोता है तो दूसरा संभाल लेता है, यही तो दोस्ती की जिम्मेदारी होती है.
2: ठीक बोले सर जी. आपकी भी लाइनें बहुत अच्छी हैं सर जी.
0: आप अपना नाम बताइए हमें.
2: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोड़िया, तहसील नवाबगंज, कस्बे बरेली, उत्तर प्रदेश. बोल रहे सर जी.
0: बहुत बढ़िया साहब, आज बरेली की आवाज भी हमारे साथ है.
1: बरेली की बर्फी नहीं है बस.
0: बरेली का झुमका भी बहुत फेमस है. राजेंद्र जी,
2: बरेली का झुमका. हाँ जी.
0: हाँ राजेंद्र जी, आप क्या करते हैं?
2: हम तो वही तो बताना चाह रहे थे जब भी आप बोल बैठे थे. हम चेरी का काम करते हैं सर जी.
0: चेरी का
1: जरी.
2: जी जरी, जो बरेली में मोती सितारा जरी का नाम से जाना जाता है, फेमस है.
0: क्या बात है साहब, क्या बात है. तो आज आप कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे अपने श्रोताओं को, सभी को?
2: आज गाने से पहले एक दो लाइनें और हैं सर जी.
0: अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं साहब.
2: एक सच्ची दोस्ती बारिश की तरह नहीं होती, जो आए और चली जाए, बल्कि हवा की तरह होती है, जो दिखती नहीं पर हमेशा हर पल महसूस होती है.
0: क्या बात कही, क्या बात. मतलब ये तो आपने एकदम सच बात बोल दी है.
2: हाँ जी. दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि हर किसी को नजर नहीं आए, अगर कोई दुख मुसीबत हो तो साथ खड़ा रहे तो अच्छा लगता है. दोस्ती इसी को कहते हैं.
0: दोस्ती भी ये है ना कि आपको कभी कोई जताने का और दिखावे का ना पता. दोस्ती तो वो है जो साइलेंटली आपके पीछे आपका काम, अपना काम कर रहा होता है. वो आपको महसूस भी नहीं होने देता, एहसास भी होने देता कि ये सब हो रहा है आपके साथ.
2: हाँ जी.
0: बहुत सही बात कही आपने राजेंद्र जी. गाना गाना बताइए.
2: हाँ जी, वही तो बताने चाह रहे हैं कि मूवी का नाम है कुली नंबर वन. गाने के बोल रहेंगे चेत की दोपहरी में गर्मी लगे, क्योंकि सर जी गर्मी बहुत पड़ रही है अभी.
0: तो अब तो दोपहर खत्म हो गई, आपको अभी भी रात में गर्मी चाहिए?
2: हाँ जी, बहुत गर्मी लग रही है अभी.
0: चलिए साहब, बहुत बढ़िया. आपको
1: एसी में बैठे हैं ना, तो इनको पता लग रहा है कि भाई यहाँ ठंड लग रही है, इसलिए नहीं महसूस हो रहा ना.
2: हाँ जी, हाँ जी. अभी एक छोटा बात कर रहे थे कि यहाँ से तो मौसम ठीक है, गर्मी नहीं है.
0: नहीं नहीं, सही है साहब. आपकी तब बिजली पूरी आ रही है ना?
2: हाँ जी.
0: तो सही है, ये आपका गाना सुनाते हैं हम आपको. और ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे राजेंद्र जी, किसी के लिए?
2: हाँ जी, तो हाँ जी. सबसे पहले आप लोग दोनों लोग रहेंगे आरजे, और हमारे साथ भगवान सिंह परवार जी है, शाहरुख नूर अंसारी जी है, लाल मोहम्मद अंसारी जी है, और लोकेंद्र वर्मा जी है, गौतम राय जी है, दत्त पेंटर सिंह गुज्जर जी है, और हमारे साथ जैसे हमारे घर वाले.
1: चलिए सर, आपको हम गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
0: सर आपकी तो लिस्ट बहुत लंबी है, आप जिन जिन का नाम लेना चाह रहे थे सभी के लिए ये गाना स्पेशली सर.
2: हाँ सर जी, सभी दोस्तों को ये
0: सॉन्ग रहेगा. धन्यवाद राजेंद्र जी, बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े. चलिए राजेंद्र जी की भी एक फरमाइश पूरी होती है.

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: वेलकम बैक है आपका 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। और रीना जी, क्या गाना था ये? जेठ की दोपहरी में
3: पांव जले हैं,
2: पाव जले हैं। सच में गर्मी तो बहुत है बाहर।
3: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी बहुत है और इस गर्मी से क्या ही कर सकते, बस अपना ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए।
2: पानी तो जरूर अपने साथ रखना है,
3: और फेस कवर करके जरूर जाइए।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। एक बात बताइए रीना जी, कि कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनसे आप महीनों बात नहीं करते हैं, लेकिन जब भी बात होती है तो ऐसा लगता है जैसे कल ही हम मिले थे
3: और कल हमने 2 घंटे बात करी है।
2: ऐसा हुआ आपके साथ?
3: मेरी जितनी फ्रेंड्स थी, हमने कॉन्फ्रेंसिंग कॉल करी थी, ठीक है, मतलब व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल। भैया कोई जॉब कर रहा है, कोई घर पर है, कि नहीं किसी की शादी हो गई है, तो मजा आ रहा था। कल पता नहीं चल रहा था कि 2 घंटे कैसे कम्प्लीट हो गए हमारे।
2: ये तो होता ही है। हाँ। अभी हमारे पास एक मैसेज भी आया है नाजिया जी का। हाँ। वो लिखती हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड अब विदेश में रहती है, मेरी एक स्कूल फ्रेंड है जो विदेश में रहती है, लेकिन हर जन्मदिन पर वो सबसे पहले उसी का फोन आता है।
3: क्या
2: सही कहा नाजिया जी, मेरा भी एक ऐसी फ्रेंड है, वो भी विदेश में रहता है, कॉल तो नहीं आता क्योंकि दिन रात का फर्क हो जाता है, मगर हाँ सबसे पहला मैसेज उसी का आता है।
3: क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है। अपने अगले कॉलर से बात कर लेते
2: हैं। हाँ अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो मुरादाबाद।
4: हेलो नमस्कार जी सर।
2: नमस्कार जी सर, आपका नाम क्या है?
4: जी नाम ब्रजेश सिंह है, ग्राम चमरुआ, जिला संभल से बात कर रहे हैं।
2: जिला संभल से बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, कैसे हैं आप?
4: जी बढ़िया, काफी गर्मी पड़ रही है, FM से जुड़े रहते हैं लगातार।
2: क्या बात है, तो इस गर्मी में भी आप FM से जुड़े हुए हैं, तो FM के लिए कुछ बोलिए।
4: और हमें तो एक तरह से रेडुआ दीवाना बना दिया लोगों ने, जो कहता है 13 से ज्यादा शौक किसी को मुझे लगता होगा नहीं, मैं लगातार FM से जुड़ा रहता हूँ पूरे।
2: सर ये बिल्कुल, ये एक अलग ही शौक है, और इस शौक से आपको, जिस शौक से आपको थोड़ा सा सुकून मिलता है, थोड़ा सा कहते हैं ना आराम मिलता है, तो उस शौक से जुड़े रहने में क्या बुराई है?
4: कुछ लोगों के लिए बुरा लगता है कि यार आप इतना क्यों जुड़े रहते हो, मान के चलो काम पे भी मैं लगातार पॉकेट में फोन चलता रहता है, FM चलता रहता है।
2: चलिए साहब ये तो बहुत ही, हमें तो बहुत अच्छा लगा।
4: काम भी हमारा इतना डेंजर काम बोला जाएगा, जो कि गर्मी में काम राजगिरी का चलता है जैसे।
2: हाँ जी हाँ जी।
4: तो इतनी तेज धूप रहती है, पहाड़ बल्लियों पे खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम FM का साथ लगातार रहता अपने साथ।
2: सर आपके साथ, आप जैसे हमारे साथ रहेंगे वैसे भी हम भी आपके साथ रहेंगे, आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।
4: उम्मीद करिए, हमने सवालों का जवाब भी दिया FM मुरादाबाद का, लेकिन हमें कोई अभी तक गिफ्ट प्रदान नहीं हुआ। जैसे
2: आपको गिफ्ट, आपका गिफ्ट तो यहाँ तैयार रखा है, आपको FM मुरादाबाद आना पड़ेगा सर।
4: बिल्कुल आएंगे, जैसे भी आप हमें बताएंगे वैसे आ जाएंगे हम।
2: आप आ जाइएगा, आप जब चाहें तब आके अपना गिफ्ट ले जाइएगा।
4: और एक चौधरी चौधरी,
2: जिस शो में विनर बने थे बस उस शो में बता दीजिएगा आप। हमारी रीना जी कह रही हैं कि आप जिस शो में विनर बने हैं तो उस शो का बता दीजिएगा, वरना आज आप, आज इस शो के तो विनर आप हैं ही। आप एक बढ़िया सी शायरी सुना दीजिए, आप आज विनर हैं इस शो के।
4: जी शायरी भी सुनाएंगे, गाना भी सुनेंगे FM मुरादाबाद से, और थोड़ा संदेश भी देना चाहेंगे जो हमारे साथ गई गुजरी बातें हैं।
2: बताइए सर बताइए।
4: जी शायरी तो इस प्रकार से हमारी, गुनगुनाओ तो कोई बात बने, गुनगुनाओ तो कोई बात बने, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, FM मुरादाबाद से अपना कीमती समय निकाल कर जुड़ जाओ तो कोई बात बने।
2: क्या बात है, क्या बात है, जब भी आप FM मुरादाबाद से जुड़ेंगे कुछ ना कुछ आपको नया ही मिलेगा
4: जी।
2: और गाना
4: कहना चाहेंगे, जैसे कि ये फिल्म का नाम है अनोखा अंदाज,
2: अनोखा अंदाज,
4: गायक विनोद राठौर।
2: हाँ जी।
4: और गाने के बोले, आपसे पहले ना आपके बाद याद कोई आया ना आएगा।
2: क्या बात कही आपने, किसके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं आप ये गाना राजेंद्र जी?
4: ये अपनी इच्छा से सुनना चाहते हैं, अच्छा लगा ये गाना जैसे हमने सुना था अलग से।
2: क्या बात है, चलिए आपकी इच्छा भी पूरी करते हैं।
4: संदेश देना चाहेंगे।
2: हाँ हाँ बताइए सर।
4: जैसे कि हम थोड़े काम के लिए चले गए पास में गांव से अलग हट के।
2: हाँ जी।
4: तो हमें पुलिस मिल गई रास्ते में, जो कि चालान काट रहे थे वो।
2: हाँ जी हाँ जी।
4: बिना हेलमेट के चले गए, हमने सोचा थोड़ा पास में है, बिना हेलमेट के तो हम जाते नहीं है जैसे कभी।
2: बिना हेलमेट के तो जाना भी नहीं चाहिए, अगर आप कभी भी कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं, तो आपको हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। मेरा भी साथ आपके, आपका भी चलान कटा है, लगता है हम दोनों का एक ही दिन में सेम नेम चलान कटा है। मेरा भी एक बार चलान कटा है।
4: 1,000 रुपये फाइन हो गया हमारी तरफ।
2: हाँ सर, मेरे पास ही मैसेज आया हुआ है
4: जी।
2: तो चलिए, हाँ बताइए मैसेज क्या है।
4: कि पुलिस की तो कोई बात नहीं है, सुझाव ये देना चाहेंगे जितने भी लोग बिना हेलमेट के चलते हैं कि उससे आपकी सुरक्षा है, ना कि कोई और दिक्कत आएगी। मान के चलो आप गिरोगे सड़क पे तो आपको सिर डैमेज होगा।
2: बिल्कुल सही,
4: आपके परिवार के भी परेशान होंगे, काफी पैसा लगता है एक बार अगर एक्सीडेंट हो गया तो।
2: बिल्कुल सही कहा राजेंद्र जी, बहुत बहुत ही आपने, कहते ना आपने आज आपका चलान भी कटा और आपने ये बात आपके साथ हुई और आपने इस बात को इस तरीके से शेयर किया कि एक पॉजिटिव मैसेज हमारे समाज में गया है कि हाँ अगर आप जब भी चलें और कभी भी आप टू व्हीलर्स पे चलें तो जरूर हेलमेट तो जरूर पहने।
4: सर अपनी हम बताएंगे, जैसे हमने कभी बाइक ली, काफी पुरानी बात हो गई, तो हम साइकिल से जाके पहले हेलमेट लाए थे खरीद के संभल से।
2: अच्छा सर।
4: लेकिन कहते हैं ना वक्त की जो कहानी होती है ना, कुछ अलग हटके होती है। हम कभी भी बिना हेलमेट के चलते नहीं है, लेकिन थोड़े से फासले पे जाना चाह रहे थे, जैसे हमारे पास सोनन कस्बा पड़ता है।
2: तो ये हेलमेट आपसे गुस्सा हो गया था? कोई बात नहीं, अब तो जो हो गया हो गया, मगर ये हेलमेट आपसे गुस्सा हो गया, उस हेलमेट को अपने साथ रखिए हमेशा। और इस गाने को लेते हैं, आप भी थोड़ा सा आनंद लीजिए, रात का समय है।
4: सर हमें बुलाइएगा जरूर, हम बहुत इच्छुक हैं आपके एफएम मुरादाबाद आने के लिए।
2: पक्का पक्का ब्रजेश जी, पक्का आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं है, आप जब भी आपका मुरादाबाद कभी भी चक्कर लगे तो जरूर शाम को आप जो भी आपको समय सही लगे आप आए।
4: सर ये जो दीदी हैं, हम बोलना चाहेंगे हमारे गांव का नाम थोड़ा गलत पढ़ देती हैं कई बार, बात ये सही नहीं लग रही इनकी जैसे।
2: नहीं, गांव का नाम कौन सा आपका गलत हो गया?
4: गांव का नाम हमारे का चमरोहा है।
2: चमरोहा,
3: चमरोहा ही बोलते हैं सर हम तो।
4: और ये दीदी जी जो है ये चमोरा करके बोल देती हैं, जो एक दो बार मैंने बार बार मैसेज भी दिया इस चीज
2: के। वो दीदी अभी है नहीं, मैं दीदी के पास वो मैसेज आपका पहुँचा दूंगा। वैसे पहुंचा आपके पास हमेशा चमरोहा, ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो आपको भी थोड़ा सा समझ
4: में।
2: नहीं नहीं ब्रजेश जी, चलिए हम सुनते हैं क्योंकि गाना ज्यादा देर नहीं वो उसमें नहीं करेंगे लेट, ठीक है ना? आराम से कॉल करेंगे, इस बारे में अच्छे से ध्यान रखेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद बहुत बहुत आपका ब्रजेश जी। तो ब्रजेश जी ने आज अपनी आप बीती भी सुनाई और हमारे साथ अपनी पूरी बात साझा भी करी और उन्होंने बहुत अच्छा एक गाना भी डेडिकेट किया है अपने को और सभी श्रोताओं को। चलिए लेते हैं उसका आनंद।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: घोड़ा चतुरा एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।